0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे।
1: आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ।
0: ओके, आई हैड अ फेज वेर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दैट वॉज बिकॉज ऑफ यू नो जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज होती हैं, जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे तुम बहुत यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हो। आई वॉज गोइंग थ्रू दैट बैड फेज ऑब्वियसली। After, you know, 2 years of going through that phase, I realized that, oh, where is that charm that was in me? You know, something is missing. I have stopped talking. I have stopped going out. Why? Then I understood that. And उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई. And then, you know, I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें इंडिया में travel करी. You know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that, you know, जो भी outside circumstances थी, जो which were, you know, pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started, you know, getting back on the track, meeting people, doing some things जो मुझे अच्छी लगती थी, doing events, going out to different places and working with different people, and उनसे सीखा मैंने बहुत कुछ। मैंने 12th तक science पढ़ी, उसके बाद मैंने mass communication किया, उसके बाद मैंने events किया, ठीक है? तो I think I had enough backups को shun away करना, and then I came to this conclusion that I have to do this. And I am meant to see the operations of things. So, अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, I technically don't have a backup plan. But if I have to do something, I know I can do operations very well. Operations of any company, of any job, I can do that very well. Because मैंने एक master operations वाली field में काम किया हुआ है, जो events है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ operations देखने होते हैं. तो if I can do this, I can see the operations of any place and any business. Walk Talk Radio.

0: एक इंसान के अलग अलग मूड्स होते हैं। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी नर्वस होते हैं तो कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, कोई भी गाना सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी म्यूजिक के मूड में चले जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज आरजे गौतम और आज मेरे साथ हैं एक और गौतम, गौतम थापा। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो इनकी आवाज जरूर सुनी होगी। A very warm welcome to you, Gautam, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much.
0: कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके?
1: बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। This is my first podcast, so थोड़ा सा nervous भी हूँ, but हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है अभी, feeling good है।
0: तो उस nervousness को एक music का feel देते हैं और गाने से शुरुआत करते हैं।
1: Sure.

0: बात है गौतम, क्या गाया है।
1: थैंक यू सो मच।
0: मुझे भी खुशी हो रही है, मजा आ गया मतलब सुन के।
1: अरे थैंक यू सो मच।
0: तो आपने जैसे अभी हिंदी गाना गाया
1: जी,
0: तो ऐसी और कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप गाना गा लेते हैं?
1: मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाता हूँ, कुछ पंजाबी हो गए और कुछ सूफी हो गए। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आजकल जो हमारी कम्युनिटी लैंग्वेजेस हैं, कुछ गढ़वाली गाने प्रिपेयर कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि फरमाइशें काफ़ी आती रहती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कुछ गोरखाली सॉन्ग्स की फरमाइशें आती रहती हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है आजकल।
0: आप गिटार तो बजाते ही हैं?
1: हाँ जी।
0: साथ में और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाते हैं, आपको आता है?
1: थोड़ा बहुत कीबोर्ड प्ले कर लेता हूँ मैं, बाकी गिटार मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है। अकोस्टिक गिटार ही प्ले करता हूँ ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। और अभी रिसेंटली 2 सालों से मैंने अपना बैंड फॉर्म किया है। तो एक बैंड, फुल बैंड में आपको पता ही है कि 4 लोग होते हैं, एक वोकलिस्ट होता है, लीड गिटारिस्ट होता है, बेस गिटारिस्ट होता है और ड्रमर होता है। तो बेस गिटारिस्ट की जगह हमारे पास थी नहीं, तो बेस गिटार भी आजकल मैं प्ले करके ही गाता हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो ऐसी चीजें हैं बस।

0: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की। तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहाँ टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
1: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: एक आर्टिस्ट के लिए ना उसका पहला गाना बहुत ही स्पेशल होता है।
1: हाँ जी।
0: तो आपको कुछ याद आ रहा हो आपका पहला गाना आपने लिखा हो, गाया हो, या कोई भी मेमोरी हो ऐसी?
1: जी, पहला गाना जो मैंने कंपोज किया है, मेरा खुद का सॉन्ग है, जो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ये खुला आसमां जो है उस गाने के बोल हैं। तो ये गाना मैंने बहुत पहले, आई बिलीव बैक इन 2004 मैंने ये गाना लिखा था, तो कभी मौका मिला नहीं, कंपोज भी खुद ही किया था बीच में, क्योंकि कभी हम लोग इस फील्ड में थे नहीं पहले म्यूजिक में। म्यूजिक में मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, पर हाँ जब आया हूँ तो बड़े अच्छे तरीके से ही आया हूँ। तो तब मैंने इस गाने पे और काम करना शुरू किया, तो जो पुराने लिरिक्स थी उस गाने की वो भी थोड़ी सी मॉडिफाई करी इस टाइम के हिसाब से। तो दैट सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, गाने का नाम है ये खुला आसमां।
0: जैसे आपने अभी म्यूजिक में आने की बात करी
1: जी,
0: तो ये म्यूजिक का शौक, ये सिंगिंग का शौक, ये आपने सिर्फ एक एज अ शौक करा है या इसकी आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है?
1: जी, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है। मेरे गुरुजी हैं पंडित मुरलीधर जगुड़ी जी, तो वो मेरे ही स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मुझसे म्यूजिक सीखो। तो मैंने 6 साल का विशारद किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, वोकल सीखे हैं, मतलब वोकल सीखे, पर उसके बाद मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वही आपको पता ही है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो घर से आपको प्रेशर होता है कि पहले पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करो तो वो वाला प्रेशर था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब करने के बाद

0: मैं आया म्यूजिक की फील्ड में। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग। 4 साल मैंने नौकरी करी। नौकरी के दौरान मैंने यूएस भी ट्रैवल किया, मेरी कंपनी ने मुझे बाहर भेजा, मतलब वेल सेटल्ड जॉब थी। फिर मैंने वापस आके दोबारा देहरादून में वापस आया। फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद भी मैंने 2-3 साल नौकरी करी। पर जब एक पॉइंट आ जाता है आपकी लाइफ में कि नहीं यार, ये चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ, एक आपको हिट मिलता है कि मतलब ये चीज़ ना आप नहीं कर पाओगे, फॉर अ लॉन्ग रन आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बचपन से ही शौक था म्यूज़िक में आने का, ठीक है। कॉलेज लाइफ में भी हम स्टेज शोज में परफॉर्म करते थे, तो सोचते थे कि यार अब स्टेज वर्क ही करना है। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी, पर क्योंकि नौकरी में इतना व्यस्त होते थे कि आपको नहीं मिलता था इतना टाइम कि आप जाके परफॉर्म भी करो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हुई। 2018 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे म्यूज़िक ही करना है। तो अपने आप को प्रिपेयर करा मैंने 3-4 महीने काफ़ी, क्योंकि जब आप स्टेज शोज करते हो, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको एक स्टैमिना चाहिए होता है,
1: बहुत बहुत चाहिए,
0: राइट। आपको कम से कम 2-2.5 घंटे या 3 घंटे आपको परफॉर्म करना है,
1: बिल्कुल।
0: तो आपके वोकल कॉर्ड्स, वोकल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 3 महीने तक कंटिन्यू, 3 महीने बोल रहा हूँ सॉरी, 3 घंटे तक आप कंटिन्यू गा सके। 3 महीने इसलिए निकला मेरे मुंह से क्योंकि 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करी थी डेली। तो उसके बाद मेरे को पहला ब्रेक जो मिला वो मुझे मिला जयपुर में। जयपुर से मेरी स्टार्ट हुई 2018 में। 6 महीने मैंने वहाँ के क्लब्स एक्सप्लोर करे, धीरे धीरे अपना बिल्डअप किया, अपने सॉन्ग लिस्ट चेंज करता रहा, क्योंकि एक टाइप के सॉन्ग्स अगर आप गाते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाती है। एग्जैक्टली, आपकी ऑडियंस बोर हो जाती है। फिर आपको इतने गाने प्रिपेयर करने हैं क्योंकि आपके रिक्वेस्ट बहुत आती हैं। अब कुछ रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर पाता हूँ क्योंकि मैंने वो गाने सुने हैं, मैं वो गाने प्रिपेयर कर चुका हूँ, कुछ कभी कभी नहीं हो पाते। फिर 2019 में मैं देहरादून आ गया, जब मुझे पता चला कि देहरादून में भी लाइव म्यूजिक का स्कोप बढ़ रहा है, बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे खुले थे। सबसे पहला क्लब था ग्रेट इंडियन पब, जो कि आपके राजपुर रोड में है। फिर आपका टॉनिक है, जो कि आपके टूवर्ड्स बल्लूपुर रोड में है। तो टॉनिक से मेरी शुरुआत हुई थी और अभी ऐसा है कि 5 साल हो गए मुझे टॉनिक में परफॉर्म करते करते। तो बस जर्नी वहीं से शुरू हुई म्यूजिक की और कंटिन्यू है अभी तक।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: आपने जर्नी की बात करी और अपनी पूरी कहानी के बारे में हमें बताया
1: जी।
0: लेकिन एक ऐसा जो आप एक पॉइंट आता है जब बंदे को हिट करता है,
1: हाँ जी,
0: यार नहीं अब नहीं करनी जॉब, अब हाँ मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है,
1: हाँ
0: तो वो इंसिडेंट या वो पॉइंट कब था?
1: ये बहुत ही एक अमेजिंग किस्सा है। मैं गया तो था बिजनेस ट्रैवल के लिए अपनी कंपनी की तरफ से। आई यूज टू वर्क फॉर एन MNC उस टाइम पे, 2016 की बात है। हम चैटानूगा गए थे, ऑफिस का क्राउड पूरा एक प्रोजेक्ट लेने के लिए गए थे। तो 2016 में जब चैटानूगा में थे, टेनेसी एक स्टेट है US का, वहाँ पे एक सिटी है चैटानूगा। फिर चैटानूगा से हम नैशविल गए थे, विच इज़ अ म्यूजिक सिटी। तो नैशविल में, नैशविल से वैसे आपको मैं बता दूँ कि बहुत सारे सिंगर्स वहाँ से नैशविल के ही हैं, मतलब
0: जैसे जैसे
1: जैसे आपने सुना होगा एल्विस प्रेस्ली, बहुत ही 60s के जाने माने, अभी तक उनके गाने सुनते हैं, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू उनके सॉन्ग्स हैं, माइली साइरस जो कि लोगों ने सुना ही होगा काफी नाम, शी इज ऑल्सो फ्रॉम नैशविल। तो वो म्यूजिक सिटी है, वहां पे मतलब हर 10 बंदों में से 9 बंदे जो हैं गिटार बजाना जानते हैं। तो वैसी क्लब हॉपिंग चल रही थी हम लोगों की, हमारी छुट्टी थी, हम घूम रहे थे। तो एक कैरियोके नाइट था वहां पे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, गा लेता हूँ, तो मैं भी चढ़ गया स्टेज पे कि मैं भी गाऊंगा। सो वहाँ पे लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि यू आर एन इंडियन, हाउ कैन यू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड ऑल। तो मैंने कहा नहीं मैं गाता हूँ। तो जॉन डेनवर एक कंट्री आर्टिस्ट हैं, 60s 70s के ही हैं ये, तो उनका सॉन्ग है एनी सॉन्ग। तो मैंने जब वो एनी सॉन्ग गाया तो लोग वहाँ पे थोड़े वो हो गए कि यार ये तो बढ़िया गा रहा है लड़का,
0: इंडियन आदमी ने इतना अच्छा इंग्लिश
1: जी गाया। बिल्कुल। तो वहीं उनसे, वहीं पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यू हैव अ वेरी लवली वॉइस एंड यू शुड डू समथिंग विद योर वॉइस। तो वो बात मुझे काफ़ी हिट करी। तो नैशविल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार अब तो कुछ करना है, अब नौकरी ज़्यादा नहीं हो सकती है। कुछ अपना ही करना है।
0: तो नैशविल से मतलब आपने अपनी गाड़ी मोड़ ली?
1: बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से आने के बाद 6-7 महीने मैंने थोड़ा और काम किया क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद मैंने अच्छे से अपनी जॉब छोड़ी, पूरा अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पीरियड होता है वो,
0: नोटिस पीरियड
1: सर्व करके मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैं अपनी म्यूजिक जर्नी मैंने स्टार्ट करी।
0: आपने अभी नैशविल की कहानी सुनाई हमको
1: जी,
0: तो एक गाना फिर इंग्लिश में भी हो ही जाए।
1: इंग्लिश में मैं वही गाना सुनाता हूँ आपको जो मैंने
0: बिल्कुल बिल्कुल

0: बाकी हमारे जो इंडियन वो हैं, किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन, ठीक है, 90s का किड हूँ तो अपने कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, इन सबको सुन के बड़ा हुआ। और मेरे जो पसंदीदा अभी के जो हैं, मतलब जिनको मैं अभी तक मानता हूँ, हरिहरन साहब हैं, सुखविंदर सिंह, उनके जैसी आवाज किसी की नहीं है, मतलब वो डिफरेंट है। और आज के दौर में अगर बात करें तो अरिजीत की टक्कर के एक सिंगर तो कोई है नहीं, आप सबको पता है और ये सब मानते भी हैं, क्योंकि वो उनका ऐसा जॉनर है कि वो मतलब कोई भी गाना गा सकते हैं और विद दैट ईज वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा है, तो मतलब इंस्पिरेशन मैं हर जगह से लेता हूँ, ऐसा नहीं है। सोनू निगम सर है ना,
1: उनकी जैसी आवाज भी,
0: उनकी भी आवाज जैसी कोई नहीं है,
1: कोई आवाज नहीं है।

0: रेडियो।
1: जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसको करने का तरीका कुछ अलग सा होना चाहिए। आप उस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं, कितना क्रिएटिव तरीके से करते हैं, ये जरूरी है। और किसी भी काम को करने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अगर खुद पर विश्वास हो तो वो काम फोकस के साथ होता है। सोचो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में कभी आपके साथ हुई हो बचपन में, स्कूल टाइम में, जहां हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम में होता था, फिर चाहे वो कोई खेल क्यों ना हो। इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस के साथ करें।
0: वाह।

0: जब ऐसे म्यूजिक की फील्ड में हम जाते हैं या कोई भी इंसान एंटरटेनमेंट की फील्ड को चुनता है तो इनिशियल डेज में काफी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपके क्या वो चैलेंजेस थे?
1: मेरी लाइफ के तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक वेल सेटल्ड जॉब में था, मुझे बहुत अच्छा ऑफर भी था, सैलरी भी अच्छी थी, जो कि हर माँ बाप को चाहिए होती है कि चलो बेटे को पढ़ाई करवाई है तो बहुत अच्छे से ये काम भी कर रहा है। तो उस समय ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर दिल से तो करना था, दिल तो मान नहीं रहा था कि अब नौकरी तुमसे होगी नहीं। तो जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी तो मैंने 6 महीने तक अपने घर पे नहीं बताया था, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ये, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में था तो घर वालों को कोई आइडिया नहीं था इसने नौकरी छोड़ दी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जयपुर से शुरुआत करी, तो 6 महीने मैंने जयपुर में शोज करे और वो वीकेंड पे मेरे कुछ मैं अपने फेसबुक में या इंस्टा पे पोस्ट कर देता था, तो घर वालों को लगता है चलो सैटरडे संडे इसकी छुट्टी होती है तो ये अपनी
0: शौक
1: पूरा कर रहा है। एग्जैक्टली। पर जब मैं 2019 में वापस आया और जब मैंने बताया घर वालों को कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, तो आपको, आप जानते ही हैं इंडियन पेरेंट्स थोड़े से, तो बिल्कुल खफा हो गए मुझसे। काफ़ी समय तक मेरे से बातचीत नहीं हुई, बातचीत भी नहीं करी, मुझे रोज समझाते थे ये क्या डिसीजन ले लिया तुमने इस एज में, हम तो सोच रहे थे तुम सेटल हो गए हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर नहीं, मैंने सोचा था जो करना है तो अब करना ही है, क्योंकि दिल में एक बार ही ठान लिया था कि अब तो भाई म्यूजिक ही करना है और इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता क्योंकि मैं इसी चीज में अच्छा हूँ। तो बस डिफिकल्टी यही थी कि घर वाले मान नहीं रहे थे, तो बहुत टाइम लगा उनको समझाने में। फिर एक डिफिकल्ट टाइम और आया था, वो तो सबकी जिंदगी में ही था, जब कोविड का टाइम आया था तो आपके पास कोई लाइव शोज की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उस समय काफी तगड़ा झटका लगा था। उस समय एक बारी के लिए दिल में ख्याल भी आया था कि यार ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि अभी अगर नौकरी में होता तो कम से कम सैलरी तो आ रही होती। पर वही है कि जैसे कहते हैं लोग कि जहाँ चाह है वहीं राह है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: मुझे जूम शोज बहुत मिले, मैंने घर में बैठे बैठे शोज करे उसके बाद, सो आई यूज टू गेट पेड थ्रू यू नो जहाँ पे जूम मीटिंग कर रहे हैं लोग, तो जूम मीटिंग में लोग मुझे कहते थे कि आपके पास सेटअप है, मैंने कहा बिल्कुल है, तो मैं उनके लिए एक एक घंटे परफॉर्म कर रहा हूँ, वो घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मजा कम आता था लेकिन उनके लिए वो फन था।

0: और मेरे लिए मेरी मतलब रोजी रोटी टाइप आप कह सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे मैंने जूम में बहुत शोज करे, तो ठीक ठाक चला। बहुत अच्छा समय भी नहीं था, पर मैं ये कहूँगा कि बहुत बुरा समय भी नहीं था, पर कोविड के टाइम पे मुझे टाइम बहुत मिला अपने आप पे काम करने में, तो ये पॉजिटिव पार्ट था। उसके बाद तो मैंने इतने गाने प्रिपेयर कर लिए कि मतलब अब मेरे पास गानों की कमी नहीं है।
1: बैंक भर लिया
0: मैंने अपना। एग्जैक्टली।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: अभी हम लाइव रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे थे, लाइव शो की बात कर रहे थे
1: जी।
0: तो एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना
1: जी
0: और लाइव शोज करना
1: जी
0: काफी डिफरेंस होता है।
1: बिल्कुल।
0: कि आप एक कॉन्सर्ट में या लाइव शो में आप मिस्टेक नहीं कर सकते।
1: ना ना बिल्कुल भी।
0: तो लाइव शो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं?
1: लाइव शो करने के देखिए डिसएडवांटेज तो मैं कुछ कहूंगा नहीं कि कुछ है, क्योंकि लाइव शोज में एक तो आपको क्राउड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आप जब आप परफॉर्म कर रहे हो और आपके सामने कोई क्राउड ही नहीं है तो आपको वो फील ही नहीं आएगी, यू नो। अब हम गाते ही हैं लोगों के लिए और अपने लिए भी गाते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब लोग सामने बैठे हों और थोड़ा म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हों, जो सुनने वाले लोग हों, तो उनके सामने परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। और जैसा आपने कहा कि क्या डिफरेंस है स्टूडियो और लाइव में, स्टूडियो में आप रीटेक ले सकते हैं, लाइव में आप रीटेक नहीं ले सकते, तो ये पार्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा और बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम स्कूल टिल योर कॉलेज क्या क्या आपने कराया?
1: स्कूल मेरा केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला से है, फिर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, बीएससी मैंने करा है आपका डीएवी कॉलेज से, फिर आफ्टर डीएवी पीजी 4 साल मैंने नौकरी करी है। मैंने आपको जैसे बताया कि 7-8 साल मैंने नौकरी करी है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में करी है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में करी है। पहले मैं शिपिंग कंपनी में था, फिर मैं एक स्टाफिंग कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कंपनी थी गुड़गांव में, वहाँ पे था। तो 4 साल वहाँ जॉब करने के बाद 2013-14 में मैंने MBA किया है, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से मैं MBA हूँ। फिर मैंने बिग बाज़ार में एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम किया है, जो बिग बाज़ार यहाँ देहरादून में आया था। फिर मैं वापस नोएडा मूव हुआ, दिल्ली और नोएडा, तो EXL सर्विसेज में काम किया है। फिर ये सब जब हो गया, क्योंकि किसी भी कंपनी में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं शायद बना ही म्यूज़िक के लिए था, तो इसलिए मैं हर 2-2 साल में स्विच कर लेता था फॉर द ग्रोथ एज वेल। पर वही है कि काम में, किसी भी काम में मुझे मज़ा नहीं आया, और जब से मैं म्यूज़िक में आया हूँ फिर मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता।
0: बिल्कुल, काम में मज़ा आना ना बहुत ज़रूरी
1: होता है।
0: तो जब गौतम थापा एक स्टूडेंट था या एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का था
1: जी,

0: और जब अब आप एक फेमस सिंगर बन गए हैं, शहर में गाते हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं
1: जी,
0: तो लोगों के नजरिए में कुछ बदलाव देखते हैं क्या आप?
1: बदलाव एज इन ऐसा कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है। अब स्टूडेंट लाइफ में तो आपको बस आपके फैकल्टीज जानते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स जानते हैं, कॉलेज के लोग जानते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने जब ग्राफिस्ट होता है तो परफॉर्म किया है, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत फेमस हो गया था, और जब से अब यहाँ देहरादून में करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत थोड़े लोग जानते हैं अब देहरादून में कि हाँ कि गौतम थापा इस क्लब में परफॉर्म कर रहा है, तो चलो हम इस क्लब में चलते हैं आज सुनने के लिए।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: हेलो हाय, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और वॉक टॉक रेडियो में मैं हूँ आपके साथ किरण। वॉक टॉक रेडियो पर जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर और अपने बहुत सारे थॉट्स को लेकर हमारे साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और इसी पर आज हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद है उनके बारे में आपको बता दूं, इनका नाम है कृतिका गुरुंग और एक बहुत ही प्यारा सा स्टार्टअप इनका है जिसका नाम है एवांते। तो सबसे पहले कृतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉक टॉक रेडियो पर।
2: थैंक यू सो मच किरण फॉर हैविंग मी।
1: कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: रेडियो का मतलब क्या है आपकी लाइफ में?
2: रेडियो का मतलब है टू कनेक्ट पीपल थ्रू आवर वॉइसेस, थ्रू आवर स्टोरीज, थ्रू आवर जर्नीज।
1: हाँ, सो कृतिका, सबसे पहले जो है मैं आपसे ये पूछूंगी कि कृतिका गुरुंग कौन है, क्या करती है एंड क्या करना चाहती है लाइफ में आगे, क्योंकि जो हमारे लिसनर्स सुनेंगे उन्हें आपके बारे में अभी कुछ नहीं पता।
2: सो कृतिका गुरुंग, शी इज अ ऑर्डिनरी गर्ल हु लव्स शॉपिंग, हु लव्स क्रिएटिविटी एंड छोटे से शहर से है, छोटी सी जगह से है, डोईवाला।
1: हाई फाई, मैं पास ही से हूँ।
2: पास पास वाली जगह से है।
1: हाँ।
2: और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से।
1: ओके।
2: इंग्लिश ऑनर्स, देन एमए इंग्लिश 2021 में कंप्लीट हुआ है। सो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, खाली थी और क्लासेस भी ऐसे ही चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहा था। तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ चलता रहता था क्रिएटिविटी ना, कि क्या किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ, लाइक स्क्रैप बुक वगैरह हो गया या फिर कार्ड्स बनाना, ये सारी चीजें मुझे पहले से बहुत पसंद था।
1: अच्छा।
2: एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि एक आईडी बना लेते हैं, तो फिर माइंड में आया कि चलो स्क्रंची से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रंची से स्टार्ट किया मैंने एंड उस टाइम पे मेरे जो जूनियर्स रहे हैं कॉलेज के इंग्लिश ऑनर्स के बैच के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे ना।
1: कैसा सपोर्ट?
2: उन्होंने काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह शेयर किया, खरीदा मुझसे।
1: अच्छा।
2: काफी स्क्रंचीज, तो मेरे लिए वो काफी मोटिवेटिंग था उस टाइम पे ना। अगर आप कुछ सामान बना रहे हो या फिर कुछ आपने लाके रख दिया दुकान में, आपने दुकान भी खोली, कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं है, तो एक बहुत ज्यादा ना डीमोटिवेशन टाइप का हो जाता आपके लिए। हाँ, लेकिन आपने कुछ स्टार्ट किया एंड लोग आपको
1: अप्रिशिएट
2: कर रहे हैं, आपको आगे वो कर रहे हैं, फेमस टाइप का कर रहे हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके, लेकिन हाँ वो काफी मेरे लिए उस टाइम पे मैटर करता था, उस टाइम पे अभी भी मैटर करता है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ एवांते का जर्नी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: सो जब ये स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल पढ़ाई वाला है एकदम, और ये जो आप काम कर रहे हो एवांते के अंदर वो एक क्रिएटिव साइड है आपका, तो उस टाइम पे घर वालों को ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हो, कॉलेज तो किसी और चीज की फीस हम दे रहे हैं और तुम जो जो चूज कर रही हो, काम कर रही हो, वो कुछ और ही है, तो उनका क्या रिएक्शन था उस पे?
2: बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंट, बट मेरा ये है कि अगर मैंने कुछ चीज स्टार्ट किया है या फिर कुछ ठान लिया ना, फिर फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी बोले, तो करना है तो करना है, चाहे मैं रात के 2 बजे तक करूँ चाहे 3 बजे तक करूँ, और मॉर्निंग में उठ के और फिर मुझे कॉलेज भी जाना पड़े ना 7 बजे, तो चलता है मेरे लिए ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
1: बड़ी बिंदास था आपका जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, था
2: ये चीज माइंड में थी तो फिर करती गई। हाँ, पेरेंट्स बोलते थे कि कुछ जॉब वॉब का देख लो, बाकी साइड बाय साइड में अपना पढ़ रही थी उस टाइम पे, और कॉलेज भी फिर खत्म हो गया, और कॉलेज में कुछ प्लेसमेंट का भी कुछ आया नहीं उस टाइम पे, तो एक तरह से ना माइंड में थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो रहा था वो साइड बाय साइड, बट एवांते मेरे लिए ना एक वो था खुद को हील करने का ना, हम किसी न किसी चीज के थ्रू खुद को हील करते हैं, कोई घूम के करता है ना, और तो मेरे लिए वो थी क्रिएटिविटी, तो उसी में मैं बिजी रहती थी, कभी उसका कंटेंट बनाने में, कभी उसको यू नो बनाने में उसी चीज को, या फिर उसको पिक्चर्स क्लिक करने में, फिर सोचने में कि अरे इसका क्या नाम रखना चाहिए, इस वाली स्क्रंची का इसको कैसे हम डिफरेंट तरीके से यू नो प्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे रीच बढ़ाया जाए, तो माइंड में वो चलता रहता था। तो मैंने ज्यादा ना उस चीज को, जो चीज है नहीं उस चीज को मैंने ना ज्यादा उस टाइम पे सोचा नहीं कि जॉब नहीं है करके, तो इसी सोच के यू नो लेके मैं आगे बढ़ती गई, तो ऐसे ही अब 2 साल भी हो गए एवांते को।
1: हाँ, मतलब वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उस बात का दुख नहीं मनाया, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने अपने आप को टाइम दिया उस टाइम के लिए कि कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं तो करने दो, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी।
0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज से हो सकते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी काबिलियत बस आप ही पहचान सकते हैं।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: Walk Talk Radio.
1: कि जब आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं ना, वो बहुत बड़े हमारे क्रिटिक्स बहुत सारे आते हैं इधर उधर से, कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं, लेकिन कई लोगों को ना वो चीज तोड़ देती है.
2: मैंने आपको बताया मैंने स्क्रंची से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मार्केट में जाके फैब्रिक चूज करती थी. अगर आप कुछ अपने लिए लहंगा भी बना रहे हो या फिर नॉर्मल एक सूट या कुर्ती ले लो, तो आप कुछ फैब्रिक देख के लड़के को होता है ना, खुद को इमेजिन कर लेती ओके इसका ये वाला इस फैब्रिक का कि ओके इस फैब्रिक में और इस प्रिंट में और इस एम्ब्रॉयडरी में ये स्क्रंची बहुत अच्छी लगी.
1: एस्थेटिक सेंस.
2: हाँ, तो वो चीज था पहले से ना, बट सुनने में ये आता है कहीं से, पता लगता है कि ये ना बचे हुए कपड़ों का बनाती होगी ये लड़की, उन्हें पता भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं वांथे में चल क्या रहा है. बट बातें कैसे बनाएंगे ना फिर, अगर देख लेंगे तो. तो ये चीज सुनने में आती थी, तो लगता था कि भाई क्या ही क्यों ही बोलना है ऐसे लोगों से, सोचने दो उन्हें जो सोचना है, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, सो लेट इट बी, आप जाओ आप जिसको जो बातें करनी है करो, मैं ऐसी खुश हूँ मैं ऐसी कर रही हूँ.
1: तो उस वक्त अब ये तो रही क्रिटिसिज्म वाली बात, एप्रिसिएशन की बात करूं या फिर कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूं आपके वर्क को लेके, लेकिन जब किसी का कॉम्प्लीमेंट आता है, जब कोई कह देता है यार बहुत अच्छा कर रही हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, तब सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ. तो वो कॉम्प्लीमेंट्स कौन कौन से थे, कहाँ से आए हो?
2: जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, नॉट स्टार्टिंग, लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने एक मैम है दैट सिली वॉन्डरर करके उनका इंस्टाग्राम में नेम है, मिनर्वा मैम उनका नाम मिनर्वा है. तो उस टाइम पे मैंने उनको कोलैबोरेशन के लिए पूछा था, तो उन्होंने पेज वगैरह चेक किया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया. और उनके मतलब जब उन्होंने कोलैबोरेशन किया तो काफी फॉलोवर्स भी आए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज को ना, काफी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने कोलैबोरेशन वाली रील पे. तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ना एक माइलस्टोन टाइप था. अच्छा, उस टाइम पे ओके. और उसके बाद चीजें काफी अच्छी होने लगी, यू नो फैमिली फ्रेंड्स जब कुछ भी गिफ्ट विफ्ट भी हो, छोटी मोटी चीजें वो मेरे से ही आके पैक करवा रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो मेरे लिए काफी वो था, वो ओवरवेलमिंग था काफी कि ओके नाउ इवांते इज देयर फर्स्ट चॉइस, आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है सही चल रही हूँ.
1: ओके
0: वॉक टॉक रेडियो. Tune in for a better life.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो,
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हों, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप हंसकर मुश्किल का सामना करते हैं तो यार मुश्किल भी एक दिन शर्मा के भाग जाएगी।
0: वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio.
1: आपने अभी कोलैबोरेशन की बात करी, और अगर मैं बोलूं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपने आइडिया से एक स्टार्टअप किया है और सोच रहे हैं कि उसको एक एक उस जगह तक पहुंचाएं जहां तक वो चाहते हैं, तो सोशल मीडिया की जहां तक मैं बात करूं, एंड क्योंकि आप एक यूथ हो तो आप बता सकते हो कि सोशल मीडिया कितना हमारे लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए खराब भी है, और अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका सही इस्तेमाल करना जाने, तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है. आपका कैसा एक्सपीरियंस है?
2: आई से कोलैबोरेशन को लेके बोला ना आपने, लाइक उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, जैसे मैंने आपको मिनर्वा मैम का बताया, और भी है दो तीन जो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो रील्स वगैरह शेयर करते हैं, पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, जिनकी ऑलरेडी मतलब केस में है फॉलोवर्स. इस बीच ऐसी चीजें भी हुई है जब मैंने एल से गलत लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लिया. वो भी पेड कोलैबोरेशन, फर्स्ट और लास्ट टाइम था वो, जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी बहुत दिए, ठीक है, और पेड कोलैबोरेशन था, पैसे भी दिए, लेकिन ना उसमें एक फॉलोवर आया, ना उसमें कोई कुछ रिव्यू वगैरह इतना कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं किया, और वो भी चीज बार बार बार बार बोलने पे. एंड जब आप बार बार किसी को बोलते, फिर वो बोलते हैं कि यू आर रेस्टलेस, व्हाई यू आर बीइंग सो रेस्टलेस. तो हम बोलते हैं ना, जैसे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आई नॉट से कि वो बुरी है या वो, लेकिन जब आप कुछ काम कर रहे हो, आप उस चीज पे प्रोफेशनली उस चीज को डील कर रहे हो, तो भले वो स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो, आप उस चीज को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको पेमेंट मिल चुकी है, तो आपको वो चीज भी उतनी ही श्रद्धा से करनी चाहिए जितनी आपने बाकी चीज को किया है. एंड वो चीज उन्होंने की नहीं, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए. तो ये चीज भी आई डोंट नो कि कितनी आनी चाहिए उस सोशल मीडिया में, लोगों को कैसे पता लगना चाहिए कि हाँ कौन फेक है, कौन ऑथेंटिक है, कौन रॉ है, और कैसे कर रहा है अपनी चीजों को. सबका अपना अपना वे है, बट इन सब चीजों में बिजनेस ओनर्स को मैं यही बोलूंगी कि बहुत सोच समझ के स्टेप ले जब हम कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर्स कैसे आते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, एक टाइम पे एक वो हाइट पे भी चले जाते हैं कि बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट फिर वही ना, जैसे हम बिजनेस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं,
1: हाँ.
2: बहुत ऊपर भी जाते हो तो फिर उसी हिसाब से नीचे भी नीचे आते हो, तो वो बैलेंस करना भी है. तो जब हम किसी पे स्पेंड कर रहे हैं कोलैबोरेशन वगैरह में, तो सोच समझ के उतना आपको रीच आना भी चाहिए जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं.
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

0: A lion will never have to tell you that he's the king of the jungle. The eagle will take its flight knowing it owns the sky. And the shark will go about casually in the ocean just making its presence. You know, friends, it's never that noise you should make that will prove your value and people will hear it. But it is the skill, it's a hardship, it's the work which you might be doing constantly and people are noticing it. You don't need to prove yourself to the other people who will always try to pull you down. But you need to continuously work on yourself. Walk on the road marked by you. That consistency and persistence is needed in your this journey. The success ultimately comes. People would follow you. People would praise you. But people would praise you for your hardship, your determination. So stop seeing here and there what people are thinking about your work, whether they're praising or pulling you down. Just go ahead.
1: हाय, मेरा नाम शुभ बिश्नोई है. मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड. आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर. आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो तीन चीजों की अगर हम बात करें, पेड़, पानी और फार्मिंग के लिए लैंड. तो पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन, बिना पानी के कोई जिंदगी नहीं. और फूड की बात करें तो बिना फार्मिंग के कोई फूड नहीं. लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को नाला बनाया जा रहा है और खेतों पे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब बनाई जा रही हैं. लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जिंदगी के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए. बिना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ना आगे कभी जिंदगी होगी, ना ये कभी कोई जानने के लिए बचेगा कि ह्यूमन रेस या फिर एनिमल रेस करके कोई होता था. अगर हम बात भी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो सिर्फ बातों तक या डिबेट्स तक ही सीमित रह जाती है. अगर हम बात करें कुओं की तो गाँव में जो कुएं होते थे उनको भर दिया जाता है और उनपे जमीन बना के उनपे कब्जा कर दिया जाता है. सारी नदियों में इतना कचरा, इतना इंडस्ट्री की फैक्ट्री का, कुछ ना कुछ रसायन डाल के उनको हम नालों में कन्वर्ट कर देते हैं. और खेतों की तो बात ही क्या करें, वहां हर जगह कंस्ट्रक्शन होती है. लेकिन ये बात गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही अलार्मिंग लगी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स निकाले और विलेजेस में वापस वेल्स या कुओं को वापस खोदना शुरू किया गया. और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आज हिंदुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र है, जहां पे

0: वापस से कुएं खोदे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर टेबल कम हो रही है और लोगों को पानी की आगे फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एक और अगर हम बात करें कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो माइनिंग की आती है। अब आप देखेंगे कि अगर कहीं पे भी माइनिंग होगी, चाहे वो कोल की हो चाहे क्रूड ऑयल की हो, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज और कहीं पे भी रिजर्व एरियाज में होती हैं। तो ये एक और बात ये होगी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर माइनिंग होगी तो जंगल के पेड़ कटेंगे, जितनी भी हमारी माइनिंग के लिए डिगिंग की जाएगी, हमें जितनी भी हमारी मशीन्स लगी जाएंगी, वो किसी ना किसी कोल या पेट्रोल या डीजल या किसी ना किसी चीज पे चल रही होगी, उसके तहत हमें और पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, बर्निंग ऑफ ऑयल होगा, और साथ ही साथ जब हम इस क्रूड ऑयल को माइनिंग करके कुछ भी कहीं भी ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में उसे रिफाइन करने के लिए पॉल्यूशन और होगा, और लास्ट में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, हम हर दिन ट्रैफिक में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी को जाना होता है, वहाँ पे भी पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से नहीं होता है, पॉल्यूशन हम सब कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनते हैं। अगर आप कहीं पे भी आ, चाहे आप अपने उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप देखेंगे लोगों को एक ही ऑफिस में जाना होता है, लेकिन वो फोर व्हीलर से एक फोर व्हीलर में एक व्यक्ति बैठा होता है, तो उससे क्या पॉल्यूशन बढ़ता नहीं है? पार्किंग की दिक्कत आती है, हर किसी को गर्मियों में छाए में पार्किंग और सर्दियों में उनकी गाड़ी गर्म रहे तो धूप में पार्किंग चाहिए होती है। नेचुरल रिसोर्सेज की बातें सिर्फ बात ना रहे, हम इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट और बच्चों के फ्यूचर जनरेशन का इंपॉर्टेंट हमें दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना है। हम सब सोचते हैं कि हमें अपने घर को बचाना है, घर को साफ रखना है, तो सबसे पहला घर अगर आपको मानना है तो आपका सबसे पहला घर ये धरती माता है, ये धरती है मदर नेचर जिसे आप कहते हैं। आपका घर सिर्फ चार दीवारी तक सिमटा हुआ नहीं है, आप ये सोचिए कि आप किस तरीके से नेचर को सेव कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो, चलते रहिए अपने रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाइए, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, बस में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, कहीं भी, कभी भी, क्या पता कौन हमसे किस बात पर बुरा व्यवहार करके चला जाए। तो जवाब में हम क्या करें? दोस्त अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। तो बुरे के लिए हम भी क्यों बुरा बने? आप जैसे हैं वैसे ही रहे, और ऐसे ही बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: अगर जिस दिन आपने खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आपने लाइफ को जीना छोड़ दिया। आपकी लाइफ में आपकी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन एक बार जब आप दूसरों को खुद से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो आप दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर दोगे। आपको आपके पास जो भी है आप खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहोगे, जिसके चलते आप कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, तो फिर रिमोट भी आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए दूसरों के बारे में सोचना या फिर खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो।
1: Walk Talk Radio। नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे, जॉइंट फैमिली। तो हिंदुस्तान बहुत चीजों के लिए जाना जाता था, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण चीजें थी हमारी, वेल्थ, हेल्थ और फैमिली। जब ब्रिटिशर्स या इन्वेडर्स आए, वो हमें लूट के, हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को लूट के चले गए, जहाँ पे हमारी वेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ा। जो हमारी हेल्थ थी, हमारी आयुर्वेद और योगा, जो पूरे वर्ल्ड या पूरे विश्व में बहुत आज भी प्रसिद्ध है, उसको खत्म करने के लिए हमें जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी इंग्लिश दवाइयां हमारे ऊपर थोपी गई। और तीसरी चीज, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी फैमिली, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज, और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर की सोच डाली जा रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए पांच लोग हैं, तीन भाई और दो बहने, अब उनके हस्बैंड्स भी होंगे, वाइफ्स भी होंगी, और उनके बच्चे भी होंगे, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये 25-30 या उससे आगे का, ज्यादा का एक परिवार बन जाता था। अब हर एक व्यक्ति की, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी एक ना एक व्यक्ति से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, चाहे वो भाई की बहन से हो, चाहे एक बच्चे की ताऊजी से या बुआ से या चाचा से, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी और खूबसूरत होती थी, जहाँ पे वो सब कुछ खुल के शेयर कर देते थे। खूबसूरती तो जॉइंट फैमिली की एक और है, वो कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सबके लिए इक्वल होता था, कोई अलग नहीं, कोई अपना नहीं, सब अपने होते थे, सब इक्वली ट्रीट किए जाते थे। अगर घर में शादी भी होती थी तो कुछ ना कुछ करके शादी इतने प्यार और आराम से निपटती थी कि किसी एक व्यक्ति पे बोझ ही नहीं आता था। लेकिन आज वही जॉइंट फैमिली टूटने लग गई है, फैमिलीज रिश्तेदारी में बदल गई है, जो सिर्फ आते हैं और थोड़ा बहुत काम करा के चले जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति को इतना मजबूत रखें कि चाहे कुछ हो जाए, हम वो कॉन्फिडेंस और वो जितना भी हमारी स्ट्रेंथ थी वो कहीं जाने ना दें। तो क्या किया जाए कि अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, उसे जॉइंट फैमिली फिर से बनाया जाए? तो मेरा मानना है कि महीने में, 15 दिन में एक डिनर क्यों ना किया जाए, जगह बैठकर एक किसी के हर दिन घर चूज करके वहां पे जाया जाए, डिनर किया जाए, बॉन्डिंग की जाए, ताकि आपको शेयर करने के लिए आपके भाई बहन बने। दो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: वॉक टॉक रेडियो। कभी भी हौसला मत खोना ए मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे ही हौसलों का बहाना लिया हो।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई। मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर, और अब हम बात करेंगे कि आप सभी खुश रहो। तो खुशी है क्या? खुशी एक मन में होने वाली एक सुखद अनुभूति है, एक फीलिंग है जिसमें आप बस सुखी हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने रावण के बारे में सुना होगा। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो सुखी नहीं था। उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। और दूसरी ओर आप दूसरे पहलू को देखें तो हमारे प्रभु श्री राम जो राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ के आ गए और एक छोटी सी कुटिया में अपने एक भाई के साथ वन में रहते थे। तो खुशी कोई चीज नहीं है जो आप कहीं से लेके आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरे को खुश रहना है, मैं क्या करूं, मैं खुश कैसे रहूं। तो खुशी एक चीज नहीं है कि आप जाके दुकान से ले आए या मार्केट से ले आए, या फिर ये कोई लिविंग की स्टाइल नहीं है। खुशी तो तब मिलती है जब आप सुखी हैं, टेंशन नहीं है, लाइफ में जैसे हैं जो है उसके साथ आप सैटिस्फाइड हैं। था मैंने ये कहीं सुना था कि केमिस्ट्री में जैसे हमें पढ़ाया जाता था कि जब एटम या न्यूक्लियस कुछ टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी तरीके से जब आप दुखी होते हैं, आप टूटते हैं कहीं से, आपका मन टूटता है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने आप को थैंकफुल करिए कि आपकी जो एनर्जी है इसको आप सही जगह डाल के आप खुशी के माध्यम या खुशी के रास्ते जा सकते हैं। ये एनर्जी को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुश होता है ना, उसकी अलग ही दुनिया होती है, वो उसी में मग्न होता है। अब एक स्टूडेंट या यूथ की लाइफ में एग्जाम्स एक बहुत बड़ी चीज होती है, कॉम्पिटिशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपने पूरी मेहनत की, आप खुशी से मेहनत कीजिए, और 1% को अगर जो चीज आप जिस लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हैं वो नहीं हो पाए, तो ये सोचिए कि आपका प्रायोरिटी क्या थी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुशियां थी। आपके पेरेंट्स के लिए भी आपका सक्सेसफुल होना जरूरी तो है, परंतु वो चाहते हैं कि आप खुश रहिए, वो पहली प्रायोरिटी रहती है। तो आप ये जान चुके हैं कि खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सब छोड़ के आप खुशी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके 10 दरवाजे और खुलेंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप खुश हैं? क्या आपको खुशियां ढूंढनी जरूरी हैं? जो आपकी लाइफ जैसे है क्या उसमें सैटिस्फाइड नहीं है? जो लोगों को चीजें नहीं मिलती क्या आपके पास वो नहीं है? मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर अभी अपने मन में जरूर ढूंढेंगे, और इसका उत्तर आज जब भी आप ये सुन रहे हैं आज जरूर ढूंढिएगा। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। Tune in for a better life.

0: रेडियो।
1: कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
0: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हम बात करने वाले हैं राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। आप ज्यादा नहीं, बस 20 साल पहले देखिए, जब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, पुराने लोगों को ज्यादा अच्छा फील होता था, क्योंकि जब फोन नहीं थे वो अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनकी अलग हॉबीज होती थी। लेकिन जब से फोन आया है, जब से हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट आया है, तब से हमें अनयूजफुल, फेक, मोल्डेड और फैब्रिकेटेड न्यूज और इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती, और जिसमें हमें ज्यादातर हमारी जो मेन फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें छुपा दिया जाता है। मेरा मानना है कि अगर सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, अगर इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करें तो ये एक बीमारी है जो ड्रग से भी खतरनाक है। एक इंसान पूरे दिन सोशल मीडिया पे बस स्क्रॉल कर सकता है, बिना कुछ खाए, एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, बिना कुछ कंस्ट्रक्टिव किए वो बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सकता है। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी बच्चे को अपना मोबाइल दे दें और वो पूरे दिन बस उस मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आप शाम को रात में उससे जाके पूछिए कि आज आपने पूरे दिन फोन यूज किया, आपने आज क्या सीखा, तो आंसर आपको एक ही मिलेगा कि कुछ नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का जहाँ पे हमें सही उपयोग करना था, वहाँ पे हम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट में सिर्फ गलत प्रभाव ही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की पहले से और आज में बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एजुकेशन में बहुत हेल्प किया है। नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, आपके पास सूचना पहुंच सकती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सरकार लोगों के पास आराम से पहुंच सकती है, आपको सही गलत के बारे में बता सकते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में आसान हो गया है। इसी का अगर हम उदाहरण लें तो पहले अगर आपको ट्रेन की रिजर्वेशन करानी होती थी तो आप जाने के लिए तो यहाँ से कहीं जहाँ पे आप हैं वहाँ से करा सकते थे, लेकिन लौटने की रिजर्वेशन के लिए आपको एक चिट्ठी भेजनी होती थी जहाँ से आपको लौटने की रिजर्वेशन करानी है, वहाँ पे वो एक ट्रेन से जाती थी, दो दिन वहाँ पे अप्रूव होती थी, फिर एक ट्रेन से वापस आती थी। लेकिन आज आप विद इन सेकेंड्स आप बुक भी कर लेते हैं और उसे कैंसिल भी कर लेते हैं। आपको एक व्यक्ति, आपके माता पिता आपको सही दिशा और सही रोड दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए चॉइसेस नहीं बना सकते हैं। ये आपको चूज करना होगा कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है आज के लिए और कल के लिए, क्या आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से या उसके सही उपयोग के माध्यम से आप अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप नेशन को कुछ वापस दे रहे हैं, जितना भी नेशन ने आपको दिया है क्या आप उसे घूम फिर के नेशन को भी कुछ दे रहे हैं, इस बात पे जरूर सोचिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी क्या रजा है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि खुदा तुमसे खुद पूछे, तुम क्या चाहते हो भाई, क्या दूं तुम्हें।

नमस्कार, मेरा नाम शुभ बिश्नोई, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन, जिसे आप पलायन भी जानते हैं। बाकी नहीं, हम अपने उत्तराखंड की बात करें जो 2000 में बनाया गया था। इसमें बहुत सारे रीजंस थे उत्तराखंड को बनाने के लिए, लेकिन उसमें से दो तीन रीजन ये थे कि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट रहेगा, उसमें डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है और रोजगार मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। लेकिन आज शहरी जिंदगी के आकर्षित होकर जो हमारे युवक हैं और अन्य लोग हैं उत्तराखंड के, वो पहाड़ छोड़कर शहरी जिंदगी जीने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं। वो दिल्ली जाते हैं, अलग शहरों में जाते हैं और वहां जाते ही उनके सपने टूट जाते हैं। एक छोटा सा कमरा होता है, रोजगार के लिए छोटे मोटे उन्हें काम करने पड़ते हैं, वो लौट के नहीं आते हैं, जिंदगी में वैसे ही निकल जाते हैं। पहाड़ों पर होते हैं वो ये सोचते हैं कि शहर में उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, वहां जाके उनकी कमाई अच्छी होगी। लेकिन वो एक चीज ये भूल जाते हैं कि शहरी जिंदगी में शहरी खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, तो जितना वो पहाड़ों पे उन्हें मिल रहा था उतना ही उन्हें शहर में भी मिलता था। सरकार ने बहुत सारी नीतियां निकाली हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों के लिए, होम स्टे जैसी चीजें, छोटी मोटी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने, उन्हें प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारी चीजें प्रयास करी है। अगर आप उत्तराखंड में ही रहें और उत्तराखंड को देखें, उत्तराखंड में क्या कुछ नहीं है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उत्तराखंड में। केदारनाथ हमारे पास है, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे पास हैं। क्योंकि पहाड़ों पर आप पे खुद का घर है, खुद की जमीन है, खेती है, अलग तरीके के रिसोर्स हैं, दोस्त हैं, एक हिम्मत बनती है, कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन तब भी हमें वो शहरी जिंदगी, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे दिमाग में बहुत पहले डाल दिया गया था, वो अभी तक निकला नहीं है। हमें अभी भी दिखावटी रूप में शहरी जिंदगी जाना है ताकि हम बोल सकें कि मैं शहर में नौकरी करता हूँ। लेकिन वो दुख और जो तकलीफें शहर के व्यक्ति को प्लान करके जो सहनी पड़ती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो क्यों ना हम अपने यूथ को और आसपास जितने भी, उन सभी को समझाएं। आप खुद ये सोचिए कि क्या नहीं हो सकता है उत्तराखंड में। इसे हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं और देवभूमि जिसे हम देवों की भूमि कहते हैं, तो क्या देवों का आशीर्वाद नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इको पार्क स्टार्ट कर सकते हैं, होम स्टेज हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, अन्य चीजें हैं, आयुर्वेदों से जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो आप इस बारे में सोचिए कि क्या पलायन करना जरूरी है, क्या उत्तराखंड में रोजगार नहीं बनाया जा सकता, नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडियाज जागरूक नहीं किए जा सकते। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय गाइस, माय नेम इज काव्या और मैं अपने बारे में क्या कहूँ. आई थिंक मैं एक रूरल एंटरप्रेन्योर हूँ जो गांव में रहती हूँ, इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट्स बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट मी.

कहते हैं ना, जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं उनके सपने भी सपने बने रह जाते हैं। पर कोई बात नहीं, जो होता था अच्छे के लिए होता था, शायद वो वक्त ही गलत था।

अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। आपका स्वभाव ही आपको लोगों के करीब लेकर आता है और आपका स्वभाव ही आपको लोगों से दूर लेकर जाता है। गौरतलब करिए कि आपके होने से क्या लोगों में खुशी होती है, उनमें हैप्पीनेस आती है, लोग आप लोगों से चहक के महक के बात करना चाहते हैं या आपको देख के इग्नोर करते हैं, आपको देख के दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन की हर कड़ी हमारे खुद के स्वभाव से जुड़ी हुई है। अपने स्वभाव को चेक करें और जब जहां जाएं अपने स्वभाव अपने व्यवहार से खुशियां बांटें। Walk Talk Radio.

0: Walk Talk Radio.
1: So, I think Craft Potli का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूँगी 2009 के आसपास शुरू हुआ. हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं. एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी. तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम नट्स. एंड मी बींग कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई फादर हैज 10 other brothers, sisters. So we were lots of kids, you know, in Rajasthan. So she would always have this and she would give something from her potli to kids. So I was like, okay, craft potli. And back then, wo domain mujhe mil gaya. To wo tab se raha. But uske baare mein, I did nothing. For 10 years, I kept working. And iski shuruaat aise hui ki pandemic aaya. And I think hum sabhi ne apne aap ke baare mein thoda kuch jana. I also understood ki jo main rural travel kar rahi thi for my fun, विद द जॉब ऑन वीकेंड्स, वो रियली ट्रैवल नहीं था. मैं वापस आती थी अपने कम्फर्ट जोन में, जॉब करती थी, सैलरी लेती थी. इट वॉज पैंडमिक दैट मेड मी रियलाइज कि इफ आई हैव अ पैशन, देन मुझे उसका टेस्ट लेना चाहिए कि वो पैशन रियली है भी या नहीं. कैन आई लास्ट दैट? सो आई टुक दिस मैसिव जर्नी, इट्स कॉल्ड काव्या ऑन क्वेस्ट. थोड़ा सा अच्छा उसका गूगल ट्रैक्शन है, आप देखिएगा. सो आई टुक दिस विद महिंद्रा ऑन 2nd अक्टूबर. द आइडिया ऑफ काव्या ऑन क्वेस्ट वॉज दैट नॉन स्टॉप आई विल बी ऑन द रोड्स कवरिंग विलेजेस ऑफ इंडिया एंड टेलिंग देयर स्टोरीज विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, विदाउट फॉलिंग इल. आई थिंक आई वुड बी, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस. आई टुक 42 कोविड टेस्ट्स इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम. I started this journey on 2nd October 2020 after first pandemic and ended this journey in end of May 2021 and covered non-stop without staying in hotels or taking any guides, just covering crafts of India. Early in this journey, I figured ki while I am from Rajasthan, which is like a craft hub or Kutch, I thought that the focus has to be to Eastern India, जहाँ पे बहुत सारा culture है but ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है. तो जब मैं वहाँ पे गई, I still remember, it was January 2021, I first entered the land of Odisha. And Odisha के हम जब भी बात करते हैं, we just know Puri और Bhuvaneshwar. I entered into a land where I saw James Cameron Avatar movie coming to life. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि ऐसे rolling jungles हैं, clouds हैं and उसमें आदिवासी people live freely. It was like Avatar movie came in front. I had never seen, like I've been to Ladakh, I've been to beautiful places like Spiti, Andaman, but Koraput was something else for me. And when that journey ended in June, I was like, either go back to my job in Gurgaon, which was paying me well, or do something about your life. And I had 2-3 options. So I thought, okay, ya to West Bengal mein kahin pe jaate hain ya Chhattisgarh mein or Odisha. Now Odisha being very well connected by air, and generally since I also live solo, I felt it was a great opportunity for me to kind of relocate. So I relocated to Koraput and started with something really small. Craft Potli started its operations with a mere turmeric bar. That has now become a case study with the Tata Institute of Social Sciences in Bombay. It was a breakthrough product in itself. First 6 months of me living from August 21, when I moved to the village, till about, I would say, October or November 21, I would just go village to village, go to Adivasi Haats on weekly basis. घूमती रहती थी, उन लोगों को लगता था ये कौन सी लड़की है, क्या कर रही है. तब मैंने डिस्कवर किया कि ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा हल्दी उगता है, विच इज़ नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड एंड इट डजंट गो आउट ऑफ देयर ओन विलेजेस. सो कमिंग फ्रॉम द लर्निंग दैट आई वॉज हैविंग विद माई जॉब्स विद अ फैशन ब्रांड दैट आई वॉज वर्किंग बिफोर पैंडमिक, वी डिसाइडेड टू टर्न दैट टर्मरिक बार इन टू अ बेदिंग बार. Now, these people, जिनके में हम बात कर रहे हैं, वो लोग एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जो आज भी सुबह उठ के जंगल जाते हैं एंड फ्रूट्स तोड़ के लाते हैं, उसके बेसिस पे या थोड़ा हल्दी उगाते हैं या कुछ कॉफ़ी उगाते हैं या सब्जी उगाते हैं, उसी पे ही जिंदा रहते हैं. फॉर देम दैट इज़ देयर लाइफ स्टाइल. सो टू मेक देम लर्न हाउ टू मेक अ बेदिंग बार वॉज अ चैलेंज इन इटसेल्फ. We gathered about 62 women from 5 villages. All of them belong to the Kondha tribe, and they learned in 7 days how to mix the right proportions, the right percentage, usko dry kaise karna hai. Ye sab seekh liya, lekin beche kahan? That was the major question. So friends and family came into picture. I think every entrepreneur does that. I can say that now. So I sent these bars packed in brown paper, jo hum bachpan mein use karte the kitabe chadhane ke liye. Usse bheja and the reviews were fantabulous. It was something that I had not expected. People kept on repeating. My own relatives kept on asking. And that's where we thought, okay, let's increase the production. Thoda sa apna paisa dala and we worked on the packaging a little bit. Then it was, I think, April 2022, very recently, that a Bangalore customer reached out to us that, can you make a lot more of this bar? Like, volume aap kar sakte ho. So we said, yes, now we have 14 women actively working, but we have 62 trained and we can train more people. So, yeah, and I think that was the pivot for Craft Potli. In April 22, we started supplying to one of the United Nations agency in Guatemala in Central America. And that is where volumes came in. When volumes came in, we got some confidence to add more products to Craft Potli and also define ourselves ki we will not be working in rural but Adivasi belts of the country. And that was like a long story to a short question that Craft Potli ki shuruaat kaise hui.

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

मैं शेयर करना चाहूँगी मेरा एंट्री इनटू विलेज, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग ऐसे सोचते थे. अभी मुझे आई थिंक मैं अगस्त 21 में शिफ्ट हुई थी फुल टाइम इनटू अ फॉरेस्ट विलेज. तो लोग पहले ऐसा सोचते थे कि ये लड़की मिट्टी के घर में रहती होगी लेकिन ऐसा नहीं है. बट बहुत टाइम लगा मुझे, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. जो भी आज हम काम कर रहे हैं बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू बिग स्टार्टअप्स. कई लोग मुझसे बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक साल में क्या किया. मैं देखती हूँ कि यू नो वन ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप्स पिवट कर जाते हैं, बट हम लोगों का ग्रोथ हैज़ बीन वेरी स्लो एंड माइंडफुल. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस उन सभी लोगों के लिए जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखते हैं, कि आई थिंक स्लो ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया. तो मैं ये बताना चाहूँगी ये इंसिडेंट कि मुझे 6 महीने लगे टू स्टार्ट माई फर्स्ट प्रोडक्ट. क्योंकि हो सकता है कि पहले आप किसी नोशन को लेके किसी गांव में आओ, वो चीज़ आपके लिए काम ही ना करे. पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी ज्वेलरी पे काम करूंगी, बट वो नहीं वर्क किया. आई हैड नेवर थॉट कि मैं टर्मरिक पे काम करूंगी, यू नो. एंड उसके बावजूद भी लोगों गांव में जनरली भरोसा धीरे धीरे आता है, और जब एक बार आ जाता है फिर वो लोग आपके लिए कुछ भी कर देंगे. तो फॉर मी दैट टुक अ लिटिल टाइम. मुझे 6 मंथ्स लगा टू ब्रेक दैट आइस बोलें या हम केमिस्ट्री बोलें. एंड जब वो 6 महीने का पीरियड पास हुआ एंड इट वेंट थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, चाहे आप टैटू कह लीजिए मेरी बॉडी पे, या आप जितने भी फेस्टिवल्स, या आप मेरा इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखेंगे, तो आई थिंक इट टुक मी अ वाइल. बट जब वो एक बार वो हो गया देन इट वॉज अ इजी राइड फॉर मी. आई

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ आपकी कमियों को ही दर्शाएंगे। हो सकता है बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि दुनिया का तो काम ही है आपको बार बार गिराना, और हमारा काम है ढीठ बनकर बार बार उठ खड़ा होना। इसलिए जब जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाए, तो याद करिए अपनी उन तमाम खूबियों को जिनको आप जानते हैं, और करते रहिए कोशिश लगातार, और बनते रहिए बेहतर हर बार।
0: Tune in for a better life. Tune in for-

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। MS धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज RJ गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा, और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, दीक्षा चाटपाल in वॉक टॉक रेडियो।
1: Thank you so much. Wow. It's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे एक्टिंग का मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माय ग्रैंडफादर ही वाज अ म्यूजिशियन एंड माय डैड ही सिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वाज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माय हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था। तो आई जस्ट फॉलोड माय हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।

जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ठीक वैसे ही बुरे के बाद एक अच्छा वक्त भी तो आता है। सोचने वाली बात है कि जिंदगी में हम इतना घबरा जाते हैं मुश्किलों को देखकर, हम लड़ते नहीं है, लड़ना नहीं चाहते। देखिए, लाइफ को जीना है ना तो वॉरियर बनना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और जब तक हम खुद को स्ट्रांग नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी मुश्किलों का हमारा फायदा उठाते जाएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने झुको मत, बस काम पे फोकस करो और कभी भी डरना नहीं है। सिचुएशन हर किसी के साथ होती है, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है और उन्हें सॉल्व करना है, और उसके लिए खुद को टाइम भी तो देना है। इसीलिए जिंदगी में वॉरियर बनें।

0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोका कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। सो यस एंड या।
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So, I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. Mm-hmm. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my

0: एक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय जॉब. बट
1: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को, हाँ, तो कैसे भी पहुंच जाता है.
0: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज है, वो चीज है, वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है. सो इट इज लाइक दैट. बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती. वो कभी नहीं होती है. सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स. आई डोंट नो, इट्स जस्ट let life happen to you.

कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।

0: सो यू वर्क इन बॉम्बे बट यू आर अ दुनाइट गर्ल, तो क्विकली आंसर बॉम्बे एंड और देहरादून एंड व्हाई.
1: ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज देहरादून. आई थिंक मैंने काफी ट्रैवल किया है और ट्रैवल करके मुझे यही पता चला कि देहरादून जैसी सिटी इस दुनिया में नहीं है. आई थिंक देहरादून इज एन इमोशन एंड हर चीज मैं देहरादून के मिस करती हूँ जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ. देयर इज नथिंग व्हिच आई डू नॉट मिस अबाउट देहरादून.
0: जैसे क्या क्या चीजें हैं जो आप मिस करती हैं देहरादून की?
1: फर्स्ट इज मोमोज. आई लव मोमोज. मतलब एक तो बॉम्बे का खाना इतना खास है, बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो यार हमें चाहिए थोड़ा स्पाइसी और बटर चिकन प्रॉपरली, यू नो, मोमोज की चटनी ये वो सब कुछ. तो आई मिस द फूड, आई मिस द वेदर, आई मिस द पीपल फ्रॉम देहरादून, बिकॉज यहाँ पे वो सिंप्लिसिटी है लोगों के अंदर अभी भी लोग इतने ग्राउंडेड हैं. मतलब इट्स जस्ट आई मिस दैट थिंग अ लॉट फ्रॉम देहरादून.
0: और आपको क्या लगता है एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ मैनेज करना?
1: आई थिंक इट इज डिफिकल्ट. इट इज डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. मतलब वो आपकी वायरिंग पे डिपेंड करता है, हाउ यू बेसिकली परसीव थिंग्स. बट बॉम्बे में सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट है, सब लोग भाग रहे हैं, लाइक पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू जस्ट लूज इट, आप खो देते हो खुद को भी. हाँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ हाउ यू परसीव थिंग्स एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ all these things that you need to keep your personal life separate and your professional life separate, because har cheez aapke kaam ke aas pass revolve nahi karti. Everything doesn't revolve around your work. You have a personal life also which is separate and just enjoy it. I mean, theek hai
2: yaar, kahan ho? I've been trying your number for past 3 days. Tumse gaana nahi ban raha to mana kar do. But we don't have any more time to waste, okay? Please complete this as soon as possible.

0: काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: सो व्हाट इज दैट फीलिंग जब आप वापस आती है मुंबई से या बॉम्बे से काम करके देहरादून आ रही होती हैं, तो कैसा लगता है आपको?
1: मतलब आई थिंक दैट इज वन फीलिंग विच आई लिटरली लिव फॉर. जो मैं ये चीजें जो मैं कर रही हूँ वो मैं इसी फीलिंग के लिए कर रही हूँ, इज दैट कि जब मैं शूट के बाद जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ या मैं अपने बॉम्बे वाले घर या यहाँ पे आ रही होती हूँ, आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग विच इज मतलब एक वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि यार आज कुछ किया है, आज मैंने वो किया है जिससे मैं प्यार करती हूँ. नो लाइक आई लव वॉट आई डू राइट नाउ एंड आई एम गोइंग बैक होम डूइंग दैट. तो दैट वो फीलिंग के लिए I live for that feeling. So I think वही है.
0: और बहुत कम लोग होते हैं जो ना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो वो उसी में रह जाते हैं, यार काश मैं ये बन जाता या काश मैं वो कर लेता.
1: Exactly.
0: लेकिन आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है, रणबीर कपूर, अरमान मलिक, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, जिनको आपने पहले कभी टीवी पे देखा है या सुना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
1: वो एक्सपीरियंस मतलब जब मुझे व्हेन आई गेट दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत मुझे ऐसा ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट नहीं हुई कि यार आज मैं ओह माय गॉड इनके साथ काम कर रही हूँ उनके साथ. बट द एक्सपीरियंस द फीलिंग आपको वो तभी आती है जब आप सेट पे उनके साथ होते हो, देन यू गेट दैट कि यार ओके आई एम एक्चुअली वर्किंग फॉर दीज, इट इज हैपनिंग, आई एम एक्चुअली वर्किंग विद दीज पीपल. बट व्हेन आई वर्क्ड विद एमएस धोनी, आई डिड दिस एड, ओह माय गॉड, आई थिंक ही इज सो स्वीट,
0: Captain Cool,
1: very like humble and grounded, and he's talking to me. He's like, even my wife is also from Dehradun, so I was like, I'm also from Dehradun. And he's just like, तब मुझे ऐसा लगा कि wow यार, like he's such a
0: he's MS Dhoni और
1: yeah
0: और MS Dhoni होके भी इतना काम और
1: exactly
0: humble.
1: exactly.
0: आपने भी ट्रैवलिंग की बात भी करी, आप अपने काम के सिलसिले से ट्रैवल करती हैं, और जब इंडिगो में थी तब भी ट्रैवलिंग होती थी. तो when you work in such a field, तो हाउ डज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज इवॉल्व्स यू एज अ पर्सन?
1: इट डज इवॉल्व यू, एंड आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन थिंग के मुझे ऐसा लगता है कि काम के अलावा आप हम सबको ट्रैवल करना चाहिए. मतलब आप जितना भी कमा रहे हो उससे थोड़ा सा आप अपना 20-30% पैसा अलग करके वी ऑल शुड ट्रैवल. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विच विल इवॉल्व यू इन टू अ डिफरेंट ह्यूमन बींग. सो सर्टन थिंग्स जो मैंने लाइफ में अडेप्ट करी है वो ट्रैवलिंग से ही करी है. आप जिस तरीके के लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, इट्स सो डाइवर्स आउट देयर. सो या इट विल चेंज यू समवेयर.
0: मैंने कहीं पे पढ़ा था आपने एक गाना लिखा भी, आप लिखती भी हैं.
1: हाँ.
0: तो उस गाने की अगर एक दो लाइन अगर आप गा दें बता ही दें मतलब no. की
1: हाँ हाँ मैंने गाने लिखे हैं एक्चुअली. देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज वन ऑफ द रेनाउंड लिरिसिस्ट इन द इंडस्ट्री, तो उनके साथ मैंने काम किया है. बट एक गाना है जिसमें मुझे एक्चुअली एज अ लिरिसिस्ट मेरा नाम आया था, विच इज कॉल्ड किलर हसीना फॉर टी सीरीज, एंड दिस वन वॉज फॉर अर्जुन काननगू एंड तुलसी कुमार. सो मी एंड द अदर पर्सन वायु, हम दोनों ने साथ में ये गाना लिखा था. तो नॉट जस्ट दिस, आई डू राइट स्टोरीज ऑल्सो. आई एम राइट नाउ लर्निंग कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग ऑल्सो. सो बेसिकली आई एम गोन बी वर्किंग ऑन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड कैंपेन्स. तो आई जस्ट वॉन्ट टू एज एन आर्टिस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर
0: क्रिएटिविटी होनी चाहिए.
1: हाँ मतलब और जगह भी मुझे एक्सप्लोर करना है. सो इस वजह से अभी मैं कॉपी राइटिंग में भी घुस रही हूँ. सो बेसिकली आई विल बी अ कॉपी राइटर, सर्टिफाइड कॉपी राइटर नेक्स्ट मंथ. तो मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स खत्म हो रहा है.
0: अच्छा
1: या yeah.

इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ कुछ चुनिंदा घरों में ही होती है। आज के जमाने में हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, मैं ये बन जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं सबसे आगे, फिर चाहे वो दूसरे का नुकसान पहुंचा के क्यों ना मिले। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को शॉर्ट टर्म में खुशी मिल सकती है, लेकिन आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें खुद भुगतने पड़ते हैं।

0: रेडियो
1: किलर हसीना की कोई हुक लाइन या दो लाइंस कुछ भी।
2: किलर हसीना हसीना आ जान ले ले किलर हसीना
1: तो ये डांस और पेपी टाइप का सॉन्ग होगा।
2: इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड नंबर, मतलब ये तो बहुत मजा भी आता एक्चुअली इसको लिखने में, बट प्रॉपर बॉलीवुड नंबर है ये।
1: तो ये लिखने की जो जर्नी है ये भी बहुत पहले से ही है या अभी साथ साथ आप लिखने लगी हैं?
2: ये बहुत पहले से है एक्चुअली, बचपन से है, पर लेकिन अब मैंने इस पे प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया है बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज कि कैमरे के पीछे भी क्या होता है, मतलब मुझे उस पर भी काम करना है। दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू नो लाइक एक एड को, मैंने एड्स वैसे बहुत सारे किए हुए हैं एज एन एक्टर, बट नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट एड्स ऑल्सो।
1: बनता कैसे,
2: बनता कैसे, लिखते कैसे हैं, यू नो प्रॉब्ली आई वॉन्ट टू डायरेक्ट ऑल्सो वन डे एड्स और फिल्म्स व्हाटसोएवर, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इन टू कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग।
1: बहुत ही अच्छी बात है कि सीखने की चाह हर चीज में है।
2: हाँ।
1: किसी एक चीज को आप स्टिक नहीं कर रही है।

रेडियो। वो कहते हैं ना कि बांटने से प्यार बढ़ता है, फिर चाहे हम अपनी खुशियां बांटें, अपना गम बांटें, खाने की चीजें बांटें या कुछ भी चीज शेयर करें, जब हम किसी के साथ कुछ बांटते हैं तो उस इंसान के चेहरे पे एक स्माइल आती है और फिर वो भी आपके साथ चीजें बांटना शुरू करता है। रिश्ते गहरे होते हैं, तो यार जब भी मौका लगे अपनी फीलिंग्स, अपना लंच, अपनी खुशियाँ शेयर करके देखो, अच्छा लगता है।

0: वॉक टॉक
1: मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। बोला भी गया है, मीठा मीठा बोले सबसे, सबसे करे हम प्यार। अगर आप सबसे अच्छे से व्यवहार करोगे तो आप जरूर सबके चहेते बन जाओगे।

जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: कई लोगों को जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपनी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी प्यारी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: ये है वॉक टॉक रेडियो। वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ये है वॉक टॉक रेडियो।
2: अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा वेपन यानी हथियार क्या है, तो हो सकता है आप कहें कि न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर आपके दिमाग में दुनिया को बदलने का विजन है, आपका मन चाहता है कि आप कई बातों में दुनिया को बदल कर रख दे, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। अगर हमें दुनिया बदलनी है, मेंटालिटी बदलनी है, अपने समाज को बदलना है, अपनी सोसाइटी को बदलना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन हर एक तक पहुंच जाए। यानी अगर हम एजुकेटेड हैं, तो हम अपने आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट करके दुनिया को सही दिशा में बदल सकते हैं।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: कभी कभी ना हम दूसरों की बातें दिल पे ले लेते हैं, अरे यार उसने ऐसे कैसे बोल दिया एक्सेट्रा। हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं और यही चीज हमें लाइफ में काफी डिस्ट्रैक्ट करती है। हम अपना सारा काम छोड़कर दूसरों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। सोचो हम खुद के साथ, खुद की लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर जरा गौर करना। हमेशा जो है दूसरों की बातें दिल पर लेने की बजाय एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और अपने टाइम को सही यूटिलाइज करो, क्योंकि वक्त जब एक बार चला जाता ना दोस्त, दोबारा वापस नहीं आता, उसके बाद सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए पछताने से अच्छा है खुद को टाइम दो।
1: वॉक टॉक।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।
2: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्रा, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: रेडियो। कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
1: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें कभी छोटी छोटी परेशानियों या हार से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ही हो रहा है। इसलिए हर वक्त हर हाल में हमें जीतने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। ऐसी और बातों के लिए सुनते रहे फॉक टॉक रेडियो।

0: बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जब ही बोलें, हमेशा नाप तोल कर बोलें। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आया है वो जाएगा, सुबेरे हुई है शाम होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती? लेकिन अगर हम हार्डकोर हो जाते हैं, किसी बात पे अड़ जाते हैं, तो दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। बदलिए और देखिए, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास की सिचुएशन को भी बदलने का मौका देंगे। संघर्ष से डरना, पीछे रह जाना, हमेशा डरते रहना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हिम्मत करिए और फेस करिए अपनी उस प्रॉब्लम को। ऐसा फेस करिए कि प्रॉब्लम भी आपसे डर जाए। और देखिए, जिन चीजों से आपको डर लग रहा था वो कितनी आसानी से दूर हो जाती है। कोशिश तो करके देखिए।
0: वॉक टॉक रेडियो।
2: वॉक टॉक
0: रेडियो।
2: सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके, समझ रहे हैं आप।

0: वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज कमाना क्या है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप किसी बहुत महंगी, किसी लग्जरियस कार का नाम लेंगे और कहेंगे कि इसे कमाना बहुत मुश्किल है। शायद हो सकता है कि आप बहुत बड़े घर का नाम ले और कहेंगे कि उस बंगलों को खरीदना बेहद ही मुश्किल है। या हो सकता है कि आप ये कहें कि चांद पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अगर हम अपनी हकीकत की दुनिया में वापस लौटे, तो शायद आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगा है किसी का विश्वास जीतना, जिसे हम खरीद तक नहीं सकते। तो यदि जीतना है किसी को, तो किसी का भरोसा जीतिए, इंसान को जीतिए, बाकी के काम तो आपके बनते ही चले जाएंगे। ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बातों को सुनने के लिए बने रहिए वॉक टॉक रेडियो पर।
0: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ये है वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

फिर मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने अपने जो उनके आइडियाज़ हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि हम इस सेक्टर में ऐसे करके काम करेंगे, तो उसको ग्रो करवा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो हर किसी का कभी ना कभी सपना रहता है कि वो कुछ बड़ा करे, वो कुछ स्टार्ट करे जिसके वजह से लोग उसको याद रखें, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, और इसी मोटिवेशन के साथ हर कोई कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करता है। लेकिन काम स्टार्ट करना एक अलग है, और उस काम को एक बड़े लेवल पे ले जाना ये एक पूरा ही अलग, मतलब अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक शॉप स्टार्ट कर दी, कुछ भी ऐसा कि जिससे आपको अर्निंग हो रही, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप को आप उस लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल का नहीं, लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल का फायदा हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बहुत सारे लोग जो आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे फायदा ले पा रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, ये इसने ये स्टार्ट किया और इसका ये आइडिया था और ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। तो इस पूरे जो जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ तो अगर मैं, क्योंकि मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने 2019 में स्टार्ट किया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में, क्योंकि मैं पहाड़ों से ही बिलोंग करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में पास आउट होने के बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को दिखा और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिखी, वो उत्तराखंड में ट्रैवल एंड टूरिज्म था, और मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाके कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा कि जिस फील्ड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई काम नहीं कर रहे हैं या स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ट्रैवल या टूरिज्म में, उत्तराखंड का कोई अपना ब्रांड हो, ऐसा ब्रांड हो क्या, अगर कोई भी उत्तराखंड जा रहा है तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज चले, तो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी थी राज्य के लिए, अपने ही होम टाउन के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने 2019 में जनवरी में स्टार्ट किया कंपनी जिसका नाम था फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और जो इसकी थीम थी वो ये थी कि हम सिर्फ एक अकोमोडेशन चेन नहीं होंगे, बट हम एक यूनिक अकोमोडेशन चेन होंगे। हम सिर्फ लोगों को कमरा नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ लोगों को पैकेज नहीं बेचेंगे, बल्कि हम हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा वो एक्सपीरियंस देना रहेगा किसी भी ट्रैवलर को। तो इस थीम के साथ हमने स्टार्ट किया, और 2019 से 21 तक अभी हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ उत्तराखंड में ऑपरेशनल है, 2 अभी विद इन अ मंथ शायद हम लोग कर लेंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये वो था कि हमने मतलब कैसे करके स्टार्ट किया, इस बीच बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो आई होप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको हल्का सा आइडिया आया होगा कि क्या ये पूरी जर्नी होती है, कैसे करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

हाय, मेरा नाम है अंशुल भट्ट और मैं फॉरेस्टी को रिजॉर्ट ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ हूं। और आज आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने बात की थी वो थी क्या स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे ये पूरी जर्नी रहती है। आज आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा क्या कैसे करके मैंने जो फॉरेस्टी को रिजॉर्ट ग्रुप है उसको स्टार्ट किया है और कैसे करके हमारे जो स्टार्टअप ने एक तरीके से रेस पकड़ी है, कैसे करके हमने अपनी ही ग्रोथ देखी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। 2019 में हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्टी को रिजॉर्ट ग्रुप। हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम उत्तराखंड में जितने ट्रैवलर आ रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस दें, क्योंकि हम जितने भी सारे ब्रांड यहाँ पे इंडिया में हैं जो हॉस्पिटैलिटी में टॉप के ब्रांड हैं वो अलग अलग तरीके से रूम सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो हमारा ये था कि हम एक तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहीं ना कहीं से एक यूनिक अकोमोडेशन होगा, क्या वो नॉर्मल कोई लॉज नहीं होगा या नॉर्मल कोई कमरा हम सेल नहीं करेंगे, हम एक एक्सपीरियंस सेल करेंगे। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 2019 में हमने चोपता तुंगनाथ जो एक लोकेशन है वहाँ पे हमने अपनी एक यूनिट खोली और धीरे धीरे करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, नैनीताल, अलग अलग जगह पे हमने यूनिट्स स्टार्ट करी हैं और अभी दो यूनिट हमारी उत्तराखंड के चमोली और टिहरी में हो जाएंगी। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर रहे हैं। बस ये चीज़ को हम मेन वो लेके चल रहे हैं जो हमारा यूएसपी है कि हम एक्सपीरियंसेस ही सेल करें। जो भी आ रहा है वो सिर्फ, क्योंकि जितना भी ट्रैवलर उत्तराखंड में आता है वो कहीं ना कहीं अपने पूरी साल भर की कुछ छुट्टियां बचा के आता है, बहुत जगह से पैसे अरेंज करके आता है, अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ देख के आता है, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, उसके पैसे बहुत ज़्यादा कीमती है। और हमारा जो मेन मोटिव है क्या एज अ सिटीजन ऑफ हिल्स उत्तराखंड, क्या हम उसके जो पैसे का उसका पूरा वैल्यू उसको दें। तो बात करते हैं क्या हमारे स्टार्टअप ने कैसे रेस पकड़ी। तो स्टार्टअप में सबसे जो जरूरी है वो आपके लिए लोग हैं, लोग भी वो लोग जो आपके टीम में हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपके टीम में अलग अलग माइंडसेट के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप स्पीड अप करेगा ग्रोथ को लेके। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे साथ कॉर्पोरेट से हमारे साथ अलग अलग फील्ड के कुछ लोग हमारी टीम में आना स्टार्ट किया। और इससे ये हुआ कि हमें जो फंडिंग चाहिए थी स्टार्टअप के लिए वो फंडिंग हमें इजिली मिलने लगी, क्योंकि टीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और जब कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ आपका आइडिया देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडिया बहुत सारे हैं। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं इस कमरे में भी मतलब हवा में ही इतने सारे आइडिया होंगे, लेकिन किसी भी आइडिया के ऊपर कोई भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई भी इन्वेस्टर है वो आपकी टीम देखता है, आपका मिशन देखता है, आपका विजन देखता है, आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करवा रहे हो उससे और उसको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो हमारे साथ भी जब हमारी लोगों ने टीम देखी और ये देखा कि ये फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं तो लोगों ने धीरे धीरे करके हम पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग आई तो हमें ऑब्वियसली हमने आईटी में इम्प्रूवमेंट करे, हमने अपने टेक्नोलॉजी से लेके ऑपरेशन तक हमने हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे। हमने जो फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लेके आना शुरू किया टीम में और यहाँ से हमारे पूरे स्टार्टअप को एक पेस मिला। जो अभी हम अपने आप को कहते हैं वो हम कहते हैं कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिक अकोमोडेशन चेन है। और जो हमारा मिशन है वो है कि हम इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन बने, क्योंकि लार्जेस्ट अकोमोडेशन चेन बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने आप को जो अपनी हमारी यूएसपी है वो है कि हम लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन होंगे, क्योंकि हम सिर्फ रूम या सिर्फ होटल सेल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवलर को एक एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी स्टार्टअप की ये जर्नी रही है और जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: सुनो सुनो भाई सुनो सुनो।
1: अरे क्या बोल रही थी मैं?
0: यही कि आरजे गौतम आ रहे हैं गपशप जंक्शन पर ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: Hi, I'm Anukriti and aap sun rahe hain mujhe Walk Talk Radio pe. I am by profession a wedding and event planner and meri company ka naam Plan Your Memories hai. हम लोगों की मेमोरीज प्लान करते हैं, चाहे उनकी वेडिंग्स हो गए, बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गए, जितने भी हैप्पी ओकेजन्स होते हैं एक पर्सन की लाइफ में, हम ट्राई करते हैं कि उनकी उन मेमोरीज को अच्छे से प्लान कर पाए. व्हेन आई वाज परसुइंग माय एजुकेशन, सिंस दैट टाइम आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स, देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट अप एज अ you know part time job. I was studying and sat as an earning source. I was working with different companies and as a freelancer. Part of that I used to travel to Mumbai, Jaipur, Udaipur and different parts of India, and I used to plan events with them. That is where I connected the dots ki you know I should get into this industry. And I have the skills because I was always a multitasker and you know I was always confused ki I can do a lot of things nicely. What am I meant for? I had friends jo ek cheez acche se kar sakte the to wo us profession ko choose kar rahe hote the. Main Anukriti har cheez ko acche se kar sakti thi. Aap mujhe koi bhi cheez de do, main research karke use acche se kar sakti thi. So when I started doing events, I connected the dots कि इवेंट इंडस्ट्री में तुम्हें हर चीज की नॉलेज चाहिए होती है. यू शुड बी अ मल्टीटास्कर. एक साथ आपको हजार टीम्स को मैनेज करना होता है, एंड दैट इज वेयर माय स्किल्स फेल इनटू प्लेस एंड दैट यूरेका मोमेंट केम अप एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद माय कंपनी. हाउ डिड आई स्टार्ट ऑफ विद माय कंपनी हियर इन देहरादून? वन डे माय फादर रैंडमली टोल्ड मी दैट लेट्स स्टार्ट एन इवेंट कंपनी, एंड यू नो उधर से मैंने वो चीज पिक करी, एंड देन सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय पार्टनर आल्सो पुश्ड मी टू स्टार्ट द कंपनी बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू एम्पावरिंग वुमेन. आई वाज मायसेल्फ फ्रॉम अ वुमेन्स कॉलेज, सो आई वाज वेरी वोकल अबाउट ऑल द इश्यूज दैट वुमेन हैड टू गो थ्रू. वुमेन हाउ डिड दे वर्क, यू नो हाउ वर दे एक्टिव in different industries, how were they on top of the different industries. So us cheez se inspire hoke fir maine socha that why not, let's start off with the company. And aap manoge nahi, humne bahut chote chote decorations, home decorations, room decorations se start kiya, and aaj hum दुबई लेवल की वेडिंग्स कर रहे हैं. आज हमारा ऑफिस दुबई में भी है, एंड हम लोग इंडिया एंड दुबई दोनों में, देहरादून एंड दुबई टू बी प्रिसाइज, दोनों जगहों पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स मैनेज करते हैं. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स हु मोटिवेटेड एंड पुश्ड मी टू एक्सेल एंड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू गो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन.
0: वॉक टॉक रेडियो.

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे.
1: आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ.
0: ओके, आई हैड अ फेज वेर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. दैट वॉज बिकॉज ऑफ यू नो जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज होती हैं, जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे तुम बहुत यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हो. आई वॉज गोइंग थ्रू दैट बैड फेज ऑब्वियसली. After, you know, 2 years of going through that phase, I realized that, oh, where is that charm that was in me? You know, something is missing. I have stopped talking. I have stopped going out. Why? Then I understood that. And उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई. And then, you know, I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें India में travel करी. You know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that, you know, जो भी outside circumstances थी, जो which were, you know, pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started, you know, getting back on the track, meeting people, doing some things जो मुझे अच्छी लगती थी, doing events, going out to different places and working with different people. And उनसे सीखा मैंने बहुत कुछ. मैंने 12th तक साइंस पढ़ी, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद मैंने इवेंट्स किया. ठीक है, तो आई थिंक आई हैड इनफ बैकअप्स को शन अवे करना. एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू आई एम मेंट टू सी द ऑपरेशंस ऑफ थिंग्स. सो अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, आई टेक्निकली डोंट हैव अ बैकअप प्लान, बट इफ आई हैव टू डू समथिंग आई नो आई कैन डू ऑपरेशंस वेरी वेल. ऑपरेशंस ऑफ एनी कंपनी, ऑफ एनी जॉब, आई कैन डू दैट वेरी वेल बिकॉज मैंने एक मास्टर ऑपरेशंस वाली फील्ड में काम किया हुआ है, जो इवेंट्स है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस देखने होते हैं. तो इफ आई कैन डू दिस आई कैन सी द ऑपरेशंस ऑफ एनी प्लेस एंड एनी बिजनेस.
2: वॉक टॉक रेडियो.

अपने घर परिवार दोस्तों से दूर, कभी रेगिस्तान में तो कभी -50 के तापमान वाले बर्फीले हिमालय में अनगिनत मुश्किलों से जूझते हैं जो अपने देश की आन बान शान के आगे अपना शीश कलंक करते हैं जो। ऐसे वीर योद्धाओं की वीर कहानियाँ सुनिए प्रोग्राम कॉल फॉर ड्यूटी में सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

बाल खोले लेके आए हो मेरा ताजे तरीन हर बीट मारे साथ बेहतरीन मेरे बदन से ज्यादा मेरे सुर हसीन नाम तो तू जानता है नेहा भसीन जैसे

0: कपड़े तो पहन ले।
1: दादा दादी मिल गई से।
2: मतलब ये उन लोगों में से है जी।
3: टचले की तो कुछ परवाह कर।
4: आपको समझ पाकिस्तान कैसा ही होगा।
5: लड़की
4: वगैरह चल।

झीली वो रातों में, गहरी सी अपनी वो यादों में मैं रहा, अनकही सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत थका, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती चुपकों में

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो उस समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। जिसी भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो सक्सेस मिल जाए, और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितने की ज़रूरत है वहाँ पर।
1: आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस सपने देखते रहना, और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो, और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
2: जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
3: Tune in for a better life.

betrayed you. वो वक्त कितना भी मुश्किल हो, दिल में हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहिए। वो वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। Walk Talk Radio.

0: रेडियो।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है, तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, जो कि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए। और ये सोसाइटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी। जो लोग होंगे आपके आसपास, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर लोगे ना, तो यही सोसाइटी आपको ऐसे एग्जांपल देखेगी, क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है, उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको ऐसे एग्जांपल देखेंगे। तो यही है यार, कि किसी के सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है। अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ, और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है, तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं, तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे। उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी, तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी। तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ, जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है, और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
0: Well done.

0: Walk Talk Radio.
1: अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। बट ये सफलता कब आएगी, किस दिन आएगी, किसी को नहीं पता। हम अगर दूसरों को कंपेयर करेंगे कि उसकी सफलता हो चुकी है, मेरे साथ के लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो वो उनका भाग्य और उनकी मेहनत है, उन्होंने उसके लिए क्या किया। कभी कभार उनके बताने में मत आइए मेरे साथ ऐसा चल रहा है। हर आदमी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, सफल दिखाना चाहता है। कंसंट्रेट करिए खुद पे। आपकी सफलता का दिन कोई निश्चित नहीं है, बट अगर आपकी मेहनत में कमी नहीं है और आपका प्रोडक्ट या आपका काम आपसे मिलता हुआ है, तो आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और जिस दिन ये सफलता मिलेगी, उस दिन आप समझेंगे कि ये सारा वक्त, ये सारा समय, ये रोड मुझे चलनी ही थी वहां तक पहुंचने के लिए। यही लाइफ की जर्नी है।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज मेरे दोस्त भी आए हैं आप सभी के साथ मिलने के लिए। जी हाँ, क्योंकि जब गेस्ट होते हैं तो वो दोस्तों जैसा रिश्ता तो हो ही जाता है। तो पॉडकास्ट की सीरीज में वॉक टॉक पर आज के हमारे मेहमान है हौसला फाउंडेशन से मनीष पयाल और शंकर। जी हाँ, कौन है ये, क्या करते हैं, हौसला फाउंडेशन क्या है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं मनीष और शंकर का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का वॉक टॉक रेडियो पे।
1: थैंक यू सो मच किरण फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू वॉक टॉक रेडियो।
0: सो कैसा लग रहा है आज वॉक टॉक में आके?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है आज तो।
0: और सबसे पहले मनीष जी आपसे कि हौसला फाउंडेशन क्या है? हौसला, जैसे कि हम सभी को पता है शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन हौसला फाउंडेशन के लिए इस शब्द के क्या मायने हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इस नाम को क्यों रखा गया?
2: मैम, हौसला फाउंडेशन के लिए जो शब्द है हौसला, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम बात करें जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसको उनको हम एक तरह से एजुकेशन दे के उनका हौसला बढ़ा रहे, ताकि वो बड़े होके कुछ बने, है ना, स्कूल जाए, बड़े होके कुछ बने, मतलब उनका हौसला बढ़ा रहे हम। उन्हीं का नहीं, वहाँ जितनी भी स्लम एरिया है देहरादून में, हमारा पर्पस यही है कि सबका हम हौसला बढ़ाएं, सबकी मदद करें हौसला के थ्रू, और एजुकेशन को एक अच्छी तरह से अच्छे मुकाम पे ले जाएं।
0: ओके, असल काम क्या है, क्या करता है हौसला फाउंडेशन लोगों के लिए, और आगे अभी तक जितनी भी जर्नी आप लोगों की रही है, ये कहाँ से शुरू हुई?
1: Okay, Kiran, so let's get back to history a little bit. I actually come from a background where I'm the only educated person in my entire family.
0: Okay.
1: So I understand the value of education a lot. तो कहते हैं ना कि एक खानदान में अगर एक बच्चा पढ़ ले तो उसके सामने वाली सात पुश्ते अच्छे, मतलब well educated होते हैं। So I understand the value of education and I come from that background. जो background से हमारे बच्चे हैं उस लगे, I come from the same background. But then you will actually see a difference while you and I've always taught our kids ki agar aap padhai karoge na, paisa to koi bhi kama leta hai dekho, but aapko society mein izzat milegi, log aapko puchhenge, and you see me sitting over here, I'm one of those kids if you go back 25 years. So our mission is very simple with Hausla. What we are trying to do is we are trying to bring a change by providing awareness. We're only trying to bring a change and we are making sure कि जितने तक हम पहुंच पाए, जितनों को हम पढ़ा पाए, हम करेंगे. And our mission is actually to provide basic education to the kids, and we will support them financially with all basic needs, and we'll make sure that they step into mainstream education.

बातों से डरे, उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले। मांगी मन्नते भी काफी, जन्नत है जहाँ की तू अमर रहे सदा ही। बातें बाकी सफर में काटे काफी, गम को हम बांटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी। क्यों खुश होता तेरी

औरों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर से जो है पेरेंट मेरे काफी सपोर्टिव भी रहे थे इस मामले में, काफी मतलब फ्रैंक माइंड का हमारा जो फैमिली है पूरा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की कॉलेज जो मैंने किया था अपना, वो मैंने BA MA जो मेरा म्यूजिक में होता है मेरा हल्द्वानी से हुआ था। तो मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोला कि जैसा होता ना पहाड़ में नॉर्मली कि मतलब लड़का जवान होता है 18 साल का कि चलो आर्मी की लाइन पे लग जाओ, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली। बाकी मैं एक एथलीट भी रहा हूँ अच्छा, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया था कि आर्मी में जाओ या फिर कुछ और करो। तो मुझे अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ खास दिक्कत वहाँ पे नहीं आई थी। हाँ, जब इस फील्ड में आया था उसके बाद में तब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इस मामले में।

0: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.
1: वो कहते हैं ना कि if your plan doesn't work, don't worry. God has some other plan for you. तो यार अगर किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो चीज आपको नहीं मिल पा रही हो, तो परेशान मत हो दोस्त. ये सोचो कि भगवान ने इससे भी अच्छा आपके लिए कुछ सोचा है. भगवद गीता में भी ये लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. तो वही करना है, अपनी मेहनत पे और भगवान पे यकीन रखना है.
0: वॉक टॉक रेडियो.

तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रास्तों पर अकेले ही निकल पड़ते हैं और जब हम अपने दोस्तों से साथ की आशा करते हैं तो वो अधिकतर इनकार कर देते हैं। तो इस समय पर आप इस बात को समझ लें कि आपका साथ ऊपर वाला दे रहा है और जो लोग आपका साथ देने से मना कर रहे हैं उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो आपके साथ खड़े हो सके। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी। मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूं और मैं आ आया हूं वॉक टॉक रेडियो में। नॉर्मली जैसे हमने सीखा पहले, कोई भी बंदा म्यूजिक में कभी भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। जिसको अगर ये पता चल गया कि बस मेरा हो गया, मैं तो परफेक्ट हूं, अब उसका फिर वहां से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में फिर हमने सीखा, लेकिन जब हम सीख रहे थे तब कुछ आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने मतलब कि सीखा बिखा नहीं ताल, बट ये था कि उनके गाने अच्छे वो कर गए, क्लिक कर गए। तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये दुख की बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को उतना जल्दी लेते नहीं है, और अगर जिनके गाने अगर क्लिक कर जाए, चाहे उनके लिरिक्स का मीनिंग समझ में आए ना आए, कोई अगर अच्छा गाना भी देता हो तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं करके आपका आपकी वॉइस अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, पर आपके गाने में डांस नहीं है। ये डांस जो शब्द है ये उत्तराखंड के लिए एक दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आज हर गानों में डांस ढूंढते लोग। आज वो सुकून उत्तराखंड का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुकून जो है मरने वाला, थोड़ा लर्निंग इज अर्निंग होती है यहाँ पे। और ये शब्द तो मतलब म्यूजिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने इसका रखता है लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहाँ पे कमाओगे भी नहीं। पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी है कि यहाँ सीखने के बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे। और जहाँ पे मैं अगर सीखने की बात करूँ, अगर आपको म्यूजिक के फील्ड में, अगर किसी भी जो नए आर्टिस्ट जो मुझे अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक के फील्ड में आना है तो आप जो है किसी और को देख के मत आइए कि बस उनके गाने फेमस है, हम स्टूडियो में जाएंगे गाना रिकॉर्ड करेंगे वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपका वो गाना सिर्फ एक बार फेमस होगा, दो बार फेमस होगा। जब आप सीखेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए एक आर्टिस्ट बन जाएंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप स्टूडियो आर्टिस्ट तक ही सीमित रहेंगे।

0: you. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण, और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में आई है, मेरे सामने बैठी हुई है, और इतनी कूल वाली वाइब आ रही है ना मुझे सच्ची में उनसे, मतलब अलग ही अंदाज है। कौन है, लड़का है लड़की है? भी देखो मैं बताती हूँ कि कूल वाइब सिर्फ लड़के नहीं देते हैं, लड़कियां भी बहुत देती है। और इस वक्त जो मेरे साथ बैठी है ना, उनको तो आई थिंक कौन नहीं जानता, पूरा इंडिया जानता है। कैसे जानता है ये अभी सीक्रेट है, जैसे ही नाम बताऊंगी ना आपको भी पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं नीरू पाल का, जो कि रैपर है और देहरादून से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच।
1: कैसे हो आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए।
2: मैं भी,
1: क्योंकि पॉडकास्ट में ना जब हम बात करने बैठते हैं तो बात बहुत जगह से निकलती हुई ऐसी ऐसी जगह निकलती है कि बहुत कुछ ऐसा पता चलता है लोगों के बारे में, हमारे साथ जो भी जुड़ता है उसके बारे में, कि बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज खासकर जो रैपर कम्युनिटी है, जो रैप करते हैं, जो हिप हॉप करते हैं, जो डांस करते हैं, जो आर्टिस्ट है, जो कला के फील्ड से जुड़े हुए, वो आज बहुत कनेक्ट करने वाले हैं आपकी लाइफ से। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि नीरू पाल, जिसे दोस्तों हमने MTV हसल फर्स्ट सीजन में देखा था, आपका जो धाकड़ रूप है ना वो हमने देखा था आपके रैप के थ्रू। एक्चुअली नीरू पाल पर्सनल लाइफ में एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास इंसान है, वो कैसी लाइफ है आपकी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
2: मेरा नाम नीरू पाल है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है मेरे बारे में, और थैंक यू सो मच आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो नीरू पाल बेसिकली मुझे बनने में बहुत टाइम लगा, और मैं सेल्फ मेड बंदी हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या फिर हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे खानदान से आते हैं। मैं एक बहुत छोटी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे जो भी मैंने किया है अपने दम पे किया है, और यही शायद मुझे नीरू पाल बनाता है। यही चीज की जो मेरा सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड हूँ मैं, और जो मेरा ये नेचर है, मेरा बिहेवियर है, यही मुझे नीरू पाल बनाता है, जो कि सबसे हटके है।
1: हटके तो आप हो, नो डाउट।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। आपने साइकोसोमेटिक वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। साइकोसोमेटिक दो शब्दों को मिलाकर बना है, साइको और सोमा। साइको शब्द माइंड को रिप्रेजेंट करता है और सोमा शब्द ग्रीक लैंग्वेज में बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि जो भी काम हम बॉडी पे करते हैं उसके रिजल्ट माइंड पे आ जाते हैं और जो काम हम माइंड पे करते हैं उसके रिजल्ट्स बॉडी पे आ जाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर आप अपने मन में आंख बंद करके सिर्फ नींबू के बारे में ख्याल करें तो आप देखेंगे आपके मुंह पे पानी आ गया। Now it is very strange thing, physically वहाँ पर कुछ भी present नहीं है, लेकिन सिर्फ नींबू के बारे में सोचते ही आपकी body reaction कर रही है। ठीक ऐसे ही अगर body के साथ कुछ किया जाता है तो उसका reaction सीधे सीधे mind पे आ जाता है। इस तरह के कुछ experiments किए गए कि जब आप सो रहे होते हैं, एक इंसान बहुत गहरी नींद में है और आप अगर एक बर्फ का टुकड़ा धीरे से उसके तलवे पर अगर लगाएंगे तो वो ये सपना देखना शुरू कर देगा कि वो बर्फ के अंदर किसी बर्फ के पहाड़ पे नंगे पैर चढ़ा जा रहा है और उसको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप उसके पैर के तलवे के पास कोई माचिस की तिल्ली लगा देंगे, यानी थोड़ा सा फायर आप वहां पर तपिश देंगे उसको आग की, तो आप देखेंगे कि उसको लगेगा कि मेरे को कोई नरक की आग में जला रहा है। इट हैपेंस मेनी टाइम्स कि आपको बॉडी के साथ किया हुआ काम सीधे आपके माइंड पे रिएक्ट करता है, जिस तरह से माइंड पे किया हुआ काम आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी बॉडी को पीक पोजीशन में रखते हैं तो आपका माइंड भी पीक पोजीशन में काम करता है। शायद इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन में हो तो उसको जिम जरूर जाना चाहिए, उसको फिजिकल एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए अगर वो कर सकता हो तो, नहीं तो वो सिर्फ मॉर्निंग में घूमने ही चला जाए, मॉर्निंग वॉक पे चला जाए या हल्की फुल्की योगा की एक्सरसाइजेस करे। लेकिन जो कुछ भी हम शरीर के साथ करते हैं उसका रिजल्ट हमारे माइंड पे आने ही वाला है। इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बहुत ही यूजफुल बना सकते हैं। मतलब आपके हाथ में एक ऐसा कंट्रोल आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मैं अपने माइंड को कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। आपने जब भी किसी डिप्रेस आदमी को देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसके कंधे झुके हुए होते हैं, वो धीमे धीमे चल रहा होता है, वो नीचे की तरफ देख रहा होता है और उसकी ब्रीदिंग उथली होती है, यानी ही इज हैविंग शैलो ब्रीदिंग। अगर आप इसको अपोजिट कर दें, यानी कि अगर आप इस बॉडी की जो लैंग्वेज इसको चेंज करने की कोशिश करें, यानी अगर आप अपने कंधे को खींच के रखें, आप बिल्कुल सीधे खड़े हों, यानी आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी जो ब्रीदिंग है वो चेस्ट में डीप जानी चाहिए, यानी आपको बहुत डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए और आपको ऊपर की तरफ देखना चाहिए, तो ये एक ऐसी फिजियोलॉजी आपकी हो जाएगी, इतनी रिसोर्सफुल हो जाएगी कि आपको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देगी। आप देखिए, अगर हम जब भी किसी ऐसे जवान को देखते हैं जो सेना में है तो अक्सर आप देखोगे कि वो लोग, उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और उनकी चेस्ट आगे को निकली हुई होती है। रीजन क्या है? आप उनके कंधे कभी भी झुके हुए नहीं पाएंगे क्योंकि उनके साथ इस चीज की इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो उनकी डेली लाइफ के अंदर हैबिट में आ जाता है। तो डेफिनेटली हम कभी भी ये चाह नहीं सकते, ये सोच भी नहीं सकते कि हमारी सेना के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे जाकर, वो कभी किसी डिप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें या उस तरह की माइंड की स्टेट के अंदर रहें। लेकिन हम लोग अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं या हमारे जानने वालों के साथ। अगर कोई भी आपको ऐसा इंसान दिखता है जो कि डिप्रेशन से जूझ रहा है तो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके वो अपने इंटरनल स्टेट्स को चेंज कर सकता है बहुत आसानी से। एक रिसर्च करी गई जिसके अंदर ये कहा गया कि आप अपनी गर्दन को झुका के रखें और कुछ निगेटिव इमेजिनेशंस करें। लोगों ने बहुत आसानी से कर ली। उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी चिन को अप रखें और ऊपर की तरफ देखें और उसके बाद कुछ निगेटिव सोच कर देखें। आपको जानकर हैरानी होगी कि 65% ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू डू इट, यानी वो कर ही नहीं पाए। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि आप अपने कंधों को ऊपर रखें, अपनी चिन को अप रखें और उसके बाद आप कुछ निगेटिव सोच कर देखें। आप नहीं सोच पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी बॉडी और माइंड में इतना गहरा कनेक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक बुक पढ़ रहा था, नॉर्मन कुजिन्स की किताब थी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। इस बुक में उन्होंने बताया है कि उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया कि ये आसानी से ठीक नहीं हो सकते। उनके ठीक होने के चांस मात्र 1 in 500 थे, तो बहुत मुश्किल था उनका बचना। लेकिन उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ में। उन्होंने ऐसी फिल्में देखनी शुरू कर दी, ऐसे किताबें पढ़नी शुरू कर दी, ऐसे लोगों के साथ रहने लगे, ऐसे प्रोग्राम्स देखते थे वो जिनसे उनको बहुत ज्यादा हंसी आती थी। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखिए, हंसने की वजह से धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज में सुधार आना शुरू हो गया और बॉडी लैंग्वेज में चेंज आने की वजह से उनके इंटरनल माइंड की स्टेट्स भी चेंज होनी शुरू हो गई। कुछ ही महीनों के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर्स भी उनको देखकर बुरी तरह से हैरान रह गए। नॉर्मन कुजिन्स बोलते हैं कि माइंड और बॉडी की जो रीजेनरेशन की पावर है उसको हमें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। इट कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको आज दी है, मैं चाहूंगा कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और किसी भी परेशानी से डरे नहीं। हर चीज का हल होता है और कई बार वो इतना आसान होता है कि हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता तो हम उसे देख नहीं पाते। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं वॉक टॉक रेडियो पर, ताकि हम आपको इस तरह की बातें बता सकें जो आपको डेली लाइफ में अपनी आंखों के सामने रहने के बाद भी दिखाई नहीं देती। बातें जारी रहेंगी, मैं आपको ऐसी ही बातें बताता रहूंगा जिससे आपके ज्ञान का वर्धन हो और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। मैं हूँ गिरेंद्र भारती, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: लगी तो नहीं? अरे
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

Jockin' and Pow. जिस खेल से उन्हें प्यार था उन्होंने शादी भी उसी से की, मतलब खेल से नहीं की, लेकिन जो उस खेल को पसंद करती थी, जो उस खेल को खेलती थी, शादी भी उन्हीं से की। फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवीवी लक्ष्मी, उन्होंने शादी की पीवीवी लक्ष्मी से, वही उनकी गर्लफ्रेंड थी, वही उनकी वाइफ बनी। हम बात कर रहे हैं पुलेलाल गोपीचंद की। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मैं हूं मुस्कान और ये है शो अनसंग चैंपियंस का। आखिर ऐसे बहुत सारे चैंपियन हैं जिन्होंने लाइफ में ना जाने क्या क्या हासिल किया है, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपको हर रोज कुछ नया सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और इसी के साथ आज हम बात कर रहे थे पुलेला गोपीचंद की। उनकी एक बेटी है, उनका एक बेटा है, बेटी गायत्री, जो भी खेलों में ही आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा जब हमने स्टूडेंट्स की बात की तब हमने आपको दो नाम तो बहुत अच्छे से बताए, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, लेकिन उनके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम पर बहुत जाने माने हैं, जैसे कि ज्वाला गुट्टा, पी कश्यप एंड श्रीकांत कदम्बी, तरुण कोना। ये ऐसे गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी के प्लेयर हैं जिन्होंने भारत में बहुत नाम रोशन किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। आखिर बैडमिंटन एक टाइम पर ऐसा खेल था जहां पर ना ग्लैमर था ना ही पैसा था। अगर सिर्फ एक प्लेयर थे तो वो थे प्रकाश पादुकोणे, जिन्होंने बैडमिंटन को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। और हम सबको एक टाइम पर ऐसा लगा बस भारत खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये सब संभव हुआ इन खिलाड़ियों की वजह से। अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आखिर पी लक्ष्मी कौन थी, पर आपको पता है जब वो बैडमिंटन खेलती थी उस एरा में देयर वाज नो सपोर्ट सिस्टम और बिग मनी, पैशन ही सब कुछ हुआ करता था एक खेल के लिए। पी लक्ष्मी गोपीचंद इज द फर्स्ट वुमेन ओलंपियन। उन्होंने 1996 में सिंगल्स बैडमिंटन खेला था फर्स्ट, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और आपको पता है उनके कोच कौन थे? उन्हीं के फादर कृष्ण राव वॉज अ कोच व्हेन शी वॉन द जूनियर नेशनल ट्रिपल क्राउन बिफोर मूविंग फ्रॉम विजयवाड़ा टू हैदराबाद इन 1993। और उन्होंने ज्वाइन किया द्रोणाचार्य SM RF एट फतेह मैदान इंदौर स्टेडियम। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बताया था कि आरिफ ही पुलेला गोपीचंद के फर्स्ट कोच थे, शायद ये दोनों यहीं पर मिले होंगे, है ना? यही सोच रहे ना? हाँ, हो सकता है। इनके बच्चों की बात करें तो गायत्री और विष्णु, दोनों के नाम कितने ब्यूटीफुल है ना, भगवान विष्णु और भगवान गायत्री पर रखे गए हैं। इस एकेडमी में ये दोनों बिल्कुल एक प्लेयर की तरह और एक ट्रेनी की तरह ही खेलते हैं। और जब पुलेला गोपीचंद से पूछा गया कि आखिर उनके बच्चों ने बैडमिंटन को कैसे चुना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया था, बस वो ये बचपन से हमेशा देखते आए हैं, अपनी मदर को, अपने फादर को उन्होंने हमेशा बैडमिंटन खेलते हुए देखा है और उन्होंने खुद से इस गेम को चुना। आपको पता है वो दोनों इसी एकेडमी में है, यानी कि पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में। उन्होंने बताया इस एकेडमी में टोटल 50 बच्चे हैं और उन्हें हर बच्चे में अपना एक ट्रेनी नजर आता है और हर ट्रेनी में अपना बच्चा नजर आता है। सीनियर टीम के नेशनल कोच होने के नाते मैं जूनियर टीम के साथ बहुत ज्यादा नहीं रहता हूं, पुलेला गोपीचंद ने ये कहा था। लेकिन गायत्री और विष्णु अभी जूनियर टीम में खेलते हैं और मैं हमेशा से ऐसे प्रे करता हूं कि वो दोनों इस लाइफ में इस गेम के साथ इंसाफ करें और दोनों बहुत आगे तक जाएं। और आई एम प्रीटी श्योर कि जिसके फादर ने इतनी मेहनत की हो, अपना सपना पूरा ना होने पर दूसरों में उस सपने को देखा हो, उनके बच्चे भी यही चीजें सीखकर आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। आप भी अपने बच्चों को यही सिखाइए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हर चीज के साथ इंसाफ करना बहुत जरूरी है। मैंने एक कहावत सुनी थी कि हर काम को ऐसे करना चाहिए कि वो काम भी कहे कि वाह किसने किया था इस काम को, जैसे अभी मैं कर रही हूं। आपको इस कहानी को सुनाने के लिए मैंने पहले बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी और मैंने सोचा जब मैंने इतनी मेहनत की ही है तो क्यों ना आप सबको इसके बारे में बताऊं। चैंपियंस की कहानी जानना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब मैं हर रोज आपको एक चैंपियन की कहानी सुनाने वाली हूं, सिर्फ यहीं पर रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मैं मुस्कान अनसंग चैंपियन में आपके लिए कुछ नया लेकर जल्द ही हाजिर यहीं पर रहूंगी, लेकिन अभी के लिए बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि हर बात, हर चीज, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं, बस कोशिश कीजिए उनसे सीखने की।
और उन सारी चीजों में से बस पॉजिटिव चीजें निकाल लीजिए और नेगेटिव को वहीं छोड़ दीजिए। अभी के लिए बाय बाय।

इंसान को पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी अप्रोच बनाती है। किसी भी चीज को किस तरीके से बोलेगा ये डिपेंड करता है ना इस पर। वही वाली बात की ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, मेरा नाम है समर ऑन वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसा शो जहां हम कोशिश करते हैं कि दुनिया जहान से थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी समेट के लाएं और आपके सामने रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा साथ निभाएं पॉजिटिव रहने में, स्माइल करने में, यही तो चाहिए हमें। अप्रोच, किस चीज को किस तरीके से लिया जाता है। जैसा कि एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया कि ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, ये अप्रोच पर डिपेंड करता है ना, ये अपना नजरिया होता है जिसको हम नजरिया बोलते हैं। इन दो नजरियों की बात हमने हमेशा की है बचपन से लेकर के आज तक, स्कूल, कॉलेज, न्यूज़पेपर, इनफैक्ट आजकल न्यूज आर्टिकल्स, तमाम जगहों पर इनका जिक्र होता है। कई एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। इस केस में या इस एग्जांपल में एक तीसरी अप्रोच भी तो हो सकती है जिसके बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की, और वो अप्रोच है ये कि फर्क क्या पड़ता है ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं उसे पीऊंगा ना। वही वाली बात, मैं क्यों गुठलियां गिनूं, मुझे आम खाने हैं। एक ये भी अप्रोच हो सकती है काम से, मतलब मैं जिस रास्ते जा रहा हूं वहां की सड़क कितने फिट की है वो मुझे नहीं जानना, क्या मेरी गाड़ी जितनी चौड़ी है उस सड़क पर चल सकती है, इतनी जानकारी मेरे लिए काफी है। इसको कुछ लोग कैजुअल अप्रोच या कैजुअल एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, बट मेरे लिए ये सबसे अच्छा तरीका है काम से काम। इसका एक बेनिफिट होता है कि आप बहुत ज्यादा उलझनों में नहीं फंसते हो, आपका क्लियर है विजन, आपको क्या करना है। प्यास लगेगी आधा ग्लास पानी पी लूंगा, प्यास नहीं लगेगी आधा ग्लास पानी रखा हुआ है, आधा भरा है आधा खाली है, इस बात पर लड़ाई लड़ने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, उतने में कुछ प्रोडक्टिव कर लेंगे हम। शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे यकीनन जो कि ज्यादा बहस नहीं करते हैं, उनको लगता है कि अब बहस शुरू होने वाली है तो वो तुरंत ही कट ऑफ कर लेते हैं, उससे साइड में निकल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। मेरे ऑफिस में ऐसा एक पर्सन है, राम उनका नाम है, नाम भी तो देखो कितना प्यारा है। आमतौर पर हर एक ऑफिस का यही रिवाज होता है कि आप जब बैठोगे बातें करोगे चाय पर सुट्टे पर थोड़े बहुत डिस्कशन हो जाते हैं जमाने के इधर उधर के। किसी के कैबिन में जाकर के अगर आप बैठते हैं तो कुछ देर के लिए वो अपना काम छोड़ देगा और आपकी बातचीत होने लगेगी। राम के कैबिन में जब भी कोई जाता है तीन या चार लोग जाएंगे बैठेंगे, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक मिनट घड़ी लगा के एक मिनट एंटरटेन करेगा और उसके बाद में अपने काम में लग जाएगा। आप बैठे हैं बैठे रहिए, बात करते रहिए, आपकी बात का जवाब दे देगा जरूरी है तो, नहीं तो वो अपने काम से काम, एंड दैट्स इट। मुझे इस इंसान का एटीट्यूड इतना पसंद है यार कि उसको पता है कि उसके पास में 500 काम है करने को, वो बैठ करके ये लेजर टाइम के नाम पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फर्क होता है लेजर टाइम और प्रोडक्टिविटी को कम करने में, जरूरी वो भी है लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। हर चीज की मात्रा का ध्यान रखें, वो जो मात्रा है वो हमको नहीं पता चलती कई एक बार। अप्रोच की बात हो रही थी, अप्रोच से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। बाइबल की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। एक गांव में गोलियत नाम का एक राक्षस था। उस पूरे गांव में उसका खौफ ऐसा कि शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हर दिन वो उठा करके किसी ना किसी को ले जा रहा है और उससे पूरा गांव परेशान है। कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही चला आ रहा है। लंबे टाइम तक यही सब चलता रहा क्योंकि उस राक्षस से बचने का तरीका था ही नहीं किसी के पास में। वो इतना शक्तिशाली था, इतना विशालकाय था, उसके आगे कोई टिकता ही नहीं था। वो जब भी आता तो लोग भागने लगते उससे बचने के लिए। और फिर एक दिन डेविड नाम का एक भेड़ चराने वाला लड़का उसी गांव में आया। गांव वालों ने कहा डेविड से कि बेटा एक टाइम के बाद ना घर से बाहर मत निकलना क्योंकि यहां पर सेफ नहीं है, वो राक्षस है, वो खा लेता है। तो डेविड ने पूछा कि आप लोग इतना डरते क्यों इस राक्षस से। लोगों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि आप कितनी ही कोशिश कर लो उसको मार नहीं सकते, आप विशाल का है, मेरे शरीर के साइज का तो उसका सिर्फ और सिर्फ हाथ होगा। डेविड ने कहा सही कह रहे हो आप, वो राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है कि बड़ा होने की वजह से हम उसको मार नहीं सकते, बल्कि हकीकत तो यह है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया हुआ निशाना चूक ही नहीं सकता। आज अगर वो छोटा होता आप उस पर निशाना लगाते चूकने का चांस था। आपको पता है डेविड ने उस राक्षस को किससे मारा, गुलेल से। राक्षस वही था, लोग भी वही थे, सिर्फ और सिर्फ डेविड की अप्रोच अलग थी, सोच अलग थी, नजरिया। कितनी बड़ी चीज होती है ये नजरिया जो है, ये इंसान की पर्सनैलिटी में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
जिस तरह से जब हम काला चश्मा पहन लेते हैं तो हमें हर तरफ काला काला दिखता है, लाल रंग का चश्मा पहन लेते हैं लाल लाल दिखता है, ठीक वैसे ही हमारा जो नजरिया है ये हमारे दिमाग पर लगा हुआ चश्मा है। हमें कैसा दिखेगा ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। हम अगर जो नेगेटिव सोचेंगे तो हर तरफ निराशा, दुख, सेटिस्फेक्शन किसी के अंदर नहीं दिखाई देगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें आसपास लोग खुश दिखाई देंगे, सब सेटिस्फाइड हैं। कभी ऐसा नोटिस किया है आपने कि आपके साथ में ज्यादा बुरी चीजें तभी होती हैं जबकि आप थोड़ा सा मेंटली ऐसे सैड होते हो? आपने एक बार सोच लिया यार सब कुछ ठीक नहीं हो रहा यार, फिर ज्यादा बुरी चीजें होती हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा बुरी चीजें तब हो रही है, बस मुद्दा यह है कि तब छोटी सी ही गलत चीज को आप बहुत बड़े तरीके से ले लेते हो, आप बहुत बड़ा बना देते हो। तो अभी हम पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ में इस दुनिया को देखें या फिर नेगेटिव अप्रोच के साथ में। अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हर इंसान हमें अच्छा लगेगा, हालांकि हर एक इंसान अच्छा है नहीं इस दुनिया में, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई एक खूबी तो हम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन वहीं अगर जो नेगेटिव चश्मा पहना हुआ है तो हम बुराइयां ढूंढते रहेंगे लोगों में, इसका ये गंदा, इसका ये गलत, इसका वो गलत। तो अपने आप को बदलने से पहले अपने इस चश्मे को बदलते हैं। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, एक ऐसा पॉडकास्ट शो जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिल सके, और अगर जो थोड़ी सी भी होप मिली है ना तो बाकी का काम आपको करना है, इस होप को थोड़ा सा और बढ़ाना है, स्प्रेड करना है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, स्टे ट्यून्ड, अगले एपिसोड में मिलते हैं।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।
1: Thank you.

0: हाँ मुड़ जा, गायब हो जा, गायब हो जा।
1: You are listening to Startup Strategies with Ajit Nigam.
2: नमस्कार, रेडियो वॉक टॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अजीत निगम है और मैं यहाँ पे आपके साथ बिजनेस की बातें करने आया हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करने आया हूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि अपना बिजनेस कैसे करें, क्या करें, बहुत सी गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ ना हो इसलिए हम क्या स्टेप्स लें। तो इस बात को मैंने 5-6 पार्ट्स में बांटा है और मैं आपसे अबाउट 7-8 पार्ट्स में बात करूंगा, एक एक पहलू को लेते हुए चलेंगे। पहला पहलू है, हम अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को इंटरनली देखें। जब तक हम बिजनेस जरूर करना चाहते हैं लेकिन जब इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, बस हम कुछ भी कर लेते हैं। हम बात करते हैं एक अपॉर्चुनिटी की, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है? कि एक, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इसीलिए अपॉर्चुनिटी है। आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं अपने आप की तरफ को झांकना, अपना एक तरह से आप आत्मनिरीक्षण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हमें आसपास की अपनी दुनिया को देखना होता है किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। अगर वो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो वो मेरे साथ मैप करती है कि नहीं करती है। जब तक हमने इस बात को नहीं देखा तब तक वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। और थर्ड एलिमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है हमारे में स्ट्रेंथ आ गई, हम एक आसपास एक एनवायरमेंट देख रहे हैं जहां पे हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एक्ट कर रहे हैं उसके लिए? तो तीन कॉम्पोनेंट हुए। एक पहला कॉम्पोनेंट हुआ एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं कि आसपास क्या है, ये दोनों चीजें देख लें फिर हम एक्ट करना शुरू करते हैं। तो जो हम इंटरनल पार्ट की हम बात करते हैं उसको बिजनेस के लैंग्वेज में हम उसको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं। फिर क्या हमारे में वो मोटिवेशन है जिसको हम एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन कहते हैं, और हमारा बिहेवियर क्या है। ये तीन एलिमेंट मिलके हमारी सिर्फ थिंकिंग का सेट बनाते हैं। और उसके बाद और चीजें होती हैं, जैसे इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है, इंडस्ट्री की स्टेटस, की छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों का क्लस्टर है, क्या वहां पे गैप है, क्या आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस होते रहे हैं तो उन मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन क्या है, बिना कॉम्पिटिशन के आप बिजनेस में जाओगे तो परेशानी तो होगी होगी। और बिना वैल्यू जानेंगे, वैल्यू किसके लिए, वैल्यू उस कस्टमर के लिए। जब वो हम वैल्यू समझ लेंगे तो हम उस पर एक्ट कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को, यानी अपने आप को देख के, इंडस्ट्री की कंडीशंस के देख के हम एक्ट करते हैं, तभी हम उसको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, सेम कंडीशंस दूसरे के लिए शायद ना हो। इसीलिए अपने आप के अंदर झांकना, उसके बाद आसपास के अपने एनवायरमेंट से मैप करना और फिर एक्शन लेना, उसको हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जब हम बात करते हैं अपने माइंडसेट की, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, जिसको हम मैनेजमेंट की भाषा में और स्टार्टअप्स की भाषा में हम अचीवमेंट कहते हैं। क्या आप उस अचीवमेंट के लिए आप हद से ज्यादा जाने के लिए तैयार हो? आपका दिमाग, आपका दिल उस अचीवमेंट के लिए तरफ आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज स्पेशली बिजनेसमैन के लिए आती है कि इंडिविजुअलिज्म। वैसे तो कहा जाता है कि इंडिविजुअलिज्म गलत बात है, लेकिन हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि आप वो इंसान हैं, सारा डिसीशन, सारा दारमदार आपके ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते इस इंसान ने काम नहीं किया इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं, द बक स्टॉप्स एट यू एंड thereby यू नीड टू टेक दोस डिसीशंस। दैट इज व्हाई इंडिविजुअलिज्म बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन कलेक्टिविज्म। Collectivism essentially talks about a scenario in which we take the team together. Here, you're the leader, not the boss. There is a distinction between leadership and being a boss. अगर आप अपने टीम को साथ में आगे लेके बढ़ सकते हो और एक डायरेक्शन दे सकते हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग आपने देखा अपने आसपास, उनको कंट्रोल चाहिए होता है। ये कंट्रोल दो तरह से हो सकता है, कोई बाहर से आपको कंट्रोल करता है या कंट्रोल आपके अंदर होता है। तो जब एक एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं उस इंसान की जिसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत जरूरी है। जब तक अंदर नहीं देखे जाएंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको एक मेंटल लेवल पे अपनी गोल सेटिंग करनी होती है। कोई और आपके लिए गोल नहीं सेट करेगा, बिजनेस आपका है। आप एनवायरमेंट देख रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो। बहुत सारे रिकमेंडेशन आपके पास आएंगे, लेकिन डिसीशन कौन लेगा? कोई और नहीं, सिर्फ आप। इसलिए कई बार उल्टी दिशा में जाना, दुनिया आपको कुछ और कह रही है लेकिन अब आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप आगे सोच सकते हो। इसलिए एज एन एंटरप्रेन्योर, इंडिविजुअलिज्म एंड लोकस ऑफ कंट्रोल बिकम क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। वंस दीस आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, देयर आर थिंग्स थ्रू व्हिच यू हैव टू डू लॉट ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग। ये हम बात कर रहे हैं इंटरनल चीजों की, जिसमें हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल रहे, इंडिविजुअल रहे। और क्या बिजनेस बिना ऑप्टिमिज्म के हो सकता है? बहुत परेशानी आएंगी मेरे दोस्त, चैलेंजेस आएंगे, हमें आगे बढ़ना है और हम आगे तभी बढ़ सकते हैं। तो यही सब चीजें हम बात करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन कैसे होता है, वो हम कुछ देर बाद में आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, अभी आपका मुझे इंतजार रहेगा ब्रेक के उस पार।
3: वॉक टॉक, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्रा, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन बॉक टॉक रेडियो शो। मैं हर्षित मलिक फिर आपके साथ अपने प्रोग्राम आउटलुक मैटर्स पे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी दो नए टॉपिक्स के ऊपर। एक हमने बात करी आपका अपना एक्स फैक्टर जो आप सब में छुपा होता है, और दूसरा हमने बात करी थी इससे पहले वाले शो में कि किस तरीके से अगर हम लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो किस कैसे एक अच्छी कंपनी हमारी ग्रोथ को डिटरमाइन करती है। तो अब हम बात करते हैं अपने दुखों की। आप दुख क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग अपने प्रेजेंट में नहीं रहते। तो अब हम यहां से बात करेंगे कि कैसे प्रेजेंट में ना रहना हमारे दुखों का कारण बनता है, और प्रेजेंट में क्यों रहना चाहिए। हमारी सबकी जो जिंदगियां हो गई है ना, वो एक रेस बन गई है। सुबह उठने से लेकर मॉर्निंग वॉक से लेकर जॉब पे पहुंचने तक लेकर हर चीज एक रेस के तहत भागती है। अपने लिए समय नहीं दिखता, क्योंकि एक प्लान होता है जिस प्लान पे हम सब लोग भाग रहे होते हैं। प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्स होते हैं। चलो, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। हमारी ना फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रेंज होते हैं। फ्यूचर में हम लोग वो हर चीज करना चाहते हैं जो हमारे को एक अलादीन का चिराग करके दे सकता था। पुराने जमाने में कहानी में सुना था ना, अलादीन का चिराग, चिराग को घिसो, अलादीन का चिराग, अलादीन बाहर निकलेंगे और बुझेंगे, और मेरे शहंशाह मांगिए, आप क्या मांगते हैं मैं पूरा करूंगा। आज वो अलादीन का चिराग ना हम सबका दिमाग बन गया है, क्योंकि दिमाग है जो सब बनाता है, क्रिएट करता है, पूरा भी कर देता है, और हम उस पर ट्रेवल करके भी आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ना। चलिए पास्ट की भी बात कर लेते हैं। हम सब लोग पुराने में क्या हुआ है, पुराने में क्या बीता है, क्या लाइफ ने हमें दुख दिया है, झटका दिया है, हम लोगों की ना जिंदगी उसमें अटक के रह जाती है। लाइफ जीना मानती है, गिल्ट नहीं मानती, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं मानती, विजन मानती है। जैसे कि किसी की लाइफ में पास्ट में कोई जॉब चली गई, या उसने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करी, उसमें उसको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, या किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ किया बट उसकी शादी कहीं और हो गई। प्यार, मोहब्बत, इश्क, यस यस, मैं मानता हूं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ हम उसके लिए सरेंडर कर देते। कुछ लोग तो सुसाइड भी कर देते हैं, कुछ लोग हाथ काट देते हैं, देखा होगा ना मूवीज में, बट रियल लाइफ में भी भाई उतना ही होता है। मैं तो देखता रहता हूँ ना, सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्योंकि जिंदगियां अटक जाती हैं एक्सपेक्टेशन से। पास्ट की गलतियां या पास्ट में हुए नुकसान को, मेरे परिवार में कोई मर गया, उसके ऊपर घर डिपेंड था, वो हमारे लिए इतना कुछ करता था, मैं उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही, आ नहीं सकता, इन्होंने हमारे घर को संजो के रखा हुआ था, हो गया। आपके घर में तो क्या, हर किसी के घर में यही सब होता है, लाइफ चलती रहती है, बट उसको चिपक के बैठ नहीं जाते हैं, डिप्रेशन का माहौल नहीं बना देते, हमारे को इन सब चीजों से बाहर आना होता है। कड़ियां रोकती हैं पुराने फियर्स, पुराने फेलियर्स, यार पास्ट में ऐसा होता, दोबारा ऐसा हो जाएगा ना। व्हाट हैपेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, माइंड जो है ना वो हमेशा खेल रहा होता है पास्ट में और फ्यूचर में। गौर करो आप सब लोग अभी भी मेरी बात सुनते हुए, क्योंकि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो आपका ध्यान है, जैसे इससे ध्यान हटेगा ना, तो जब आप अपने नॉर्मल पैटर्न में आओगे तो आपको या तो पास्ट का कुछ याद आएगा या फ्यूचर में क्या होने वाला है, बस ये एल्गोरिथम चलता रहता है दिमाग में। तो दिमाग एक मशीन बन जाता है क्रिएशन की, पहले वो पुराने की पकौड़ियां बनाता है, फिर आगे के कबाब बनाता है, खा तो हम पाते नहीं क्योंकि बनता ही रहता सब कुछ चीजें। हम लोग खाएंगे कब, वो बन भी जाते हैं उड़ भी जाते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है आज का समय, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बट हम हमेशा आगे की फ्यूचर की चीजों को ही सोचते रहते हैं। फ्यूचर में ये गाड़ी ले लेंगे, ऐसा हो जाए, वो वहाँ पे वो करेगा तो मेरी ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी, वो बॉस ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो मेरा सब कुछ गलत हो जाएगा, वो भगवान करे मेरी लॉटरी लग जाएगी या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो पीछे ऐसा, बस इन्हीं सब में दुनिया अटकती है। यू हैव टू गो बियॉन्ड टू इट, टू लिव समथिंग, टू ड्रीम समथिंग। Now, when you start dreaming that in your day-to-day life, तो life ना बहुत irregular हो जाती है, imbalance हो जाती है। Stay back, एक deep सांस लीजिए, खुद को रोकिए। उस deep सांस को लेते हो आपको एहसास होगा कि आप exist करते हो। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप फ्यूचर को और पास्ट को साइड में रख दो तो जो बचेगा वो आप होगे, और उससे तो आपकी मुलाकात ही नहीं होती है, क्योंकि हम तो इल्यूजन बातें जो दिमाग में इमेजेस बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं, थॉट्स आते हैं, उन्हीं को सच मान लेते हैं और वो हमारा और पीछा करते हैं, या तो हम उनसे दूर भागते हैं, वो हमारा और पीछा करते हैं। ये हमें छोड़ते नहीं, हमें एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एक बार ना सच का सामना कर लो, हाँ मैं मुसीबत में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, दिक्कत है, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है जब होगा तब की तब देख लेंगे, कर लेंगे, हर दिन मरने से अच्छा है एक बार मर लो। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लक्ष्मी अग्रवाल जी जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था हमारे देश में, बहुत ही घिनौना कार्य हुआ था, और ऐसी बहुत सारी लेडीजें भी हुई ये अटैक हुआ था, तो लक्ष्मी अग्रवाल ने उस इंसिडेंट से अपने आप को रोका नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ को आगे खींचने को सोचा, उन्होंने एक मुद्दा लिया लाइफ में कि मैं इसके लिए फाइट करती हूँ, कोर्ट तक गई, उन्होंने एसिड की बिक्री को रखवाया, उन्होंने औरतों की इस दर्दनाक पीड़ा को दुनिया के सामने रखा, लोग समझे, लोग उस दर्द के लिए खड़े भी हुए, वहां से उन्होंने लोगों के लिए एक मार्गदर्शन रखा उनके जैसी परेशान लड़कियों से कि उनको काम मिल सकता है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने पास्ट को लेके बैठी नहीं रही। तो हमें अगर आगे बढ़ना है ना तो हमें अपने प्रेजेंट को सुधारना नहीं है, प्रेजेंट को जीना है। अरे जब मेरे कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार हम रोज परेशान आते हैं, तो मैंने कहा आज प्रेजेंट में जीना, मोबाइल बंद करके आना। तो जब वो अपने घर से ऑफिस तक आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने ना बहुत सारी चीजें देखी, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला, अरे हर्षद तुझे पता है आज हम जिस कैनाल से रोज निकलते थे वहां ना बहुत सुंदर सुंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं, चीजें लिखी हुई हैं, हमने कुछ लड़कियों को देखा जो उस मैदान में रोज खेलती हैं, मैं 25 साल से उस रूट से निकल रहा हूं पर मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अपनी टेंशन भूल गया उस टाइम मेरा। थैंक यू सो मच, मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बार बार बात करूंगा, मेरे कुछ वीडियोज भी इससे रिलेटेड यूट्यूब आउटलुक मैटर्स मेरे चैनल पे, आप लोग देखना उसे, आपको और बातें पता चलेंगी, बट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिव इन द प्रेजेंट, फील इट, लेट मी नो, विल डिस्कस मोर। सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो को, मेरे आउटलुक चैनल को, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर, आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूं गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक दिन जब बारिश हो रही थी तो एक 15 साल का लड़का जिसका नाम जॉन गॉडार्ड था, वो अपने घर में अपनी किचन टेबल पे बैठा लॉस एंजलिस के अंदर, और उसने एक येलो कलर का पैड लिया जिसके टॉप पे उसने लिखा माई लाइफ लिस्ट, और उस लिस्ट के नीचे उसने 127 गोल्स लिखे। जी हाँ, 127 गोल्स उसने लिखे। हम कहेंगे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लोग ऐसे गोल्स लिखते ही रहते हैं, खास तौर पे बच्चों में तो ये बहुत शौक होता है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में उन 127 में से मोर देन 109 यानी 109 से भी ज्यादा गोल्स पूरे कर लिए। अब आप कहेंगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग गोल्स लिखते हैं उन्हें पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन आपको ये सुनके तब आश्चर्य होगा जब आपको पता चलेगा कि जो गोल्स उसने लिखे थे वो कोई सिंपल या इजी गोल्स नहीं थे। उनमें ऐसे ऐसे गोल्स थे जो कहते थे कि मेरे को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स पर चढ़ना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उनको सोर्स से लेकर उनके एंड तक एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े, जो सबसे तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट्स हैं, हवाई जहाज हैं, उनको चलाना है, यानी ही वांट्स टू बिकम अ पायलट आल्सो, मेरे को 1 मील 5 मिनट से भी कम समय में भागना है, और मेरे को पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये जो इंसान था, ये जो लड़का था, इसका नाम था जॉन गॉडार्ड, और बाद में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसको रियल लाइफ इंडियाना जोन्स का खिताब दिया। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनको ही हैज बिकम एक्चुअली कि जॉन गॉडार्ड जो थे बाद में वर्ल्ड रिनोन्ड एडवेंचरर बने, एक्सप्लोरर बने, ऑथर बने, लेक्चरर बने। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत से लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, 2 किताबें भी लिखी। 2013 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो हम सबको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम क्या कर सकते हैं अगर हम करने पर आए तो। मैं यहाँ पर आपको उनके गोल्स की लिस्ट नहीं बताने वाला क्योंकि वो बहुत लंबी है और मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, वो आप गूगल पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। आप जॉन गॉडार्ड टाइप कीजिए, आपके सामने उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो 127 गोल्स उन्होंने लिखे थे। आप कहेंगे हम सब लोग अब गोल्स लिखते रहते हैं। देखिए, लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। आप गोल्स अपने मन में रखते हैं या उसे लिखते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग अमेरिका एक शो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी सबकी आदत होती है कि नया साल आते ही हम लोग नए नए गोल्स बनाते हैं, रिजोल्यूशन, हमने उसको नाम दिया है अपना कि इस साल मैं ये चीज अचीव करूंगा, इस साल मैं हर रोज जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, या खाना ठीक से खाऊंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, व्हाटएवर इट इज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 15 फरवरी के आसपास यानी हार्डली आफ्टर 45 डेज उन्होंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने रिजोल्यूशन बनाए थे। तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ अपने मन में सोचकर रिजोल्यूशन बनाए हुए थे कि हमने ऐसा करना है इस साल, उसमें से सिर्फ 4% पीपल यानी 4% लोग ही ऐसे थे जो कंटिन्यू कर रहे थे, बाकी 96% लोग छोड़ चुके थे।

0: लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स नोट डाउन किए हुए थे, यानी जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने इस साल ऐसा ऐसा करना है, यानी ठीक वही काम जो जॉन गॉडार्ड ने किया था 15 साल की उम्र में जब उसने 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी, तो जिन लोगों ने भी लिख रखे थे अपने गोल्स को, उसमें से मोर देन 46% वर स्टिल कंटिन्यूइंग। जी हाँ, 46% लोग उस समय भी कंटिन्यू कर रहे थे जो गोल्स उन्होंने लिखे हुए थे। तो रिसर्चर्स शॉक्ड रह गए जानकर कि आपके सिर्फ किसी गोल को लिख लेने से उसके पूरे होने की संभावना 1100% तक बढ़ जाती है। इट इज वेरी पावरफुल थिंग। तो एक बहुत सरल टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप अपने गोल्स लिखें, पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में लिखें, और उनको लिखने के बाद उसकी एक कॉपी आप अपनी पॉकेट में जरूर रखें और दिन में कम से कम 3 बार उसको जरूर पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि एक फोकस्ड लाइफ को जीने का क्या मतलब होता है। एक्चुअली अगर आपने गोल्स लिख भी दिए और आप दोबारा उसको खोलकर नहीं देखते कई महीनों तक, तो उसके लिखे या ना लिखे होने का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं जाता। हम अगर किसी गोल को लिखते हैं तो हमें उसको दिन में कम से कम 3 बार उसे खोलकर देखना है और उसे पढ़ना है। उससे होगा क्या कि आप तीर की तरह से फोकस रहोगे उस गोल की तरफ जिधर आपको जाना है, और बाकी वो सारी अनवांटेड चीजें जो आपको खींचती रहती हैं और आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को खाती रहती हैं, उनसे आप बचते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जॉन गॉडार्ड की लाइफ से हम लोग इस इंस्पिरेशन को लें, हम ये देखें कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग गूगल पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एक दो पेज में ही आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई इंसान इतने टफ गोल्स को अचीव कर सकता है अपनी एक ही जीवन काल में, तो हमारे तो जो गोल्स हैं वो इतने टफ भी नहीं है, बहुत आसान गोल्स हैं हमारे। उसको देखकर आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी, और आप पूरी ताकत से अपने गोल्स पे लग जाएंगे। आपको बहुत आशा मिलेगी, बहुत होप मिलेगी कि अगर वो ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और होप इज एक्चुअली प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स द अचीविंग ऑफ गोल्स। बातें जारी रहेंगी, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं बोल रहा हूँ गिरेंद्र भारती, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर।

0: खुशियां कैसे आती हैं जिंदगी में? हमारी चॉइसेस से। आप यकीन मानिए, एक सही लाइफ पार्टनर चुनना, एक सही करियर चुनना, एक सही शहर चुनना, एक सही जॉब, एक प्रोफेशन, एक सही सब्जेक्ट बचपन में, सही दोस्त, कितनी सारी चुननी की चीजें होती हैं जो चुननी होती हैं हमें जिंदगी में। फिर बाद में म्यूचुअल फंड्स चुनना, शेयर्स चुनना, स्कीम्स चुनना, टर्म प्लान्स, ओ माय गॉड। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी स्किल जो हम में है वो होना चाहिए चुनने का स्किल, टू चूज द बेस्ट। वो कैसे होता है वो अगली कहानी बताएगी। मैं हूँ कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। यहाँ पर कहानियां सुनाते हैं, मतलब मैं कहानियां सुनाता हूँ और कई लोग ऐसी चीजें बताते हैं जो आपकी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना दे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है द ओल्ड कारपेंटर। अ कारपेंटर जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, अब बूढ़ा हो चला था, वो रिटायर होना चाहता था। काफी वक्त तक उसने कई खूबसूरत घर बनाए, लकड़ी के घर जिनके अंदर कमाल की कारीगरी होती थी। लोग उसके काम के फैन थे। एक एक बारीक से बारीक डिटेलिंग जो वो घर के लिए करते थे, जो वो घर में रखते थे, वो देखकर उस घर के जो मालिक थे वो खुश हो जाते थे। उन्होंने कई लोगों के घर बनाए और हर घर में लोग सुकून से रह रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं कि भाई आपकी वजह से ये घर इतना खूबसूरत है। उस कारपेंटर का जो बिल्डर था, जिन कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ वो काम करते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत खुश था कि यार जब तक ये हैं तब तक बढ़िया बढ़िया घर बनेंगे। लेकिन फाइनली उस कारपेंटर ने डिसाइड कर लिया कि वो अब नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो रिटायर होना चाहते हैं, चैन की जिंदगी चाहते हैं। अब बस और काम नहीं यार, बुजुर्ग हो गया हूँ, अब अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, उनको टाइम दूंगा, तो मुझे जरा इस काम से अब विदा कर दो। ये बात उन्होंने अपने मालिक को, उस कॉन्ट्रैक्टर को बताई। ये बात तो साफ थी कि कॉन्ट्रैक्टर को ये बात पसंद नहीं आनी थी। तो उसने कहा कि यार एक काम करो, एक घर और बना दो, फिर तुम्हें इजाजत, छुट्टी, तुम जहां जाना चाहो जाना। ये बात कारपेंटर को पसंद नहीं आई। उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हारे यहाँ काम किया, हर चीज तुम्हारे हिसाब से की, जितना पैसा दिया खुशी खुशी ले लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ, उसमें भी एक घर और बना दो। ये तो वैसा ही हुआ ना जब आप अपने ऑफिस के टाइमिंग पर निकलने को तैयार हो और बॉस आके कहते बस 5 मिनट और। गुस्सा आता, नाराजगी होती, वैसी ही उस कारपेंटर को थी। नाराज तो थे लेकिन काम तो करना था, मजबूरी थी। इतने साल जिसको बॉस कहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कैसे यूं बीच मझधार में छोड़ दे, एक घर बनाना है बना दे। तो उन्होंने वक्त लगा के वो घर बनाया। लेकिन कमाल की बात थी कि इस बार कारपेंटर ने ना दिल लगा कर नहीं बनाया, वो वाकई गुस्सा था इस बात से। और जब आप नाराज हो जाते हो तो फिर वो वर्कमैनशिप चेंज हो जाती है, आप इंफीरियर मटेरियल यूज करते हो या आप इंफीरियर टाइप की काम करने लगते हो, क्वालिटी गिरा देते हो। वैसा ही कुछ उस कारपेंटर ने किया। वो अपने करियर का आखिरी घर बना रहा था, वो भी इतना खूबसूरत नहीं बनता। एंड दैट वाज रियली एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज करियर। कारपेंटर ने कंप्लीट कर लिया घर और अपने एम्प्लॉयर उस कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि मैंने कर लिया है, आकर देख लो। वो आया, उसने घर को देखा, जाने वाला था जब उस घर से, निकलने वाला था, तब उसने कहा कि ये लो, ये दरवाजे की चाबी, यानी कि घर की चाबी, ये तुम्हारा घर है, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है कि तुमने इतनी जिंदगी भर जो मेरी इस काम को संभाला है, जो मेरी रेपुटेशन बनाई है, उसके लिए एक घर तो क्या है, ये तुम्हारा हुआ। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उस कारपेंटर के लिए, लेकिन उतना ही बड़ा शौक भी, समझे ना क्यों। सरप्राइज इसलिए क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इस कॉन्ट्रैक्टर को उसकी इतनी वैल्यू है कि वो उसे एक घर गिफ्ट करेगा, और शौक इसलिए क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि ये घर उसे ही मिलने वाला है और उसने इसी की क्वालिटी गिरा दी। बहुत ही बुरा हुआ। अब उसे पूरी जिंदगी उस घर में रहना पड़ेगा जिस घर की कमियां उसे मालूम है, और वो जानता है कि ये घर क्यों खराब है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि उसने खुद ही बनाया था। कारपेंटर की तरह ना हम भी अपनी जिंदगी को बड़े डिस्ट्रैक्टिव वे में बनाते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, वी रिएक्ट रादर देन टेक एक्टिंग, वी रिएक्ट। हम अपना बेस्ट देना नहीं चाहते, कम देना चाहते हैं। ये बहुत लोगों में आदत होती है, उन्हें लगता है अरे बस इतना ही ठीक है ना यार, इतनी तनख्वाह मिलती है अपन को, क्यों ज्यादा करेंगे, है ना। होते ना, कलीग की तरफ मत देखो, अगर होते हैं तो मन ही मन मुस्कुरा लो बस। गिव योर बेस्ट, ये मैं कहना चाहूंगा। आपका एटीट्यूड और आपकी चॉइसेस जो आप आज करते हैं, वही आपका कल आने वाली जिंदगी बनाती है। योर एटीट्यूड एंड चॉइसेस यू मेक टुडे विल बी योर लाइफ टुमारो। बिल्ड इट वाइजली, सोच समझ के वो चीजें चुनना जो चुनने वाले। और अभी क्या सुनने वाले हो? वॉक टॉक रेडियो। लौटूंगा मैं यहाँ पर एक और कहानी लेकर। आप सुन रहे हैं कहानी वाला, कहानी वाले रजत के साथ कहानियां सुनाता हूँ मैं। सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: Now that we're not together, dancing don't feel the same.

0: हाय, दिस इज शाहिद माल्या। सुनते रहिए इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो।
1: सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनने।

0: This is Bookipedia, only on Walk Talk Radio.
1: Hello everyone, आप सुन रहे हैं Walk Talk Radio और मैं हूँ गिरेंद्र भारती. इस शो के अंदर हम कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे, ऐसी किताबों के बारे में बात करेंगे जिसमें दी हुई शिक्षाओं पे अमल करके या उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं. बुकीपीडिया में जो बुक आज मैं ले रहा हूँ उसका नाम है What to say when you talk to yourself, यानी क्या बोलें जब आप खुद से बात करें. इसके राइटर हैं डॉक्टर शेड हेल्मस्टेटर PhD. इन्होंने 20 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में, या आप उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं. और इनकी किताबें 70 से ज्यादा देशों में पब्लिश हुई हैं. ये 1200 से ज्यादा रेडियो शोज और टीवी शोज के अंदर आ चुके हैं और ओपरा विनफ्रे जैसे प्रतिष्ठित शो के अंदर ये 2 बार प्रेजेंट हो चुके हैं. तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के बारे में जो आपको जिंदगी के एक नए सच के बारे में बताएगी, जिसका नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ. ये किताब लेने का मेरा एक खास रीजन था क्योंकि ये वो किताब है जब भी मेरे से कोई काउंसलिंग के दौरान पूछता है या अपनी किसी समस्या के बारे में बताता है और मैं सीधे सीधे अगर उसकी हेल्प नहीं कर सकता तो मैं उनको बोलता हूं कि आप इस किताब को पढ़ लीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी. जी हाँ, ये बुक कुछ है ही ऐसी. जिस समय डॉक्टर शेड काम कर रहे थे ह्यूमन माइंड की गुत्थियों को सुलझाने में, तो उन्होंने पाया कि जितनी भी थ्योरी रिसर्च और सारी चीजें उन्होंने देखी, एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट था जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया था. और वो फैक्ट ये था कि आप जो हर समय सोचते हैं आप वही बन जाते हैं. यानी जो आपकी थॉट्स हैं, जो आप लगातार आपके माइंड में जो रिकॉर्डिंग चलती है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर होता है. इनका कहना है कि जब हम जन्म लेते हैं उसी पल से हम लोग जो भी सुनते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं, हमारे भाई बहन हमसे जो कहते हैं, हमारे माँ बाप हमसे जो भी कहते हैं, हमारे टीचर्स हमसे जो दोहराते हैं, हम टीवी में जो देखते हैं, हम जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, ये सारे के सारे संदेश जिस तरह से किसी कंप्यूटर के CD रोम में हम लोग भर देते हैं या रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक उसी तरह से ये हमारे ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं. ये उसको एक पर्टिकुलर शब्द देते हैं जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग या प्रोग्रामिंग. तो डॉक्टर शेड हेल्मस्टेटर का कहना है कि हम लोग बचपन से ही प्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं. इनमें से कुछ प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं और कुछ प्रोग्राम्स खराब होते हैं. अगर वो प्रोग्राम्स अच्छे हैं, यानी वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, यानी वो ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपको अपनी जिंदगी में उस तरफ लेके जाती हैं जो आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड टू हैव देम, उनको रखिए आप संभाल के. लेकिन अगर वो ऐसे प्रोग्राम नहीं है तो डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है. वो ये यहां तक बताते हैं कि लगभग 77% ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स वी हैव जब तक हम बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ये 77% ऑफ प्रोग्राम्स निगेटिव होते हैं या काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं या हमको कहीं से भी हेल्प नहीं करते, बल्कि हमको हमारे गोल्स से, उन जगहों से जहां हम जाना चाहते हैं, उनसे दूर कर देते हैं. तो इस अवस्था में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. मैं एक और किताब में ये चीज देख रहा था, उसमें उन्होंने एक रिसर्च दी थी कि जब तक आप 21 ईयर्स के होते हैं, 21 साल की उम्र के होने तक, आप 1,50,000 बार ये सुनते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली, नो यू कैन डू, नहीं तुम नहीं कर सकते. और सिर्फ 5,000 बार आप ये सुनते हो यस यू कैन डू इट. तो आप सोच सकते हैं कि जो आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कि नो यू कैन डू, वो कितना बड़ा डिफरेंस है आपकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से जो कह रही है यस यू कैन डू ओनली 5,000 टाइम्स टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स. जब मैंने ये पढ़ा तो आई वॉज रियली शॉक्ड. और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि हम जो भी सुनते हैं, हम जो भी करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी हम किताबें पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ हम टाइम बिताते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या वो हमको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हैं या वो हमको निगेटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हैं. क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है लगातार, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है, उसको इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं होता कि जो आप सुन रहे हैं वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है, पॉजिटिव है या निगेटिव है. उसका सिर्फ इतना काम है कि जो भी वो इनपुट लेता है वो उसको रिकॉर्ड करता है और आगे के यूज के लिए आपको सौंप देता है. और अगर ये चीज बाई चांस रिपीट होती चली जाए तो ये आपका एक परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाती है और आप इसी के थ्रू बिहेवियर करना शुरू कर देते हो. तो दोस्तों बातें जारी रहेंगी क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा इस किताब में डॉक्टर शैड हेल्मस्टेटर हमें क्या क्या बताते हैं, किस तरह से हम अपने इस निगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में बदल सकते हैं और कैसे हम इस प्रोग्रामिंग को चेंज करके अपनी लाइफ में जो भी हमारे गोल्स हैं हम उनको पा सकते हैं। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं वीरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: कुछ किताबें जिंदगी बदल देती हैं, ऐसी ही किताबों के बारे में सुनिए बुकीपीडिया में, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। वॉक

हाय, मैं हूं अंशुल भट्ट, फाउंडर एंड सीईओ फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बेसिकली स्टार्टअप, जब हम कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है किसी भी काम को करने में, और कुछ इनोवेशंस की वजह से किसी एंटरप्रेन्योर की कुछ काम करने के तरीके से अगर सोसाइटी की वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो बेसिकली एक स्टार्टअप होता है। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट में, किसी भी चीज में, तो ऑब्वियसली वो वहां से अर्न भी करता है, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हमने देखा है क्या, इतने टाइम में इंडिया में ही काफी स्टार्टअप सब आ रहे हैं, 2014-13 के बाद से लेके कंटिन्यूस स्टार्टअप्स ग्रो कर ही रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, और खास तौर पे सर्विस सेक्टर में तो स्टार्टअप की एक तरीके से अब बाढ़ आ रही है। लोग अलग अलग तरीके के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अपने जो उनके आइडियाज हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि हम इस सेक्टर में ऐसे करके काम करेंगे, तो उसको ग्रो करवा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो हर किसी का कभी ना कभी सपना रहता है कि वो कुछ बड़ा करे, वो कुछ स्टार्ट करे जिसके वजह से लोग उसको याद रखें, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, और इसी मोटिवेशन के साथ हर कोई कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करता है। लेकिन काम स्टार्ट करना एक अलग है, और उस काम को एक बड़े लेवल पे ले जाना ये एक पूरा ही अलग, मतलब अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक शॉप स्टार्ट कर दी, कुछ भी ऐसा कि जिससे आपको अर्निंग हो रही, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप को आप उस लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल का, नहीं लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल का फायदा हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बहुत सारे लोग जो आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे फायदा ले पा रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, ये इसने ये स्टार्ट किया और इसका ये आइडिया था और ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। तो इस पूरे जो जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज तो अगर मैं, क्योंकि मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने 2019 में स्टार्ट किया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में, क्योंकि मैं पहाड़ों से ही बिलोंग करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में पास आउट होने के बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को दिखा और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिखी, वो उत्तराखंड में ट्रैवल एंड टूरिज्म था, और मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाके कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा कि जिस फील्ड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई काम नहीं कर रहे हैं या स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ट्रैवल या टूरिज्म में, उत्तराखंड का कोई अपना ब्रांड हो, ऐसा ब्रांड हो क्या, अगर कोई भी उत्तराखंड जा रहा है तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज चले, तो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी थी राज्य के लिए, अपने ही होम टाउन के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने 2019 में जनवरी में स्टार्ट किया कंपनी जिसका नाम था फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और जो इसकी थीम थी वो ये थी कि हम सिर्फ एक अकोमोडेशन चेन नहीं होंगे, बट हम एक यूनिक अकोमोडेशन चेन होंगे। हम सिर्फ लोगों को कमरा नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ लोगों को पैकेज नहीं बेचेंगे, बल्कि हम हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा वो एक्सपीरियंस देना रहेगा किसी भी ट्रैवलर को। तो इस थीम के साथ हमने स्टार्ट किया, और 2019 से 21 तक अभी हमारी 5 प्रॉपर्टीज उत्तराखंड में ऑपरेशनल है, 2 अभी विद इन अ मंथ शायद हम लोग कर लेंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये वो था कि हमने मतलब कैसे करके स्टार्ट किया, इस बीच बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो आई होप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको हल्का सा आइडिया आया होगा कि क्या ये पूरी जर्नी होती है, कैसे करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

हाय, मेरा नाम है अंशुल भट्ट और मैं फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ हूं। और आज आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने बात की थी वो थी क्या स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे ये पूरी जर्नी रहती है। आज आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा क्या कैसे करके मैंने जो फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप है उसको स्टार्ट किया है और कैसे करके हमारे जो स्टार्टअप ने एक तरीके से रेस पकड़ी है, कैसे करके हमने अपनी ही ग्रोथ देखी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। 2019 में हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप। हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम उत्तराखंड में जितने ट्रैवलर आ रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस दें, क्योंकि हम जितने भी सारे ब्रांड यहाँ पे इंडिया में हैं जो हॉस्पिटैलिटी में टॉप के ब्रांड हैं वो अलग अलग तरीके से रूम सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो हमारा ये था कि हम एक तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहीं ना कहीं से एक यूनिक अकोमोडेशन होगा, कि वो नॉर्मल कोई लॉज नहीं होगा या नॉर्मल कोई कमरा हम सेल नहीं करेंगे, हम एक एक्सपीरियंस सेल करेंगे। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 2019 में हमने चोपता तुंगनाथ जो एक लोकेशन है वहाँ पे हमने अपनी एक यूनिट खोली और धीरे धीरे करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, नैनीताल, अलग अलग जगह पे हमने यूनिट्स स्टार्ट करी हैं और अभी दो यूनिट हमारी उत्तराखंड के चमोली और टिहरी में हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर रहे हैं। बस ये चीज़ को हम मेन वो लेके चल रहे हैं जो हमारा यूएसपी है, कि हम एक्सपीरियंसेस ही सेल करें। जो भी आ रहा है वो सिर्फ, क्योंकि जितना भी ट्रैवलर उत्तराखंड में आता है वो कहीं ना कहीं अपने पूरी साल भर की कुछ छुट्टियां बचा के आता है, बहुत जगह से पैसे अरेंज करके आता है, अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियां देख के आता है, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, उसके पैसे बहुत ज़्यादा कीमती है। और हमारा जो मेन मोटिव है क्या एज अ सिटीजन ऑफ हिल्स उत्तराखंड, क्या हम उसके जो पैसे का उसका पूरा वैल्यू उसको दें। तो बात करते हैं क्या हमारे स्टार्टअप ने कैसे रेस पकड़ी। तो स्टार्टअप में सबसे जो जरूरी है वो आपके लिए लोग हैं, लोग भी वो लोग जो आपके टीम में हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपके टीम में अलग अलग माइंडसेट के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टार्ट

आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करवा रहे हो उससे और उसको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो हमारे साथ भी जब हमारी लोगों ने टीम देखी और ये देखा कि ये फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं, तो लोगों ने धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग्स आई तो हमें ऑब्वियसली हमने आईटी में इम्प्रूवमेंट करे, हमने अपने टेक्नोलॉजी से लेके ऑपरेशंस तक हमने हर हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे। हमने जो फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लेके आना शुरू किया टीम में, और यहाँ से हमारे पूरे स्टार्टअप को एक पेस मिला जो अभी हम अपने आप को कहते हैं, वो हम कहते हैं कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिक अकोमोडेशन चेन है। और जो हमारा मिशन है वो है कि हम इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन बने, क्योंकि लार्जेस्ट अकोमोडेशन चेन बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने आप को जो अपनी हमारी यूएसपी है वो है कि हम लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन हों, क्योंकि हम सिर्फ रूम या सिर्फ होटल सेल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवलर को एक एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी स्टार्टअप की ये जर्नी रही है और जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: सुनो सुनो भाई सुनो सुनो।
1: अरे क्या बोल रही थी मैं?
0: यही कि आरजे गौतम आ रहे हैं गपशप जंक्शन पर ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. आई एम बाय प्रोफेशन अ वेडिंग एंड इवेंट प्लानर एंड मेरी कंपनी का नाम प्लान योर मेमोरीज है. हम लोगों की मेमोरीज प्लान करते हैं, चाहे उनकी वेडिंग्स हो गए, बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गए, जितने भी हैप्पी ओकेजन्स होते हैं एक पर्सन की लाइफ में, हम ट्राई करते हैं कि उनकी उन मेमोरीज को अच्छे से प्लान कर पाए. व्हेन आई वाज परसुइंग माय एजुकेशन, सिंस दैट टाइम आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स. देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट अप एज अ पार्ट टाइम जॉब. आई वॉज स्टडिंग एंड साथ साथ एज एन अर्निंग सोर्स आई वॉज वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज एंड एज अ फ्री लैंसर. पार्ट ऑफ दैट आई यूज टू ट्रेवल टू मुंबई, जयपुर, उदयपुर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड आई यूज टू प्लान इवेंट्स विद देम. दैट इज वेयर आई कनेक्टेड द डॉट्स कि यू नो आई शुड गेट इन टू दिस इंडस्ट्री and I have the skills because I was always a multitasker and you know I was always confused ki I can do a lot of things nicely, what am I meant for. I had friends jo ek cheez acche se kar sakte the to wo us profession ko choose kar rahe hote the. Main Anukriti har cheez ko acche se kar sakti thi. Aap mujhe koi bhi cheez de do, main research karke use acche se kar sakti thi. So when I started doing events, I connected the dots कि इवेंट इंडस्ट्री में तुम्हें हर चीज की नॉलेज चाहिए होती है. यू शुड बी अ मल्टीटास्कर. एक साथ आपको हजार टीम्स को मैनेज करना होता है एंड दैट इज वेयर माय स्किल्स फेल इनटू प्लेस एंड दैट यूरेका मोमेंट केम अप एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद माय कंपनी. हाउ डिड आई स्टार्ट ऑफ विद माय कंपनी हियर इन देहरादून. वन डे माय फादर रैंडमली टोल्ड मी दैट लेट्स स्टार्ट एन इवेंट कंपनी एंड उधर से मैंने वो चीज पिक करी एंड देन सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय पार्टनर आल्सो पुश्ड मी टू स्टार्ट द कंपनी बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू एम्पावरिंग वुमेन. आई वाज मायसेल्फ फ्रॉम अ वुमेन्स कॉलेज सो आई वाज वेरी वोकल अबाउट ऑल द इश्यूज दैट वुमेन हैड टू गो थ्रू. वुमेन हाउ डिड दे वर्क, यू नो हाउ वर दे एक्टिव in different industries, how are they on top of the different industries. So us cheez se inspire hoke fir maine socha that why not, let's start off with the company. And aap manoge nahi, humne bahut chote chote decorations, home decorations, room decorations se start kiya and aaj hum दुबई लेवल की वेडिंग्स कर रहे हैं. आज हमारा ऑफिस दुबई में भी है एंड हम लोग इंडिया एंड दुबई दोनों में, देहरादून एंड दुबई टू बी प्रिसाइज, दोनों जगहों पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स मैनेज करते हैं. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स हु मोटिवेटेड एंड पुश्ड मी टू एक्सेल एंड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू गो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. वॉक टॉक रेडियो.

0: रेडियो।
1: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे।
2: आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ। ओके, आई हैड अ फेज वेयर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड, यू नो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दैट वॉज बिकॉज ऑफ, यू नो, जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज होती हैं, जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे तुम बहुत, यू नो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हो। आई वॉज गोइंग थ्रू दैट बैड फेज, ऑब्वियसली। आफ्टर, यू नो, 2 years ऑफ गोइंग थ्रू दैट फेज, आई रियलाइज दैट, ओ, वेयर इज दैट चार्म दैट वॉज इन मी, यू नो, समथिंग इज मिसिंग। I have stopped talking, I have stopped going out. Why? Then I understood that and उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई and then, you know, I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें इंडिया में travel करी, you know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that, you know, जो भी outside circumstances थी, जो which were, you know, pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started, you know, getting back on the track, meeting people, doing some things jo mujhe achhi lagti thi, doing events, going out to different places and working with different people. And unse seekha maine bahut kuch. Maine 12th tak science padhi, uske baad maine mass communication kiya, uske baad maine events kiya. Theek hai, to I think I had enough backups ko शन अवे करना एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू डू दिस एंड आई एम मेंट टू सी द ऑपरेशंस ऑफ थिंग्स। सो अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, आई टेक्निकली डोंट हैव अ बैकअप प्लान, बट इफ आई हैव टू डू समथिंग, आई नो आई कैन डू ऑपरेशंस वेरी वेल, ऑपरेशंस ऑफ एनी कंपनी, ऑफ एनी जॉब, आई कैन डू दैट वेरी वेल, बिकॉज मैंने एक मास्टर ऑपरेशंस वाली फील्ड में काम किया हुआ है, जो इवेंट्स है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस देखने होते हैं। तो इफ आई कैन डू दिस, आई कैन सी द ऑपरेशंस ऑफ एनी प्लेस एंड एनी बिजनेस।
0: वॉक टॉक रेडियो।

अपने घर परिवार दोस्तों से दूर, कभी रेगिस्तान में तो कभी -50 के तापमान वाले बर्फीले हिमालय में अनगिनत मुश्किलों से जूझते हैं जो अपने देश की आन बान शान के आगे अपना शीश कलंक करते हैं जो। ऐसे वीर योद्धाओं की वीर कहानियाँ सुनिए प्रोग्राम कॉल फॉर ड्यूटी में सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: Hi, मेरा नाम है चांदनी और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर. And I am a teacher. I am teaching from last 8 years. I am from Dehradun. More than one year से cycling कर रही हूँ. और cycling हमें जरूर करनी चाहिए बिकॉज इट कीप्स यू फिट हेल्दी. साइकिलिंग इज अ काइंड ऑफ थेरेपी. इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट और इफ यू आर ओवर एग्जर्टेड नो देन इफ यू गो फॉर अ साइकिलिंग ओनली फॉर 1 hour यू फील वेरी फ्रेश. वॉट आई बिलीव एंड वॉट इज माई एक्सपीरियंस. साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज बिकॉज एज यू आर सींग की देर आर सो मेनी हेल्थ इश्यूज. इफ यू डू साइकिलिंग नो वॉट आई ऑब्जर्व एंड वॉट आई फील इट कीप्स यू फ्रेश होल डे.
2: Walk Talk Radio.
3: Walk Talk. Walk Talk Radio.
4: जिम्मेदारी अपने रास्ते खोजती है लेकिन गैर जिम्मेदारी बहाने बनाती है. अब आपको सोचना है कि आपको जिम्मेदार बनना है या गैर जिम्मेदार.
5: Tune in for a better life.

बाल खोले लेके आए हो मेरा ताजा तरीन हर बीट मारे साथ बेहतरीन मेरे बदन से ज्यादा मेरे सुर हसीन नाम तो तू जानता है नेहा भसीन जैसे

0: कपड़े तो पहन ले।
1: दादा दादी मिल गई से।
2: मतलब ये उन लोगों में से है
3: जिनकी कल्चर की तो कुछ परवाह कर।
4: मैं आपको समझता हूँ कि आपके साथ ऐसा ही होगा।
5: कहाँ दे रहे हो?
4: लड़की ना लड़की वगैरह चल।

पिछली वो रातों में गहरी सी अपनी वो यादों में मैं रहा, अनकही सी बातों में मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत धक्का, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती जब को मैं अपने

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो उस समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। जिस भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो सक्सेस मिल जाए, और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितनी की ज़रूरत है वहाँ पर।
1: आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस सपने देखते रहना, और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो, और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
2: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
3: जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
2: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.

Radio. वो वक्त कितना भी मुश्किल हो, दिल में हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहिए। वो वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। Walk Talk Radio.

0: Talk Radio.
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, AKA धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है, तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए। और ये सोसाइटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी। जो लोग होंगे आपके आसपास, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा।

0: लेकिन जब आप वो उन्हें पूरा कर लोगे ना, तो यही सोसाइटी आपको एज ए एग्जाम्पल देखेगी, क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है, उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको एज ए एग्जाम्पल देखेंगे। तो यही है यार कि किसी के सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है। अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे। उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी, तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: Walk Talk Radio.
1: अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। बट ये सफलता कब आएगी, किस दिन आएगी, किसी को नहीं पता। हम अगर दूसरों को कंपेयर करेंगे कि उसकी सफलता हो चुकी है, मेरे साथ के लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो वो उनका भाग्य और उनकी मेहनत है, उन्होंने उसके लिए क्या किया। कभी कभार उनके बताने में मत आइए मेरे साथ ऐसा चल रहा है। हर आदमी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, सफल दिखाना चाहता है। कंसंट्रेट करिए खुद पे। आपकी सफलता का दिन कोई निश्चित नहीं है, बट अगर आपकी मेहनत में कमी नहीं है और आपका प्रोडक्ट या आपका काम आपसे मिलता हुआ है, तो आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और जिस दिन ये सफलता मिलेगी, उस दिन आप समझेंगे कि ये सारा वक्त, ये सारा समय, ये रोड मुझे चलनी ही थी वहां तक पहुंचने के लिए। यही लाइफ की जर्नी है।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: आप दोनों का वॉक टॉक रेडियो पे।
1: थैंक यू सो मच किरण फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वॉक टॉक रेडियो।
0: सो कैसा लग रहा है आज वॉक टॉक में आके?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है आज तो।
0: और सबसे पहले मनीष जी आपसे कि हौसला फाउंडेशन क्या है? हौसला, जैसे कि हम सभी को पता है शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन हौसला फाउंडेशन के लिए इस शब्द के क्या मायने हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इस नाम को क्यों रखा गया?
2: मैम, हौसला फाउंडेशन के लिए जो शब्द है हौसला, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम बात करें जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसको उनको हम एक तरह से एजुकेशन दे के उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, ताकि वो बड़े होके कुछ बने, है ना, स्कूल जाए, बड़े होके कुछ बने, मतलब उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्हीं का नहीं, वहाँ जितनी भी स्लम एरिया है देहरादून में, हमारा पर्पस यही है कि सबका हम हौसला बढ़ाएं, सबकी मदद करें हौसला के थ्रू, और एजुकेशन को एक अच्छी तरह से अच्छे मुकाम पे ले जाएं।
0: ओके, असल काम क्या है, क्या करता है हौसला फाउंडेशन लोगों के लिए, और आगे अभी तक जितनी भी जर्नी आप लोगों की रही है, ये कहाँ से शुरू हुई?
1: ओके किरण, सो लेट्स गेट बैक टू हिस्ट्री अ लिटिल बिट। आई एक्चुअली कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई एम द ओनली एजुकेटेड पर्सन माय एंटायर फैमिली।
0: ओके,
1: सो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन अ लॉट। तो कहते हैं ना कि एक खानदान में अगर एक बच्चा पढ़ ले तो उसके सामने वाली सात पुश्ते अच्छे, मतलब वेल एजुकेटेड होते हैं। सो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड से हमारे बच्चे हैं हौसला के, आई कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, बट देन यू विल एक्चुअली सी अ डिफरेंस वैल्यू। एंड आई ऑलवेज टॉट आवर किड्स कि अगर आप पढ़ाई करोगे ना, पैसा तो कोई भी कमा लेता है देखो, बट आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, लोग आपको पूछेंगे। एंड यू सी मी सिटिंग ओवर हियर, आई एम वन ऑफ दोज किड्स इफ यू गो बैक 25 इयर्स। सो आवर मिशन इज वेरी सिंपल विद हौसला। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज बाय प्रोवाइडिंग अवेयरनेस। We're only trying to bring a change and we are making sure कि जितने तक हम पहुंच पाए, जितनों को हम पढ़ा पाए, हम करेंगे। And our mission is actually to provide basic education to the kids, and we will support them financially with all basic needs, and we'll make sure that they step into mainstream education.

वो जाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले, मांगी मन्नते भी काफी, जन्नत है जहाँ की तू अमर रहे सदा ही, बातें बाकी सफर में काटे काफी, गम को हम बांटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी, क्यों खुश होता तेरे

औरों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर से जो है पेरेंट मेरे काफी सपोर्टिव भी रहे थे इस मामले में, काफी मतलब फ्रैंक माइंड का हमारा जो फैमिली है पूरा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की कॉलेज जो मैंने किया था अपना, मैंने BA MA जो मेरा म्यूजिक में होता मेरा हल्द्वानी से हुआ था। तो मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोला कि जैसा होता ना पहाड़ में नॉर्मली कि मेरा लड़का जवान होता है 18 साल का कि चलो आर्मी की लाइन पे लग जाओ, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली। बाकी मैं एक एथलीट भी रहा हूँ अच्छा, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया था कि आर्मी में जाओ या फिर कुछ और करो। तो मुझे अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ खास दिक्कत वहाँ पे नहीं आई थी। हाँ, जब इस फील्ड में आया था उसके बाद में तब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो कि अब मैं आपको आगे बताऊंगा इस मामले में।

0: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.
1: वो कहते हैं ना कि if your plan doesn't work, don't worry. God has some other plan for you. तो यार अगर किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो चीज आपको नहीं मिल पा रही हो, तो परेशान मत हो दोस्त। ये सोचो कि भगवान ने इससे भी अच्छा आपके लिए कुछ सोचा है। भगवद गीता में भी ये लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो वही करना है, अपनी मेहनत पे और भगवान पे यकीन रखना है।
0: वॉक टॉक रेडियो।

तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रास्तों पर अकेले ही निकल पड़ते हैं, और जब हम अपने दोस्तों से साथ की आशा करते हैं तो वो अधिकतर इनकार कर देते हैं। तो इस समय पर आप इस बात को समझ लें कि आपका साथ ऊपर वाला दे रहा है, और जो लोग आपका साथ देने से मना कर रहे हैं उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो आपके साथ खड़े हो सके। और ऐसी ही और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी, मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ जाया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। नॉर्मली जैसे हमने सीखा पहले, कोई भी बंदा म्यूजिक में कभी भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। जिसको अगर ये पता चल गया कि बस मेरा हो गया, मैं तो परफेक्ट हूँ, अब उसका फिर वहाँ से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में फिर हमने सीखा, लेकिन जब हम सीख रहे थे तब कुछ आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने मतलब कि सीखा बीखा नहीं ताल, बट ये था कि उनके गाने अच्छे वो कर गए, क्लिक कर गए। तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये दुख की बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को उतना जल्दी लेते नहीं है, और अगर जिनके गाने अगर क्लिक कर जाएं, चाहे उनके लिरिक्स का मीनिंग समझ में आए ना आए, कोई अगर अच्छा गाना भी देता हो तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं करके, आपका आपकी वॉइस अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, पर आपके गाने में डांस नहीं है। ये डांस जो शब्द है ये उत्तराखंड के लिए एक दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आज हर गानों में डांस ढूंढते लोग। आज वो सुकून उत्तराखंड का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुकून जो है मरने वाला है थोड़ा। लर्निंग इज अर्निंग होती है यहाँ पे, और ये शब्द तो मतलब म्यूजिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने इसका रखता है लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहाँ पे कमाओगे भी नहीं। पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी है कि यहाँ सीखने के बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे। और जहाँ पे मैं अगर सीखने की बात करूँ, अगर आपको म्यूजिक के फील्ड में, अगर किसी भी जो नए आर्टिस्ट जो मुझे अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक के फील्ड में आना है तो आप जो है किसी और को देख के मत आइए कि बस उनके गाने फेमस है, हम स्टूडियो में जाएंगे गाना रिकॉर्ड करेंगे वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपका वो गाना सिर्फ एक बार फेमस होगा, दो बार फेमस होगा। जब आप सीखेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए एक आर्टिस्ट बन जाएंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप स्टूडियो आर्टिस्ट तक ही सीमित रहेंगे।

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण, और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में आई है, मेरे सामने बैठी हुई है, और इतनी कूल वाली वाइब आ रही है ना मुझे सच्ची में उनसे, मतलब अलग ही अंदाज है। कौन है, लड़का है लड़की है? भी देखो मैं बताती हूँ कि कूल वाइफ सिर्फ लड़के नहीं देते हैं, लड़कियां भी बहुत देती है। और इस वक्त जो मेरे साथ बैठी है ना, उनको तो आई थिंक कौन नहीं जानता, पूरा इंडिया जानता है। कैसे जानता है ये अभी सीक्रेट है, जैसे ही नाम बताऊंगी ना आपको भी पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं नीरू पाल का, जो कि रैपर है और देहरादून से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच।
1: कैसे हो आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए।
2: मैं भी,
1: क्योंकि पॉडकास्ट में ना जब हम बात करने बैठते हैं तो बात बहुत जगह से निकलती हुई ऐसी ऐसी जगह निकलती है कि बहुत कुछ ऐसा पता चलता है लोगों के बारे में, हमारे साथ जो भी जुड़ता है उसके बारे में, कि बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज खासकर जो रैपर कम्युनिटी है, जो रैप करते हैं, जो हिप हॉप करते हैं, जो डांस करते हैं, जो आर्टिस्ट है, जो कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो आज बहुत कनेक्ट करने वाले हैं आपकी लाइफ से। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि नीरू पाल, जिसे दोस्तों हमने एमटीवी हसल फर्स्ट सीजन में देखा था, आपका जो धाकड़ रूप है ना वो हमने देखा था आपके रैप के थ्रू। एक्चुअली नीरू पाल पर्सनल लाइफ में एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास इंसान है, वो कैसी लाइफ है आपकी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
2: मेरा नाम नीरू पाल है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है मेरे बारे में, और थैंक यू सो मच आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो नीरू पाल बेसिकली मुझे बनने में बहुत टाइम लगा, और मैं सेल्फ मेड बंदी हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या फिर हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे खानदान से आते हैं। मैं एक बहुत छोटी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे जो भी मैंने किया है अपने दम पे किया है, और यही शायद मुझे नीरू पाल बनाता है। यही चीज की जो मेरा सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड हूँ मैं, और जो मेरा ये नेचर है, मेरा बिहेवियर है, यही मुझे नीरू पाल बनाता है, जो कि सबसे हटके है।
1: हटके तो आप हो, नो डाउट।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। आपने साइकोसोमेटिक वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। साइकोसोमेटिक दो शब्दों को मिलाकर बना है, साइको और सोमा। साइको शब्द माइंड को रिप्रेजेंट करता है और सोमा शब्द ग्रीक लैंग्वेज में बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि जो भी काम हम बॉडी पे करते हैं उसके रिजल्ट माइंड पे आ जाते हैं और जो काम हम माइंड पे करते हैं उसके रिजल्ट बॉडी पे आ जाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि अगर आप अपने मन में आंख बंद करके सिर्फ नींबू के बारे में ख्याल करें तो आप देखेंगे आपके मुंह पे पानी आ गया। नो, इट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। फिजिकली वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ नींबू के बारे में सोचते ही आपकी बॉडी रिएक्शन कर रही है। ठीक ऐसे ही अगर बॉडी के साथ कुछ किया जाता है तो उसका रिएक्शन सीधे सीधे माइंड पे आ जाता है। इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जब आप सो रहे होते हैं, एक इंसान बहुत गहरी नींद में है और आप अगर एक बर्फ का टुकड़ा धीरे से उसके तलवे पर अगर लगाएंगे तो वो ये सपना देखना शुरू कर देगा कि वो बर्फ के अंदर किसी बर्फ के पहाड़ पे नंगे पैर चढ़ा जा रहा है और उसको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप उसके पैर के तलवे के पास कोई माचिस की तिल्ली लगा देंगे, यानी थोड़ा सा फायर आप वहां पर तपिश देंगे उसको आग की, तो आप देखेंगे कि उसको लगेगा कि मेरे को कोई नरक की आग में जला रहा है। इट हैपेंस मेनी टाइम्स कि आपको बॉडी के साथ क्या हुआ काम सीधे आपके माइंड पे रिएक्ट करता है, जिस तरह से माइंड पे क्या हुआ काम आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी बॉडी को पीक पोजीशन में रखते हैं तो आपका माइंड भी पीक पोजीशन में काम करता है। शायद इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन में हो तो उसको जिम जरूर जाना चाहिए, उसको फिजिकल एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए अगर वो कर सकता हो तो, नहीं तो वो सिर्फ मॉर्निंग में घूमने ही चला जाए, मॉर्निंग वॉक पे चला जाए या हल्की फुल्की योगा की एक्सरसाइजेस करे। लेकिन जो कुछ भी हम शरीर के साथ करते हैं उसका रिजल्ट हमारे माइंड पे आने ही वाला है। इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बहुत ही यूजफुल बना सकते हैं। मतलब आपके हाथ में एक ऐसा कंट्रोल आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मैं अपने माइंड को कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। आपने जब भी किसी डिप्रेस आदमी को देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसके कंधे झुके हुए होते हैं, वो धीमे धीमे चल रहा होता है, वो नीचे की तरफ देख रहा होता है और उसकी ब्रीदिंग उथली होती है, यानी ही इज हैविंग शैलो ब्रीदिंग। अगर आप इसको अपोजिट कर दें, यानी कि अगर आप इस बॉडी की जो लैंग्वेज इसको चेंज करने की कोशिश करें, यानी अगर आप अपने कंधे को खींच के रखें, आप बिल्कुल सीधे खड़े हों, यानी आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी जो ब्रीदिंग है वो चेस्ट में डीप जानी चाहिए, यानी आपको बहुत डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए और आपको ऊपर की तरफ देखना चाहिए, तो ये एक ऐसी फिजियोलॉजी आपकी हो जाएगी, इतनी रिसोर्सफुल हो जाएगी कि आपको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देगी। आप देखिए, अगर हम जब भी किसी ऐसे जवान को देखते हैं जो सेना में है तो अक्सर आप देखोगे कि वो लोग, उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और उनकी चेस्ट आगे को निकली हुई होती है। रीजन क्या है? आप उनके कंधे कभी भी झुके हुए नहीं पाएंगे क्योंकि उनके साथ इस चीज की इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो उनकी डेली लाइफ के अंदर हैबिट में आ जाता है। तो डेफिनेटली हम कभी भी ये चाह नहीं सकते, ये सोच भी नहीं सकते कि हमारी सेना के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे जाकर, वो कभी किसी डिप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें या उस तरह की माइंड की स्टेट के अंदर रहें। लेकिन हम लोग अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं या हमारे जानने वालों के साथ। अगर कोई भी आपको ऐसा इंसान दिखता है जो कि डिप्रेशन से जूझ रहा है तो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके वो अपने इंटरनल स्टेट्स को चेंज कर सकता है बहुत आसानी से। एक रिसर्च करी गई जिसके अंदर ये कहा गया कि आप अपनी गर्दन को झुका के रखें और कुछ निगेटिव इमेजिनेशंस करें। लोगों ने बहुत आसानी से कर ली। उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी चिन को अप रखें और ऊपर की तरफ देखें और उसके बाद कुछ निगेटिव सोचकर देखें। आपको जानकर हैरानी होगी कि 65% ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू डू इट, यानी वो कर ही नहीं पाए। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि आप अपने कंधों को ऊपर रखें, अपनी चिन को अप रखें और उसके बाद आप कुछ निगेटिव सोचकर देखें। आप नहीं सोच पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी बॉडी और माइंड में इतना गहरा कनेक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक बुक पढ़ रहा था, नॉर्मन कुजिन्स की किताब थी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। इस बुक में उन्होंने बताया है कि उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया कि ये आसानी से ठीक नहीं हो सकते। उनके ठीक होने के चांस मात्र 1 in 500 थे, तो बहुत मुश्किल था उनका बचना। लेकिन उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ में। उन्होंने ऐसी फिल्में देखनी शुरू कर दी, ऐसे किताबें पढ़नी शुरू कर दी, ऐसे लोगों के साथ रहने लगे, ऐसे प्रोग्राम्स देखते थे वो जिनसे उनको बहुत ज्यादा हंसी आती थी। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखिए, हंसने की वजह से धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज में सुधार आना शुरू हो गया और बॉडी लैंग्वेज में चेंज आने की वजह से उनके इंटरनल माइंड की स्टेट्स भी चेंज होनी शुरू हो गई। कुछ ही महीनों के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर्स भी उनको देखकर बुरी तरह से हैरान रह गए। नॉर्मन कुजिन्स बोलते हैं कि माइंड और बॉडी की जो रीजेनरेशन की पावर है उसको हमें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। इट कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको आज दी है, मैं चाहूंगा कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और किसी भी परेशानी से डरे नहीं। हर चीज का हल होता है और कई बार वो इतना आसान होता है कि हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता तो हम उसे देख नहीं पाते। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं वॉक टॉक रेडियो पर, ताकि हम आपको इस तरह की बातें बता सके जो आपको डेली लाइफ में अपनी आंखों के सामने रहने के बाद भी दिखाई नहीं देती। बातें जारी रहेंगी, मैं आपको ऐसी ही बातें बताता रहूंगा जिससे आपके ज्ञान का वर्धन हो और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सके। मैं हूँ गिरेंद्र भारती, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: लगी तो नहीं? अरे
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखा।

जिस खेल से उन्हें प्यार था उन्होंने शादी भी उसी से की, मतलब खेल से नहीं की, लेकिन जो उस खेल को पसंद करती थी, जो उस खेल को खेलती थी, शादी भी उन्हीं से की। फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवीवी लक्ष्मी, उन्होंने शादी की पीवीवी लक्ष्मी से, वही उनकी गर्लफ्रेंड थी, वही उनकी वाइफ बनी। हम बात कर रहे हैं पुलेला गोपीचंद की। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मैं हूं मुस्कान और ये है शो अनसंग चैंपियंस का। आखिर ऐसे बहुत सारे चैंपियन हैं जिन्होंने लाइफ में ना जाने क्या क्या हासिल किया है, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपको हर रोज कुछ नया सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और इसी के साथ आज हम बात कर रहे थे पुलेला गोपीचंद की। उनकी एक बेटी है, उनका एक बेटा है, बेटी गायत्री, जो भी खेलों में ही आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा जब हमने स्टूडेंट्स की बात की तब हमने आपको दो नाम तो बहुत अच्छे से बताए, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, लेकिन उनके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम पर बहुत जाने माने हैं, जैसे कि ज्वाला गुट्टा, पी कश्यप एंड श्रीकांत कदम्बी, तरुण कोना। ये ऐसे गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी के प्लेयर हैं जिन्होंने भारत में बहुत नाम रोशन किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। आखिर बैडमिंटन एक टाइम पर ऐसा खेल था जहां पर ना ग्लैमर था ना ही पैसा था। अगर सिर्फ एक प्लेयर थे तो वो थे प्रकाश पादुकोणे, जिन्होंने बैडमिंटन को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। और हम सबको एक टाइम पर ऐसा लगा बस भारत खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये सब संभव हुआ इन खिलाड़ियों की वजह से। अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आखिर पी लक्ष्मी कौन थी, पर आपको पता है जब वो बैडमिंटन खेलती थी उस एरा में देयर वाज नो सपोर्ट सिस्टम और बिग मनी, पैशन ही सब कुछ हुआ करता था एक खेल के लिए। पी लक्ष्मी गोपीचंद इज द फर्स्ट वुमेन ओलंपियन। उन्होंने 1996 में सिंगल्स बैडमिंटन खेला था फर्स्ट, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और आपको पता है उनके कोच कौन थे? उन्हीं के फादर कृष्ण राव वॉज अ कोच वेन शी वॉन द जूनियर नेशनल ट्रिपल क्राउन बिफोर मूविंग फ्रॉम विजयवाड़ा टू हैदराबाद इन 1993। और उन्होंने ज्वाइन किया द्रोणाचार्य SMRF एट फतेह मैदान इंदौर स्टेडियम। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बताया था कि आरिफ ही पुलेला गोपीचंद के फर्स्ट कोच थे। शायद ये दोनों यहीं पर मिले होंगे, है ना? यही सोच रहे ना? हाँ, हो सकता है। इनके बच्चों की बात करें तो गायत्री और विष्णु, दोनों के नाम कितने ब्यूटीफुल है ना, भगवान विष्णु और भगवान गायत्री पर रखे गए हैं। इस एकेडमी में ये दोनों बिल्कुल एक प्लेयर की तरह और एक ट्रेनी की तरह ही खेलते हैं। और जब पुलेला गोपीचंद से पूछा गया कि आखिर उनके बच्चों ने बैडमिंटन को कैसे चुना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया था, बस वो ये बचपन से हमेशा देखते आए हैं, अपनी मदर को, अपने फादर को उन्होंने हमेशा बैडमिंटन खेलते हुए ही देखा है और उन्होंने खुद से इस गेम को चुना। आपको पता है वो दोनों इसी एकेडमी में हैं, यानी कि पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में। उन्होंने बताया इस एकेडमी में टोटल 50 बच्चे हैं और उन्हें हर बच्चे में अपना एक ट्रेनी नजर आता है और हर ट्रेनी में अपना बच्चा नजर आता है। सीनियर टीम के नेशनल कोच होने के नाते मैं जूनियर टीम के साथ बहुत ज्यादा नहीं रहता हूं, पुलेला गोपीचंद ने ये कहा था। लेकिन गायत्री और विष्णु अभी जूनियर टीम में खेलते हैं और मैं हमेशा से ऐसे प्रे करता हूं कि वो दोनों इस लाइफ में इस गेम के साथ इंसाफ करें और दोनों बहुत आगे तक जाएं। और आई एम प्रीटी श्योर कि जिसके फादर ने इतनी मेहनत की हो, अपना सपना पूरा ना होने पर दूसरों में उस सपने को देखा हो, उनके बच्चे भी यही चीजें सीखकर आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। आप भी अपने बच्चों को यही सिखाइए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हर चीज के साथ इंसाफ करना बहुत जरूरी है। मैंने एक कहावत सुनी थी कि हर काम को ऐसे करना चाहिए कि वो काम भी कहे कि वाह किसने किया था इस काम को, जैसे अभी मैं कर रही हूं। आपको इस कहानी को सुनाने के लिए मैंने पहले बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी और मैंने सोचा जब मैंने इतनी मेहनत की ही है तो क्यों ना आप सबको इसके बारे में बताऊं। चैंपियंस की कहानी जानना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब मैं हर रोज आपको एक चैंपियन की कहानी सुनाने वाली हूं, सिर्फ यहीं पर रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मैं मुस्कान अनसंग चैंपियन में आपके लिए कुछ नया लेकर जल्द ही हाजिर यहीं पर रहूंगी, लेकिन अभी के लिए बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि हर बात, हर चीज, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं।

इंसान को पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी अप्रोच बनाती है। किसी भी चीज को किस तरीके से बोलेगा ये डिपेंड करता है ना इस पर। वही वाली बात की ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, मेरा नाम है समर ऑन वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसा शो जहां हम कोशिश करते हैं कि दुनिया जहां से थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी समेट के लाएं और आपके सामने रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा साथ निभाएं पॉजिटिव रहने में, स्माइल करने में, यही तो चाहिए हमें। अप्रोच, किस चीज को किस तरीके से लिया जाता है। जैसा कि एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया कि ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, ये अप्रोच पर डिपेंड करता है ना। ये अपना नजरिया होता है जिसको हम नजरिया बोलते हैं। इन दो नजरियों की बात हमने हमेशा की है बचपन से लेकर के आज तक, स्कूल, कॉलेज, न्यूज़पेपर, इनफैक्ट आजकल न्यूज आर्टिकल्स, तमाम जगहों पर इनका जिक्र होता है। कई एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। इस केस में या इस एग्जांपल में एक तीसरी अप्रोच भी तो हो सकती है जिसके बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की, और वो अप्रोच है ये कि फर्क क्या पड़ता है ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं उसे पीऊंगा ना। वही वाली बात, मैं क्यों गुठलियां गिनूं, मुझे आम खाने हैं। एक ये भी अप्रोच हो सकती है, काम से मतलब, मैं जिस रास्ते जा रहा हूं वहां की सड़क कितने फिट की है वो मुझे नहीं जानना। क्या मेरी गाड़ी जितनी चौड़ी है उस सड़क पर चल सकती है, इतनी जानकारी मेरे लिए काफी है। इसको कुछ लोग कैजुअल अप्रोच या कैजुअल एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, बट मेरे लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। काम से काम, इसका एक बेनिफिट होता है कि आप बहुत ज्यादा उलझनों में नहीं फंसते हो। आपका क्लियर है विजन, आपको क्या करना है। प्यास लगेगी आधा ग्लास पानी पी लूंगा, प्यास नहीं लगेगी आधा ग्लास पानी रखा हुआ है। आधा भरा है आधा खाली है, इस बात पर लड़ाई लड़ने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, उतने में कुछ प्रोडक्टिव कर लेंगे हम।

शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे यकीनन, जो कि ज्यादा बहस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अब बहस शुरू होने वाली है तो वो तुरंत ही कट ऑफ कर लेते हैं, उससे साइड में निकल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। मेरी ऑफिस में ऐसा एक पर्सन है, राम उनका नाम है, नाम भी तो देखो कितना प्यारा है। आमतौर पर हर एक ऑफिस का यही रिवाज होता है कि आप जब बैठोगे, बातें करोगे, चाय पर, सुट्टे पर, थोड़े बहुत डिस्कशन हो जाते हैं जमाने के, इधर उधर के। किसी के कैबिन में जाकर के अगर आप बैठते हैं तो कुछ देर के लिए वो अपना काम छोड़ देगा और आपकी बातचीत होने लगेगी। राम के कैबिन में जब भी कोई जाता है, तीन या चार लोग जाएंगे, बैठेंगे, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक मिनट, घड़ी लगा के एक मिनट एंटरटेन करेगा और उसके बाद में अपने काम में लग जाएगा। आप बैठे हैं, बैठे रहिए, बात करते रहिए, आपकी बात का जवाब दे देगा, जरूरी है तो, नहीं तो वो अपने काम से काम, एंड दैट्स इट। मुझे इस इंसान का एटीट्यूड इतना पसंद है यार, कि उसको पता है कि उसके पास में 500 काम है करने को, वो बैठ करके ये लेजर टाइम के नाम पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फर्क होता है लेजर टाइम और प्रोडक्टिविटी को कम करने में, जरूरी वो भी है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, हर चीज की मात्रा का ध्यान रखें। वो जो मात्रा है वो हमको नहीं पता चलती कई एक बार। अप्रोच की बात हो रही थी, अप्रोच से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। बाइबल की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। एक गांव में गोलियथ नाम का एक राक्षस था। उस पूरे गांव में उसका खौफ ऐसा कि शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हर दिन वो उठा करके किसी ना किसी को ले जा रहा है और उससे पूरा गांव परेशान है। कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही चला आ रहा है। लंबे टाइम तक यही सब चलता रहा क्योंकि उस राक्षस से बचने का तरीका था ही नहीं किसी के पास में। वो इतना शक्तिशाली था, इतना विशालकाय था, उसके आगे कोई टिकता ही नहीं था। वो जब भी आता तो लोग भागने लगते उससे बचने के लिए। और फिर एक दिन डेविड नाम का एक भेड़ चराने वाला लड़का उसी गांव में आया। गांव वालों ने कहा डेविड से कि बेटा एक टाइम के बाद ना घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि यहां पर सेफ नहीं है, वो राक्षस है, वो खा लेता है। तो डेविड ने पूछा कि आप लोग इतना डरते क्यों इस राक्षस से। लोगों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि आप कितनी ही कोशिश कर लो उसको मार नहीं सकते, आप विशालकाय है, मेरे शरीर के साइज का तो उसका सिर्फ और सिर्फ हाथ होगा। डेविड ने कहा सही कह रहे हो आप, वो राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है कि बड़ा होने की वजह से हम उसको मार नहीं सकते, बल्कि हकीकत तो यह है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया हुआ निशाना चूक ही नहीं सकता। आज अगर वो छोटा होता, आप उस पर निशाना लगाते, चूकने का चांस था। आपको पता है डेविड ने उस राक्षस को किससे मारा? गुलेल से। राक्षस वही था, लोग भी वही थे, सिर्फ और सिर्फ डेविड की अप्रोच अलग थी, सोच अलग थी, नजरिया। कितनी बड़ी चीज होती है ये नजरिया जो है, ये इंसान की पर्सनैलिटी में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जिस तरह से जब हम काला चश्मा पहन लेते हैं तो हमें हर तरफ काला काला दिखता है, लाल रंग का चश्मा पहन लेते हैं लाल लाल दिखता है, ठीक वैसे ही हमारा जो नजरिया है ये हमारे दिमाग पर लगा हुआ चश्मा है। हमें कैसा दिखेगा ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। हम अगर जो नेगेटिव सोचेंगे तो हर तरफ निराशा, दुख, सेटिस्फेक्शन किसी के अंदर नहीं दिखाई देगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें आसपास लोग खुश दिखाई देंगे, सब सेटिस्फाइड है। कभी ऐसा नोटिस किया है आपने कि आपके साथ में ज्यादा बुरी चीजें तभी होती हैं जबकि आप थोड़ा सा मेंटली ऐसे सैड होते हो। आपने एक बार सोच लिया यार सब कुछ ठीक नहीं हो रहा यार, फिर ज्यादा बुरी चीजें होती हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा बुरी चीजें तब हो रही है, बस मुद्दा यह है कि तब छोटी सी ही गलत चीज को आप बहुत बड़े तरीके से ले लेते हो, आप बहुत बड़ा बना देते हो। तो अभी हम पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ में इस दुनिया को देखें या फिर नेगेटिव अप्रोच के साथ में। अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हर इंसान हमें अच्छा लगेगा, हालांकि हर एक इंसान अच्छा है नहीं इस दुनिया में, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई एक खूबी तो हम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन वहीं अगर जो नेगेटिव चश्मा पहना हुआ है तो हम बुराइयां ढूंढते रहेंगे लोगों में, इसका ये गंदा, इसका ये गलत, इसका वो गलत। तो अपने आप को बदलने से पहले अपने इस चश्मे को बदलते हैं हम। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, एक ऐसा पॉडकास्ट शो जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिल सके, और अगर जो थोड़ी सी भी होप मिली है ना तो बाकी का काम आपको करना है, इस होप को थोड़ा सा और बढ़ाना है, स्प्रेड करना है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, स्टे ट्यून्ड, अगले एपिसोड में मिलते हैं।

0: हाँ मुड़ जा गायब हो जा गायब हो जा।
1: You are listening to Startup Strategies with Ajit Nigam.
2: नमस्कार, रेडियो वॉक टॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अजीत निगम है और मैं यहाँ पे आपके साथ बिजनेस की बातें करने आया हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करने आया हूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि अपना बिजनेस कैसे करें, क्या करें, बहुत सी गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ ना हो इसलिए हम क्या स्टेप्स लें। तो इस बात को मैंने 5-6 पार्ट्स में बांटा है और मैं आपसे अबाउट 7-8 पार्ट्स में बात करूंगा, एक एक पहलू को लेते हुए चलेंगे। पहला पहलू है हम अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को इंटरनली देखें। जब तक हम बिजनेस जरूर करना चाहते हैं लेकिन जब इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, बस हम कुछ भी कर लेते हैं। हम बात करते हैं एक अपॉर्चुनिटी की, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है? कि एक क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इसीलिए अपॉर्चुनिटी है। आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं अपने आप की तरफ को झांकना, अपना एक तरह से आप आत्मनिरीक्षण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हमें आसपास की अपनी दुनिया को देखना होता है किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो वो मेरे साथ मैप करती है कि नहीं करती है। जब तक हमने इस बात को नहीं देखा तब तक वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। और थर्ड एलिमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है हमारे में स्ट्रेंथ आ गई, हम एक आसपास एक एनवायरमेंट देख रहे हैं जहां पे हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एक्ट कर रहे हैं उसके लिए? तो तीन कॉम्पोनेंट हुए। एक पहला कॉम्पोनेंट हुआ एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं कि आसपास क्या है, ये दोनों चीजें देख लें फिर हम एक्ट करना शुरू करते हैं। तो जो हम इंटरनल पार्ट की हम बात करते हैं उसको बिजनेस के लैंग्वेज में हम उसको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं। फिर क्या हमारे में वो मोटिवेशन है जिसको हम एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन कहते हैं, और हमारा बिहेवियर क्या है। ये तीन एलिमेंट मिलके हमारी सिर्फ थिंकिंग का सेट बनाते हैं। और उसके बाद और चीजें होती हैं जैसे इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है, इंडस्ट्री की स्टेटस, कि छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों का क्लस्टर है, क्या वहां पे गैप है, क्या आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस होते रहे तो उन मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन क्या है, बिना कंपटीशन के आप बिजनेस में जाओगे तो परेशानी तो होगी। और बिना वैल्यू जाने हुए, वैल्यू किसके लिए, वैल्यू उस कस्टमर के लिए। जब वो हम वैल्यू समझ लेंगे तो हम उस पर एक्ट कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को यानी अपने आप को देख के, इंडस्ट्री की कंडीशंस के देख के हम एक्ट करते हैं, तभी हम उसको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, सेम कंडीशंस दूसरे के लिए शायद ना हो, इसीलिए अपने आप के अंदर झांकना, उसके बाद आसपास के अपने एनवायरनमेंट से मैप करना और फिर एक्शन लेना, उसको हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जब हम बात करते हैं अपने माइंडसेट की तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, जिसको हम मैनेजमेंट की भाषा में और स्टार्टअप्स की भाषा में हम अचीवमेंट कहते हैं। क्या आप उस अचीवमेंट के लिए आप हद से ज्यादा जाने के लिए तैयार हो? आपका दिमाग, आपका दिल उस अचीवमेंट के लिए तरफ आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज स्पेशली बिजनेसमैन के लिए आती है कि इंडिविजुअलिज्म। वैसे तो कहा जाता है कि इंडिविजुअलिज्म गलत बात है, लेकिन हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि आप वो इंसान हैं, सारा डिसीशन, सारा दारमदार आपके ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते इस इंसान ने काम नहीं किया इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं, द बक स्टॉप्स एट यू एंड thereby यू नीड टू टेक दोस डिसीशंस। दैट इज व्हाई individualism becomes more important than collectivism. Collectivism essentially talks about a scenario in which we take the team together. Here, you're the leader, not the boss. There is a distinction between leadership and being a boss. अगर आप अपने टीम को साथ

0: में आगे लेके बढ़ सकते हो और एक डायरेक्शन दे सकते हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग आपने देखा अपने आसपास, उनको कंट्रोल चाहिए होता है। ये कंट्रोल दो तरह से हो सकता है, कोई बाहर से आपको कंट्रोल करता है या कंट्रोल आपके अंदर होता है। तो जब एक एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं उस इंसान की जिसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत जरूरी है, जब तक अंदर नहीं देखे जाएंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको एक मेंटल लेवल पे अपनी गोल सेटिंग करनी होती है। कोई और आपके लिए गोल नहीं सेट करेगा, बिजनेस आपका है, आप एनवायरमेंट देख रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो। बहुत सारे रिकमेंडेशंस आपके पास आएंगे, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? कोई और नहीं, सिर्फ आप। इसलिए कई बार उल्टी दिशा में जाना, दुनिया आपको कुछ और कह रही है लेकिन अब आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप आगे सोच सकते हो। इसलिए एज एन एंटरप्रेन्योर, इंडिविजुअलिज्म एंड लोकस ऑफ कंट्रोल बिकम क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। Once these are critically important, there are things through which you have to do lot of self-monitoring. ये हम बात कर रहे हैं internal चीजों की, जिसमें हमारा locus of control रहे, individual रहे। और क्या business बिना optimism के हो सकता है? बहुत परेशानी आएंगी मेरे दोस्त, challenges आएंगे, हमें आगे बढ़ना है और हम आगे तभी बढ़ सकते हैं। तो यही सब चीजें हम बात करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन कैसे होता है, वो हम कुछ देर बाद में आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, अभी आपका मुझे इंतजार रहेगा ब्रेक के उस पार।
1: वॉक टॉक, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं हर्षित मलिक को ओनली ऑन टॉक रेडियो
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन बॉक टॉक रेडियो शो। मैं हर्षित मलिक फिर आपके साथ अपने प्रोग्राम आउटलुक मैटर्स पे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी दो नए टॉपिक्स के ऊपर। एक हमने बात करी आपका अपना एक्स फैक्टर जो आप सब में छुपा होता है, और दूसरा हमने बात करी थी इससे पहले वाले शो में कि किस तरीके से अगर हम लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो किस कैसे एक अच्छी कंपनी हमारी ग्रोथ को डिटरमाइन करती है। तो अब हम बात करते हैं अपने दुखों की। आप दुख क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग अपने प्रेजेंट में नहीं रहते। तो अब हम यहां से बात करेंगे कि कैसे प्रेजेंट में ना रहना हमारे दुखों का कारण बनता है और प्रेजेंट में क्यों रहना चाहिए। हमारी सबकी जो जिंदगियां हो गई है ना, वो एक रेस बन गई है। सुबह उठने से लेकर मॉर्निंग वॉक से लेकर जॉब पे पहुंचने तक लेकर हर चीज एक रेस के तहत भागती है। अपने लिए समय नहीं दिखता, क्योंकि एक प्लान होता है जिस प्लान पे हम सब लोग भाग रहे होते हैं। प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्स होते हैं। चलो ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। हमारी ना फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रेंज होते हैं। फ्यूचर में हम लोग वो हर चीज करना चाहते हैं जो हमारे को एक अलादीन का चिराग करके दे सकता था। पुराने जमाने में कहानी में सुना था ना, अलादीन का चिराग, चिराग को घिसो, अलादीन का चिराग, अलादीन बाहर निकलेंगे और पूछेंगे और मेरे शहंशाह मांगिए, आप क्या मांगते हैं मैं पूरा करूंगा। आज वो अलादीन का चिराग ना हम सबका दिमाग बन गया है, क्योंकि दिमाग है जो सब बनाता है, क्रिएट करता है और पूरा भी कर देता है, और हम उस पर ट्रेवल करके भी आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ना। चलिए पास्ट की भी बात कर लेते हैं। हम सब लोग पुराने में क्या हुआ है, पुराने में क्या बीता है, क्या लाइफ ने हमें दुख दिया है, झटका दिया है, हम लोगों की ना जिंदगी उसमें अटक के रह जाती है। लाइफ जीना मांगती है, गिल्ट नहीं मांगती, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं मांगती, विजन मांगती है। जैसे कि किसी की लाइफ में पास्ट में कोई जॉब चली गई, या उसने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करी उसमें उसको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, या किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ किया बट उसकी शादी कहीं और हो गई। प्यार, मोहब्बत, इश्क, यस यस मैं मानता हूं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कितनी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ हम उसके लिए सरेंडर कर देते। कुछ लोग तो सुसाइड भी कर देते, कुछ लोग हाथ काट देते, ये देखा होगा ना मूवीज में, बट रियल लाइफ में भी भाई उतना ही होता है। मैं तो देखता रहता हूँ ना, सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्योंकि जिंदगियां अटक जाती हैं एक्सपेक्टेशन से। पास्ट की गलतियां या पास्ट में हुए नुकसान को, मेरे परिवार में कोई मर गया, उसके ऊपर घर डिपेंड था, वो हमारे लिए इतना कुछ करता था, मैं उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही, आ नहीं सकता, इन्होंने हमारे घर को संजो के रखा हुआ था, हो गया। आपके घर में तो क्या, हर किसी के घर में यही सब होता है, लाइफ चलती रहती है, बट उसको चिपक के बैठ नहीं जाती है, डिप्रेशन का माहौल नहीं बना देते, हमारे को इन सब चीजों से बाहर आना होता है। कड़ियां रोकती हैं पुराने फियर्स, पुराने फेलियर्स, यार पास्ट में ऐसा होता दोबारा ऐसा हो जाएगा ना। व्हाट हैपेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, माइंड जो है ना वो हमेशा खेल रहा होता है पास्ट में और फ्यूचर में। गौर करो आप सब लोग अभी भी मेरी बात सुनते हुए, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपका ध्यान है। जैसे इससे ध्यान हटेगा ना, तो जब आप अपने नॉर्मल पैटर्न में आओगे तो आपको या तो पास्ट में कुछ याद आएगा या फ्यूचर में क्या होने वाला है, बस ये एल्गोरिथम चलता रहता है दिमाग में। तो दिमाग एक मशीन बन जाता है क्रिएशन की, पहले वो पुराने की पकौड़ियां बनाता है, फिर आगे के कबाब बनाता है, खा तो हम पाते नहीं क्योंकि बनता ही रहता सब कुछ चीजें। हम लोग खाएंगे कब, वो बन भी जाते हैं उड़ भी जाते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है आज का समय, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बट हम हमेशा आगे की फ्यूचर की चीजों को ही सोचते रहते हैं। फ्यूचर में ये गाड़ी ले लेंगे, ऐसा हो जाए, वो वहाँ पे वो करेगा तो मेरी ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी, वो बॉस ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो मेरा सब कुछ गलत हो जाएगा, वो भगवान करे मेरी लॉटरी लग जाएगी या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो पीछे ऐसा, बस इन्हीं सब में दुनिया अटकती है। यू हैव टू गो बियॉन्ड टू इट, टू लिव समथिंग, टू ड्रीम समथिंग। Now, when you start dreaming that in your day-to-day life, तो life ना बहुत irregular हो जाती है, imbalance हो जाती है। स्टे बैक, एक डीप सांस लीजिए, खुद को रोकिए। उस डीप सांस को लेते हुए आपको एहसास होगा कि आप एग्जिस्ट करते हो। थोड़ी देर के लिए अगर आप फ्यूचर को और पास्ट को साइड में रख दो तो जो बचेगा वो आप होंगे, और उससे तो आपकी मुलाकात ही नहीं होती है, क्योंकि हम तो इल्यूजन बातें जो दिमाग में इमेजेस बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं, थॉट्स आते हैं, उन्हीं को सच मान लेते हैं और वो हमारा और पीछा करते हैं, या तो हम उनसे दूर भागते हैं, वो हमारा और पीछा करते हैं। ये हमें छोड़ते नहीं, ये हमें एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एक बार ना सच का सामना कर लो, हाँ मैं मुसीबत में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, दिक्कत है, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, जब होगा तब की तब देख लेंगे, कर लेंगे। हर दिन मरने से अच्छा है एक बार मर लो। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लक्ष्मी अग्रवाल जी, जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था हमारे देश में, बहुत ही घिनौना कार्य हुआ था, और ऐसी बहुत सारी लेडीज पे हुई ये अटैक हुआ था, तो लक्ष्मी अग्रवाल ने उस इंसिडेंट से अपने आप को रोका नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ को आगे खींचने को सोचा, उन्होंने एक मुद्दा लिया लाइफ में कि मैं इसके लिए फाइट करती हूँ, कोर्ट तक गई, उन्होंने एसिड की बिक्री को रुकवाया, उन्होंने औरतों की इस दर्दनाक पीड़ा को दुनिया के सामने रखा, लोग समझे, लोग उस दर्द के लिए खड़े भी हुए, वहां से उन्होंने लोगों के लिए एक मार्गदर्शन रखा, उनके जैसी परेशान लड़कियों से कि उनको काम मिल सकता है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने पास्ट को लेके बैठी नहीं रही। तो हमें अगर आगे बढ़ना है ना, तो हमें अपने प्रेजेंट को सुधारना नहीं है, प्रेजेंट को जीना है। अरे जब मेरे कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार हम रोज परेशान आते हैं, तो मैंने कहा आज प्रेजेंट में जीना, मोबाइल बंद करके आना। तो जब वो अपने घर से ऑफिस तक आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने ना बहुत सारी चीजें देखी, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला, अरे हर्षित तुझे पता है आज हम जिस कैनाल से रोज निकलते थे वहां ना बहुत सुंदर सुंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, चीजें लिखी हुई है, हमने कुछ लड़कियों को देखा जो उस मैदान में रोज खेलती है, मैं 25 साल से उस रूट से निकल रहा हूँ पर मैंने कुछ नहीं देखा, मैं भी टेंशन भूल गया उस टाइम मेरा। थैंक यू सो मच, मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बार बार बात करूंगा, मेरे कुछ वीडियोस भी इससे रिलेटेड यूट्यूब आउटलुक मैटर्स मेरे चैनल पे, आप लोग देखना, उसे आपको और बातें पता चलेंगी, बट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिव इन द प्रेजेंट, फील इट, लेट मी नो, विल डिस्कस मोर। सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो को, मेरे आउटलुक चैनल को, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली, यानी कि आपका देवानंद जूनियर। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूं गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक दिन जब बारिश हो रही थी तो एक 15 साल का लड़का जिसका नाम जॉन गॉडार्ड था, वो अपने घर में अपनी किचन टेबल पे बैठा लॉस एंजलिस के अंदर, और उसने एक येलो कलर का पैड लिया जिसके टॉप पे उसने लिखा माई लाइफ लिस्ट, और उस लिस्ट के नीचे उसने 127 गोल्स लिखे। जी हाँ, 127 गोल्स उसने लिखे। हम कहेंगे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लोग ऐसे गोल्स लिखते ही रहते हैं, खास तौर पे बच्चों में तो ये बहुत शौक होता है, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में उन 127 में से मोर देन 109 यानी 109 से भी ज्यादा गोल्स पूरे कर लिए। अब आप कहेंगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग गोल्स लिखते हैं उन्हें पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ये सुनके तब आश्चर्य होगा जब आपको पता चलेगा कि जो गोल्स उसने लिखे थे वो कोई सिंपल या इजी गोल्स नहीं थे। उनमें ऐसे ऐसे गोल्स थे जो कहते थे कि मेरे को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स पर चढ़ना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उनको सोर्स से लेकर उनके एंड तक एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े, जो सबसे तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट्स हैं, हवाई जहाज हैं, उनको चलाना है, यानी ही वांट्स टू बिकम अ पायलट आल्सो, मेरे को 1 मील 5 मिनट से भी कम समय में भागना है, और मेरे को पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये जो इंसान था, ये जो लड़का था, इसका नाम था जॉन गॉडार्ड, और बाद में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसको रियल लाइफ इंडियाना जोन्स का खिताब दिया। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनको ही हैज बिकम एक्चुअली, ये जॉन गॉडार्ड जो थे बाद में वर्ल्ड रिनोन्ड एडवेंचरर बने, एक्सप्लोरर बने, ऑथर बने, लेक्चरर बने। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत से लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, 2 किताबें भी लिखी। 2013 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो हम सबको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम क्या कर सकते हैं अगर हम करने पर आए तो। मैं यहाँ पर आपको उनके गोल्स की लिस्ट नहीं बताने वाला क्योंकि वो बहुत लंबी है और मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, वो आप गूगल पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। आप जॉन गॉडार्ड टाइप कीजिए, आपके सामने उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो 127 गोल्स उन्होंने लिखे थे। आप कहेंगे हम सब लोग अब गोल्स लिखते रहते हैं, देखिए लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। आप गोल्स अपने मन में रखते हैं या उसे लिखते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग अमेरिका एक शो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी सबकी आदत होती है कि नया साल आते ही हम लोग नए नए गोल्स बनाते हैं, रिजोल्यूशन, हमने उसको नाम दिया है अपना कि इस साल मैं ये चीज अचीव करूंगा, इस साल मैं हर रोज जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, या खाना ठीक से खाऊंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, व्हाटएवर इट इज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 15 फरवरी के आसपास यानी हार्डली आफ्टर 45 डेज उन्होंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने रिजोल्यूशन बनाए थे, तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ अपने मन में सोचकर रिजोल्यूशन बनाए हुए थे कि हमने ऐसा करना है इस साल, उसमें से सिर्फ 4% पीपल यानी 4% लोग ही ऐसे थे जो कंटिन्यू कर रहे थे, बाकी 96% लोग छोड़ चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स नोट डाउन किए हुए थे यानी जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने इस साल ऐसा ऐसा करना है, यानी ठीक वही काम जो जॉन गॉडार्ड ने किया था 15 साल की उम्र में जब उसने 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी, तो जिन लोगों ने भी लिख रखे थे अपने गोल्स को, उसमें से मोर देन 46% वर स्टिल कंटिन्यूइंग। जी हाँ, 46% लोग उस समय भी कंटिन्यू कर रहे थे जो गोल्स उन्होंने लिखे हुए थे। तो रिसर्चर्स शॉक्ड रह गए जानकर कि आपके सिर्फ किसी गोल को लिख लेने से उसके पूरे होने की संभावना 1100% तक बढ़ जाती है। इट इज वेरी पावरफुल थिंग। तो एक बहुत सरल टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप अपने गोल्स लिखें, पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में लिखें, और उनको लिखने के बाद उसकी एक कॉपी आप अपनी पॉकेट में जरूर रखें और दिन में कम से कम 3 बार उसको जरूर पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि एक फोकस्ड लाइफ को जीने का क्या मतलब होता है। एक्चुअली अगर आपने गोल्स लिख भी दिए और आप दोबारा उसको खोलकर नहीं देखते कई महीनों तक, तो उसके लिखे या ना लिखे होने का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं जाता। हम अगर किसी गोल को लिखते हैं तो हमें उसको दिन में कम से कम 3 बार उसे खोलकर देखना है और उसे पढ़ना है। उससे होगा क्या कि आप तीर की तरह से फोकस रहोगे उस गोल की तरफ जिधर आपको जाना है, और बाकी वो सारी अनवांटेड चीजें जो आपको खींचती रहती हैं और आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को खाती रहती हैं, उनसे आप बचते रहेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जॉन गॉडर्ड की लाइफ से हम लोग इस इंस्पिरेशन को लें, हम ये देखें कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है, मैं चाहूंगा आप लोग गूगल पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एक दो पेज में आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई इंसान इतने टफ गोल्स को अचीव कर सकता है अपनी एक ही जीवन काल में, तो हमारे तो जो गोल्स हैं वो इतने टफ भी नहीं है, बहुत आसान गोल्स हैं हमारे। उसको देखकर आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी और आप पूरी ताकत से अपने गोल्स पे लग जाएंगे। आपको बहुत आशा मिलेगी, बहुत होप मिलेगी कि अगर वो ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और होप इज एक्चुअली प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स द अचीविंग ऑफ गोल्स। बातें जारी रहेंगी, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं बोल रहा हूँ गिरेंद्र भारती, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर.

खुशियाँ कैसे आती हैं जिंदगी में? हमारी चॉइसेस से। आप यकीन मानिए, एक सही लाइफ पार्टनर चुनना, एक सही करियर चुनना, एक सही शहर चुनना, एक सही जॉब, एक प्रोफेशन, एक सही सब्जेक्ट बचपन में, सही दोस्त, कितनी सारी चुननी की चीजें होती हैं जो चुननी होती हैं हमें जिंदगी में। फिर बाद में म्यूचुअल फंड्स चुनना, शेयर्स चुनना, स्कीम्स चुनना, टर्म प्लान्स, ओह माय गॉड। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी स्किल जो हमें है वो होता होना चाहिए चुनने का स्किल, टू चूज द बेस्ट। वो कैसे होता है वो अगली कहानी बताएगी। मैं हूं कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। यहाँ पर कहानियां सुनाते हैं, मतलब मैं कहानियां सुनाता हूँ और कई लोग ऐसी चीजें बताते हैं जो आपकी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना दे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है द ओल्ड कारपेंटर। अ कारपेंटर जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, अब बूढ़ा हो चला था, वो रिटायर होना चाहता था। काफी वक्त तक उसने कई खूबसूरत घर बनाए, लकड़ी के घर जिनके अंदर कमाल की कारीगरी होती थी। लोग उसके काम के फैन थे। एक एक बारीक से बारीक डिटेलिंग जो वो घर के लिए करते थे, जो वो घर में रखते थे, वो देखकर उस घर के जो मालिक थे वो खुश हो जाते थे। उन्होंने कई लोगों के घर बनाए और हर घर में लोग सुकून से रह रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं कि भाई आपकी वजह से ये घर इतना खूबसूरत है। उस कारपेंटर का जो बिल्डर था, जिन कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ वो काम करते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत खुश था कि यार जब तक ये है तब तक बढ़िया बढ़िया घर बनेंगे। लेकिन फाइनली उस कारपेंटर ने डिसाइड कर लिया कि वो अब नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो रिटायर होना चाहते हैं, चैन की जिंदगी चाहते हैं। अब बस और काम नहीं यार, बुजुर्ग हो गया हूँ, अब अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, उनको टाइम दूंगा, तो मुझे जरा इस काम से अब विदा कर दो। ये बात उन्होंने अपने मालिक को, उस कॉन्ट्रैक्टर को बताई। ये बात तो साफ थी कि कॉन्ट्रैक्टर को ये बात पसंद नहीं आनी थी। तो उसने कहा कि यार एक काम करो, एक घर और बना दो, फिर तुम्हें इजाजत, छुट्टी, तुम जहां जाना चाहो जाना। ये बात कारपेंटर को पसंद नहीं आई। उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हारे यहाँ काम किया, हर चीज तुम्हारे हिसाब से की, जितना पैसा दिया खुशी खुशी ले लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ, उसमें भी एक घर और बना दो। ये तो वैसा ही हुआ ना जब आप अपने ऑफिस के टाइमिंग पर निकलने को तैयार हो और बॉस आके कहते बस 5 मिनट और। गुस्सा आता, नाराजगी होती, वैसी ही उस कारपेंटर को थी। नाराज तो थे लेकिन काम तो करना था, मजबूरी थी। इतने साल जिसको बॉस कहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कैसे यूं बीच मझधार में छोड़ दे, एक घर बनाना है बना दे। तो उन्होंने वक्त लगा के वो घर बनाया। लेकिन कमाल की बात थी कि इस बार कारपेंटर ने ना दिल लगा कर नहीं बनाया, वो वाकई गुस्सा थे इस बात से। और जब आप नाराज हो जाते हो तो फिर वो वर्कमैनशिप चेंज हो जाती है, आप इन्फीरियर मटेरियल यूज करते हो या आप इन्फीरियर टाइप की काम करने लगते हो, क्वालिटी गिरा देते हो। वैसा ही कुछ उस कारपेंटर ने किया। वो अपने करियर का आखिरी घर बना रहा था, वो भी इतना खूबसूरत नहीं बनता। एंड दैट वॉज रियली एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज करियर। कारपेंटर ने कम्प्लीट कर लिया घर और अपने एम्प्लॉयर उस कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि मैंने कर लिया है, आकर देख लो। वो आया, उसने घर को देखा, जाने वाला था जब उस घर से, निकलने वाला था, तब उसने कहा कि ये लो, ये दरवाजे की चाबी, यानी कि घर की चाबी, ये तुम्हारा घर है, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है कि तुमने इतनी जिंदगी भर जो मेरी इस काम को संभाला है, जो मेरी रेपुटेशन बनाई है, उसके लिए एक घर तो क्या है, ये तुम्हारा हुआ। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उस कारपेंटर के लिए, लेकिन उतना ही बड़ा शौक भी, समझे ना क्यों। सरप्राइज इसलिए क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इस कॉन्ट्रैक्टर को उसकी इतनी वैल्यू है कि वो उसे घर गिफ्ट करेगा, और शौक इसलिए क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि ये घर उसे ही मिलने वाला है और उसने इसी की क्वालिटी गिरा दी। बहुत ही बुरा हुआ। अब उसे पूरी जिंदगी उस घर में रहना पड़ेगा जिस घर की कमियां उसे मालूम है, और वो जानता है कि ये घर क्यों खराब है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि उसने खुद ही बनाया था। कारपेंटर की तरह ना हम भी अपनी जिंदगी को बड़े डिस्ट्रैक्टिव वे में बनाते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, वी रिएक्ट रादर देन टेक एक्टिंग, वी रिएक्ट। हम अपना बेस्ट देना नहीं चाहते, कम देना चाहते। ये बहुत लोगों में आदत होती है, उन्हें लगता है अरे बस इतना ही ठीक है ना यार, इतनी तनख्वाह मिलती है अपन को, क्यों ज्यादा करेंगे, है ना। होते ना, कलीग की तरफ मत देखो, अगर होते हैं तो मन ही मन मुस्कुरा लो बस, गिव योर बेस्ट। ये मैं कहना चाहूंगा, आपका एटीट्यूड और आपकी चॉइसेस जो आप आज करते हैं वही आपका कल आने वाली जिंदगी बनाती है। योर एटीट्यूड एंड चॉइसेस यू मेक टुडे विल बी योर लाइफ टुमारो। बिल्ड इट वाइजली, सोच समझ के वो चीजें चुनना जो चुनने वाले। और अभी क्या सुनने वाले हो? वॉक टॉक रेडियो। लौटूंगा मैं यहाँ पर एक और कहानी लेकर। आप सुन रहे हैं कहानी वाला, कहानी वाले रजत के साथ कहानियां सुनाता हूँ। सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। Now that we're not together, dancing don't feel the same.

0: This is Bookiepedia, only on Walk Talk Radio.
1: Hello everyone, आप सुन रहे हैं Walk Talk Radio और मैं हूँ गिरेंद्र भारती. इस शो के अंदर हम कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे, ऐसी किताबों के बारे में बात करेंगे जिसमें दी हुई शिक्षाओं पे अमल करके या उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं. बुकीपीडिया में जो बुक आज मैं ले रहा हूँ उसका नाम है What to say when you talk to yourself, यानी क्या बोलें जब आप खुद से बात करें. इसके राइटर हैं डॉक्टर शेड हेल्मस्टेटर PhD. इन्होंने 20 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में, या आप उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं. और इनकी किताबें 70 से ज्यादा देशों में पब्लिश हुई हैं. ये 1200 से ज्यादा रेडियो शोज और टीवी शोज के अंदर आ चुके हैं और ओपरा विनफ्रे जैसे प्रतिष्ठित शो के अंदर ये 2 बार प्रेजेंट हो चुके हैं. तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के बारे में जो आपको जिंदगी के एक नए सच के बारे में बताएगी, जिसका नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ. ये किताब लेने का मेरा एक खास रीजन था, क्योंकि ये वो किताब है जब भी मेरे से कोई काउंसलिंग के दौरान पूछता है या अपनी किसी समस्या के बारे में बताता है और मैं सीधे सीधे अगर उसकी हेल्प नहीं कर सकता तो मैं उनको बोलता हूं कि आप इस किताब को पढ़ लीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी. जी हाँ, ये बुक कुछ है ही ऐसी. जिस समय डॉक्टर शेड काम कर रहे थे ह्यूमन माइंड की गुत्थियों को सुलझाने में, तो उन्होंने पाया कि जितनी भी थ्योरी रिसर्च और सारी चीजें उन्होंने देखी, एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट था जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया था. और वो फैक्ट ये था कि आप जो हर समय सोचते हैं आप वही बन जाते हैं. यानी जो आपकी थॉट्स हैं, जो आप लगातार आपके माइंड में जो रिकॉर्डिंग चलती है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर होता है. इनका कहना है कि जब हम जन्म लेते हैं उसी पल से हम लोग जो भी सुनते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं, हमारे भाई बहन हमसे जो कहते हैं, हमारे माँ बाप हमसे जो भी कहते हैं, हमारे टीचर्स हमसे जो दोहराते हैं, हम टीवी में जो देखते हैं, हम जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, ये सारे के सारे संदेश जिस तरह से किसी कंप्यूटर के CD रोम में हम लोग भर देते हैं या रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक उसी तरह से ये हमारे ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं. ये उसको एक पर्टिकुलर शब्द देते हैं जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग या प्रोग्रामिंग. तो डॉक्टर शेड हेल्मस्टेटर का कहना है कि हम लोग बचपन से ही प्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं. इनमें से कुछ प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं और कुछ प्रोग्राम्स खराब होते हैं. अगर वो प्रोग्राम्स अच्छे हैं, यानी वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, यानी वो ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपको अपनी जिंदगी में उस तरफ लेके जाती हैं जो आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड टू हैव देम, उनको रखिए आप संभाल के. लेकिन अगर वो ऐसे प्रोग्राम नहीं है तो डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है. वो ये यहां तक बताते हैं कि लगभग 77% ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स वी हैव जब तक हम बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ये 77% ऑफ प्रोग्राम्स निगेटिव होते हैं या काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, या हमको कहीं से भी हेल्प नहीं करते, बल्कि हमको हमारे गोल्स से, उन जगहों से जहां हम जाना चाहते हैं, उनसे दूर कर देते हैं. तो इस अवस्था में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. मैं एक और किताब में ये चीज देख रहा था, उसमें उन्होंने एक रिसर्च दी थी कि जब तक आप 21 ईयर्स के होते हैं, 21 साल की उम्र के होने तक, आप 1,50,000 बार ये सुनते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली, नो यू कैन डू, नहीं तुम नहीं कर सकते. और सिर्फ 5,000 बार आप ये सुनते हो यस यू कैन डू इट. तो आप सोच सकते हैं कि जो आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कि नो यू कैन डू, वो कितना बड़ा डिफरेंस है आपकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से जो कह रही है यस यू कैन डू ओनली 5,000 टाइम्स टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स. जब मैंने ये पढ़ा तो आई वॉज रियली शॉक्ड. और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि हम जो भी सुनते हैं, हम जो भी करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी हम किताबें पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ हम टाइम बिताते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या वो हमको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हैं या वो हमको निगेटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हैं. क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है लगातार, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है, उसको इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं होता कि जो आप सुन रहे हैं वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है, पॉजिटिव है या निगेटिव है. उसका सिर्फ इतना काम है कि जो भी वो इनपुट लेता है वो उसको रिकॉर्ड करता है और आगे के यूज के लिए आपको सौंप देता है. और अगर ये चीज बाई चांस रिपीट होती चली जाए तो ये आपका एक परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाती है और आप इसी के थ्रू बिहेवियर करना शुरू कर देते हो. तो दोस्तों बातें जारी रहेंगी क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा इस किताब में डॉक्टर शैड हेल्मस्टेटर हमें क्या क्या बताते हैं, किस तरह से हम अपने इस निगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में बदल सकते हैं और कैसे हम इस प्रोग्रामिंग को चेंज करके अपनी लाइफ में जो भी हमारे गोल्स हैं हम उनको पा सकते हैं। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं वीरेंद्र भारती, ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।
0: कुछ किताबें जिंदगी बदल देती हैं, ऐसी ही किताबों के बारे में सुनिए बुकीपीडिया में, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।

हाय, मैं हूं अंशुल भट्ट, फाउंडर एंड सीईओ फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बेसिकली स्टार्टअप, जब हम कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है किसी भी काम को करने में, और कुछ इनोवेशंस की वजह से किसी एंटरप्रेन्योर की कुछ काम करने के तरीके से अगर सोसाइटी की वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो बेसिकली एक स्टार्टअप होता है। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट में, किसी भी चीज में, तो ऑब्वियसली वो वहां से अर्न भी करता है, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हमने देखा है क्या, इतने टाइम में इंडिया में ही काफी स्टार्टअप सब आ रहे हैं, 2014-13 के बाद से लेके कंटिन्यूस स्टार्टअप्स ग्रो कर ही रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, और खास तौर पे सर्विस सेक्टर में तो स्टार्टअप की एक तरीके से अब बाढ़ आ रही है। लोग अलग अलग तरीके की सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अपने जो उनके आइडियाज हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि हम इस सेक्टर में ऐसे करके काम करेंगे, तो उसको ग्रो करवा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो हर किसी का कभी ना कभी सपना रहता है कि वो कुछ बड़ा करे, वो कुछ स्टार्ट करे जिसके वजह से लोग उसको याद रखें, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, और इसी मोटिवेशन के साथ हर कोई कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करता है। लेकिन काम स्टार्ट करना एक अलग है, और उस काम को एक बड़े लेवल पे ले जाना ये एक पूरा ही अलग, मतलब अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक शॉप स्टार्ट कर दी, कुछ भी ऐसा कि जिससे आपको अर्निंग हो रही, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप को आप उस लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल का, नहीं लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल का फायदा हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बहुत सारे लोग जो आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे फायदा ले पा रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, ये इसने ये स्टार्ट किया और इसका ये आइडिया था और ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। तो इस पूरे जो जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज तो अगर मैं, क्योंकि मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने 2019 में स्टार्ट किया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में, क्योंकि मैं पहाड़ों से ही बिलोंग करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में पास आउट होने के बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को दिखा और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिखी, वो उत्तराखंड में ट्रैवल एंड टूरिज्म था, और मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाके कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा कि जिस फील्ड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई काम नहीं कर रहे हैं या स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ट्रैवल या टूरिज्म में, उत्तराखंड का कोई अपना ब्रांड हो, ऐसा ब्रांड हो क्या, अगर कोई भी उत्तराखंड जा रहा है तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज चले, तो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी थी राज्य के लिए, अपने ही होम टाउन के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने 2019 में जनवरी में स्टार्ट किया कंपनी जिसका नाम था फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और जो इसकी थीम थी वो ये थी कि हम सिर्फ एक अकोमोडेशन चेन नहीं होंगे, बट हम एक यूनिक अकोमोडेशन चेन होंगे। हम सिर्फ लोगों को कमरा नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ लोगों को पैकेज नहीं बेचेंगे, बल्कि हम हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा वो एक्सपीरियंस देना रहेगा किसी भी ट्रैवलर को। तो इस थीम के साथ हमने स्टार्ट किया, और 2019 से 21 तक अभी हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ उत्तराखंड में ऑपरेशनल है, 2 अभी विद इन अ मंथ शायद हम लोग कर लेंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये वो था कि हमने मतलब कैसे करके स्टार्ट किया, इस बीच बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो आई होप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको हल्का सा आइडिया आया होगा कि क्या ये पूरी जर्नी होती है, कैसे करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

हाय, मेरा नाम है अंशुल भट्ट और मैं फॉरेस्टी को रिजॉर्ट ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ हूं। और आज आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने बात की थी वो थी क्या स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे ये पूरी जर्नी रहती है। आज आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा क्या कैसे करके मैंने जो फॉरेस्टी को रिजॉर्ट ग्रुप है उसको स्टार्ट किया है और कैसे करके हमारे जो स्टार्टअप ने एक तरीके से रेस पकड़ी है, कैसे करके हमने अपनी ही ग्रोथ देखी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। 2019 में हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्टी को रिजॉर्ट ग्रुप। हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम उत्तराखंड में जितने ट्रैवलर आ रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस दें, क्योंकि हम जितने भी सारे ब्रांड यहाँ पे इंडिया में हैं जो हॉस्पिटैलिटी में टॉप के ब्रांड हैं वो अलग अलग तरीके से रूम सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो हमारा ये था कि हम एक तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहीं ना कहीं से एक यूनिक अकोमोडेशन होगा, क्या वो नॉर्मल कोई लॉज नहीं होगा या नॉर्मल कोई कमरा हम सेल नहीं करेंगे, हम एक एक्सपीरियंस सेल करेंगे। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 2019 में हमने चोपता तुंगनाथ जो एक लोकेशन है वहाँ पे हमने अपनी एक यूनिट खोली और धीरे धीरे करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, नैनीताल, अलग अलग जगह पे हमने यूनिट्स स्टार्ट करी हैं और अभी दो यूनिट हमारी उत्तराखंड के चमोली और टिहरी में हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर रहे हैं। बस ये चीज़ को हम मेन वो लेके चल रहे हैं जो हमारा यूएसपी है कि हम एक्सपीरियंसेस ही सेल करें। जो भी आ रहा है वो सिर्फ, क्योंकि जितना भी ट्रैवलर उत्तराखंड में आता है वो कहीं ना कहीं अपने पूरी साल भर की कुछ छुट्टियां बचा के आता है, बहुत जगह से पैसे अरेंज करके आता है, अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियां देख के आता है, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, उसके पैसे बहुत ज़्यादा कीमती है। और हमारा जो मेन मोटिव है क्या एज अ सिटीजन ऑफ हिल्स उत्तराखंड, क्या हम उसके जो पैसे का उसका पूरा वैल्यू उसको दें। तो बात करते हैं क्या हमारे स्टार्टअप ने कैसे रेस पकड़ी। तो स्टार्टअप में सबसे जो जरूरी है वो आपके लिए लोग हैं, लोग भी वो लोग जो आपके टीम में हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपके टीम में अलग अलग माइंडसेट के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप स्पीड अप करेगा ग्रोथ को लेके। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे साथ कॉर्पोरेट से हमारे साथ अलग अलग फील्ड के कुछ लोग हमारी टीम में आना स्टार्ट किया। और इससे ये हुआ कि हमें जो फंडिंग चाहिए थी स्टार्टअप के लिए वो फंडिंग हमें इजिली मिलने लगी, क्योंकि टीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और जब कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ आपका आइडिया देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडिया बहुत सारे हैं। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं इस कमरे में भी मतलब हवा में ही इतने सारे आइडिया होंगे, लेकिन किसी भी आइडिया के ऊपर कोई भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई भी इन्वेस्टर है वो आपकी टीम देखता है, आपका मिशन देखता है, आपका विजन देखता है, आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करवा रहे हो उससे और उसको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो हमारे साथ भी जब हमारी लोगों ने टीम देखी और ये देखा कि ये फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं तो लोगों ने धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग आई तो हमें ऑब्वियसली हमने आईटी में इम्प्रूवमेंट करे, हमने अपने टेक्नोलॉजी से लेके ऑपरेशन तक हमने हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे। हमने जो फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लेके आना शुरू किया टीम में और यहाँ से हमारे पूरे स्टार्टअप को एक पेस मिला। जो अभी हम अपने आप को कहते हैं वो हम कहते हैं कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिक अकोमोडेशन चेन है। और जो हमारा मिशन है वो है कि हम इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन बने, क्योंकि लार्जेस्ट अकोमोडेशन चेन बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने आप को जो अपनी हमारी यूएसपी है वो है कि हम लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन हों, क्योंकि हम सिर्फ रूम या सिर्फ होटल सेल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवलर को एक एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी स्टार्टअप की ये जर्नी रही है और जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: सुनो सुनो भाई सुनो सुनो।
1: अरे क्या बोल रही थी मैं?
0: यही कि आरजे गौतम आ रहे हैं गपशप जंक्शन पर ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. आई एम बाय प्रोफेशन अ वेडिंग एंड इवेंट प्लानर एंड मेरी कंपनी का नाम प्लान योर मेमोरीज है. हम लोगों की मेमोरीज प्लान करते हैं, चाहे उनकी वेडिंग्स हो गए, बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गए, जितने भी हैप्पी ओकेजन्स होते हैं एक पर्सन की लाइफ में, हम ट्राई करते हैं कि उनकी उन मेमोरीज को अच्छे से प्लान कर पाए. व्हेन आई वाज परसुइंग माय एजुकेशन, सिंस दैट टाइम आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स. देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट अप एज अ यू नो पार्ट टाइम जॉब. आई वॉज स्टडिंग एंड साथ साथ एज एन अर्निंग सोर्स आई वॉज वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज एंड एज अ फ्रीलांसर. पार्ट ऑफ दैट आई यूज टू ट्रेवल टू मुंबई, जयपुर, उदयपुर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड आई यूज टू प्लान इवेंट्स विद देम. दैट इज वेयर आई कनेक्टेड द डॉट्स की यू नो आई शुड गेट इन टू दिस इंडस्ट्री and I have the skills because I was always a multitasker and you know I was always confused ki I can do a lot of things nicely, what am I meant for. I had friends jo ek cheez acche se kar sakte the to wo us profession ko choose kar rahe hote the. Main Anukriti har cheez ko acche se kar sakti thi. Aap mujhe koi bhi cheez de do, main research karke use acche se kar sakti thi. So when I started doing events I connected the dots कि इवेंट इंडस्ट्री में तुम्हें हर चीज की नॉलेज चाहिए होती है. यू शुड बी अ मल्टीटास्कर. एक साथ आपको हजार टीम्स को मैनेज करना होता है एंड दैट इज वेयर माय स्किल्स फेल इनटू प्लेस एंड दैट यूरेका मोमेंट केम अप एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद माय कंपनी. हाउ डिड आई स्टार्ट ऑफ विद माय कंपनी हियर इन देहरादून. वन डे माय फादर रैंडमली टोल्ड मी दैट लेट्स स्टार्ट एन इवेंट कंपनी एंड यू नो उधर से मैंने वो चीज पिक करी एंड देन सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय पार्टनर आल्सो पुश्ड मी टू स्टार्ट द कंपनी बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू एम्पावरिंग वुमेन. आई वाज मायसेल्फ फ्रॉम अ वुमेन्स कॉलेज सो आई वाज वेरी वोकल अबाउट ऑल द इश्यूज दैट वुमेन हैड टू गो थ्रू. वुमेन हाउ डिड दे वर्क, यू नो हाउ वर दे एक्टिव in different industries, how are they on top of the different industries. So us cheez se inspire hoke fir maine socha that why not, let's start off with the company. And aap manoge nahi, humne bahut chote chote decorations, home decorations, room decorations se start kiya and aaj hum दुबई लेवल की वेडिंग्स कर रहे हैं. आज हमारा ऑफिस दुबई में भी है एंड हम लोग इंडिया एंड दुबई दोनों में, देहरादून एंड दुबई टू बी प्रिसाइज, दोनों जगहों पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स मैनेज करते हैं. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स हु मोटिवेटेड एंड पुश्ड मी टू एक्सेल एंड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू गो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. वॉक टॉक रेडियो.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ. ओके, आई हैड अ फेज वेयर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. दैट वॉज बिकॉज ऑफ यू नो जो आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज होती हैं, जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे तुम बहुत यू नो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करते हो. आई वॉज गोइंग थ्रू दैट बैड फेज ऑब्वियसली. After, you know, 2 years of going through that phase, I realized that, oh, where is that charm that was in me? You know, something is missing. I have stopped talking. I have stopped going out. Why? Then I understood that. And उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई. And then, you know, I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें इंडिया में travel करी. You know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that, you know, जो भी outside circumstances थी, जो which were, you know, pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started, you know, getting back on the track, meeting people, doing some things जो मुझे अच्छी लगती थी, doing events, going out to different places and working with different people. And उनसे सीखा मैंने बहुत कुछ. मैंने 12th तक साइंस पढ़ी, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद मैंने इवेंट्स किया. ठीक है, तो आई थिंक आई हैड इनफ बैकअप्स को शन अवे करना. एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू डू दिस. And I am meant to see the operations of things. So, अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, I technically don't have a backup plan. But if I have to do something, I know I can do operations very well. Operations of any company, of any job, I can do that very well. Because मैंने एक master operations वाली field में काम किया हुआ है, जो events है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ operations देखने होते हैं. तो if I can do this, I can see the operations of any place and any business. Walk Talk Radio.

अपने घर परिवार दोस्तों से दूर, कभी रेगिस्तान में तो कभी -50 के तापमान वाले बर्फीले हिमालय में अनगिनत मुश्किलों से जूझते हैं जो अपने देश की आन बान शान के आगे अपना शीश कलंक करते हैं जो। ऐसे वीर योद्धाओं की वीर कहानियाँ सुनिए प्रोग्राम कॉल फॉर ड्यूटी में सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: Hi, मेरा नाम है जाननी और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर. And I am a teacher. I am teaching from last 8 years. I am from Dehradun. More than one year से cycling कर रही हूँ. और cycling हमें जरूर करनी चाहिए बिकॉज इट कीप्स यू फिट हेल्दी. साइकिलिंग इज अ काइंड ऑफ थेरेपी. इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट और इफ यू आर ओवर एक्सर्टेड नो देन इफ यू गो फॉर अ साइकिलिंग ओनली फॉर वन आवर यू फील वेरी फ्रेश. वॉट आई बिलीव एंड वॉट इज माई एक्सपीरियंस. साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज बिकॉज एज यू आर सीइंग कि देर आर सो मेनी हेल्थ इश्यूज. इफ यू डू साइकिलिंग नो वॉट आई ऑब्जर्व एंड वॉट आई फील इट कीप्स यू फ्रेश होल डे.
2: Walk Talk Radio.
3: Walk Talk.
4: Walk Talk Radio.
5: जिम्मेदारी अपने रास्ते खोजती है लेकिन गैर जिम्मेदारी बहाने बनाती है. अब आपको सोचना है कि आपको जिम्मेदार बनना है या गैर जिम्मेदार.
6: Tune in for a better life.

इस्तेमाल खोले लेके आए हो मेरा ताजा तरीन हर बीट मारे साथ बेहतरीन मेरे बदन से ज्यादा मेरे सुर हसीन नाम तो तू जानता है नेहा भसीन जैसे न

वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।

सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा, बहुत सहा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत धक्का, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा, तू भूल जाती छुप

मेरी हो के यू, मैं किस वफा की उम्मीद रखूं, तेरे ताने सुन लेता तो गाना ये आज मेरे साथ ना रहता, काश बहाने ना देता तो तू शायद आज मेरे साथ ही रहता, काश ये काश का जिक्र ना रहता, सियाही भी पन्नों से बस कफा रहता, और आज भी खुद को मैं कहता ही रहता, तू साथ में होती तो ये सब ना सहता।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो उस समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो सक्सेस मिल जाए, और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितनी की ज़रूरत है वहाँ पर।
1: आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस सपने देखते रहना, और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो, और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
2: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.
3: जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।
2: Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: वो वक्त कितना भी मुश्किल हो, दिल में हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहिए। वो वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, AKA धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है, तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए। और ये सोसाइटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी। जो लोग होंगे आपके आसपास, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर लोगे ना, तो यही सोसाइटी आपको ऐसे एग्जांपल देखेगी, क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है, उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको एज ए एग्जांपल देखेंगे। तो यही है यार, कि किसी के सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है। अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ, और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे। उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी। तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है, और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
0: Walk Talk Radio.

अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। बट ये सफलता कब आएगी, किस दिन आएगी, किसी को नहीं पता। हम अगर दूसरों को कंपेयर करेंगे कि उसकी सफलता हो चुकी है, मेरे साथ के लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो वो उनका भाग्य और उनकी मेहनत है, उन्होंने उसके लिए क्या किया। कभी कभार उनके बताने में मत आइए मेरे साथ ऐसा चल रहा है। हर आदमी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, सफल दिखाना चाहता है। कंसंट्रेट करिए खुद पे। आपकी सफलता का दिन कोई निश्चित नहीं है, बट अगर आपकी मेहनत में कमी नहीं है और आपका प्रोडक्ट या आपका काम आपसे मिलता हुआ है, तो आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और जिस दिन ये सफलता मिलेगी, उस दिन आप समझेंगे कि ये सारा वक्त, ये सारा समय, ये रोड मुझे चलनी ही थी वहां तक पहुंचने के लिए। यही लाइफ की जर्नी है। Walk Talk Radio.

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज मेरे दोस्त भी आए हैं आप सभी के साथ मिलने के लिए। जी हाँ, क्योंकि जब गेस्ट होते हैं तो वो दोस्तों जैसा रिश्ता तो हो ही जाता है। तो पॉडकास्ट की सीरीज में वॉक टॉक पर आज के हमारे मेहमान है हौसला फाउंडेशन से मनीष पयाल और शंकर। जी हाँ, कौन है ये, क्या करते हैं, हौसला फाउंडेशन क्या है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं मनीष और शंकर का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का वॉक टॉक रेडियो पे।
1: थैंक यू सो मच किरण फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू वॉक टॉक रेडियो।
0: सो कैसा लग रहा है आज वॉक टॉक में आके?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है आज तो।
0: और सबसे पहले मनीष जी आपसे कि हौसला फाउंडेशन क्या है? हौसला, जैसे कि हम सभी को पता है शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन हौसला फाउंडेशन के लिए इस शब्द के क्या मायने हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इस नाम को क्यों रखा गया?
2: मैम, हौसला फाउंडेशन के लिए जो शब्द है हौसला, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम बात करें जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसको उनको हम एक तरह से एजुकेशन दे के उनका हौसला बढ़ा रहे, ताकि वो बड़े होके कुछ बने, है ना, स्कूल जाए, बड़े होके कुछ बने, मतलब उनका हौसला बढ़ा रहे हम। उन्हीं का नहीं, वहाँ जितनी भी स्लम एरिया है देहरादून में, हमारा पर्पस यही है कि सबका हम हौसला बढ़ाएं, सबकी मदद करें हौसला के थ्रू, और एजुकेशन को एक अच्छी तरह से अच्छे मुकाम पे ले जाएं।
0: ओके, असल काम क्या है, क्या करता है हौसला फाउंडेशन लोगों के लिए, और आगे अभी तक जितनी भी जर्नी आप लोगों की रही है, ये कहाँ से शुरू हुई?
1: Okay, Kiran, so let's get back to history a little bit. I actually come from a background where I'm the only educated person in my entire family.
0: Okay.
1: So I understand the value of education a lot. तो कहते हैं ना कि एक खानदान में अगर एक बच्चा पढ़ ले तो उसके सामने वाली सात पुश्ते अच्छे, मतलब well educated होते हैं. So I understand the value of education and I come from that background. जो background से हमारे बच्चे हैं उस लगे, I come from the same background. But then you will actually see a difference while you and I've always taught our kids ki agar aap padhai karoge na, paisa to koi bhi kama leta hai dekho, but aapko society mein izzat milegi, log aapko puchhenge, and you see me sitting over here, I'm one of those kids if you go back 25 years. So our mission is very simple with Hosla. What we are trying to do is we are trying to bring a change by providing awareness. We're only trying to bring a change and we are making sure ki jitne tak hum pahunch paye

जितनों को हम पढ़ा पाए हम करेंगे. एंड आर मिशन इज एक्चुअली टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू द किड्स एंड वी विल सपोर्ट देम फाइनेंशियली विद ऑल बेसिक नीड्स एंड विल मेक श्योर दैट दे स्टेप इनटू मेनस्ट्रीम एजुकेशन.

उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले, मांगी मन्नतें भी काफी, जन्नत है जहाँ की तू अमर रहे सदा ही, बातें बाकी सफर में काटे काफी, गम को हम बांटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी, क्यों

औरों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर से जो है पेरेंट मेरे काफी सपोर्टिव भी रहे थे इस मामले में, काफी मतलब फ्रैंक माइंड का हमारा जो फैमिली है पूरा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की कॉलेज जो मैंने किया था अपना, वो मैंने BA MA जो मेरा म्यूजिक में होता मेरा हल्द्वानी से हुआ था। तो मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोला कि जैसा होता ना पहाड़ में नॉर्मली कि मतलब लड़का जवान होता है 18 साल का कि चलो आर्मी की लाइन पे लग जाओ, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली। बाकी मैं एक एथलीट भी रहा हूँ अच्छा, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया था कि आर्मी में जाओ या फिर कुछ और करो। तो मुझे अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ खास दिक्कत वहाँ पे नहीं आई थी। हाँ, जब इस फील्ड में आया था उसके बाद में तब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो कि अब मैं आपको आगे बताऊंगा इस मामले में।

0: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.
1: वो कहते हैं ना कि if your plan doesn't work, don't worry. God has some other plan for you. तो यार अगर किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो चीज आपको नहीं मिल पा रही हो, तो परेशान मत हो दोस्त. ये सोचो कि भगवान ने इससे भी अच्छा आपके लिए कुछ सोचा है. भगवद गीता में भी ये लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. तो वही करना है, अपनी मेहनत पे और भगवान पे यकीन रखना है.
0: वॉक टॉक रेडियो.

तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रास्तों पर अकेले ही निकल पड़ते हैं और जब हम अपने दोस्तों से साथ की आशा करते हैं तो वो अधिकतर इनकार कर देते हैं। तो इस समय पर आप इस बात को समझ लें कि आपका साथ ऊपर वाला दे रहा है और जो लोग आपका साथ देने से मना कर रहे हैं उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो आपके साथ खड़े हो सके। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी, मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ जाया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। नॉर्मली जैसे हमने सीखा पहले, कोई भी बंदा म्यूजिक में कभी भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। जिसको अगर ये पता चल गया कि बस मेरा हो गया, मैं तो परफेक्ट हूँ, अब उसका फिर वहां से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में फिर हमने सीखा, लेकिन जब हम सीख रहे थे तब कुछ आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने मतलब कि सीखा बिखा नहीं ताल, बट ये था कि उनके गाने अच्छे वो कर गए, क्लिक कर गए। तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये दुख की बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को उतना जल्दी लेते नहीं है, और अगर जिनके गाने अगर क्लिक कर जाएं, चाहे उनके लिरिक्स का मीनिंग समझ में आए ना आए, कोई अगर अच्छा गाना भी देता हो तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं करके आपका आपकी वॉइस अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, पर आपके गाने में डांस नहीं है। ये डांस जो शब्द है ये उत्तराखंड के लिए एक दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आज हर गानों में डांस ढूंढते लोग। आज वो सुकून उत्तराखंड का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुकून जो है मरने वाला है थोड़ा। लर्निंग इज अर्निंग होती है यहाँ पे, और ये शब्द तो मतलब म्यूजिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने इसका रखता है लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहाँ पे कमाओगे भी नहीं। पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी है कि यहाँ सीखने के बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे। और जहाँ पे मैं अगर सीखने की बात करूँ, अगर आपको म्यूजिक के फील्ड में, अगर किसी भी जो नए आर्टिस्ट जो मुझे भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक के फील्ड में आना है तो आप जो है किसी और को देख के मत आइए कि बस उनके गाने फेमस है, हम स्टूडियो में जाएंगे गाना रिकॉर्ड करेंगे वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपका वो गाना सिर्फ एक बार फेमस होगा, दो बार फेमस होगा। जब आप सीखेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए एक आर्टिस्ट बन जाएंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप स्टूडियो आर्टिस्ट तक ही सीमित रहेंगे। Thank you.

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण, और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में आई है, मेरे सामने बैठी हुई है, और इतनी कूल वाली वाइब आ रही है ना मुझे सच्ची में उनसे, मतलब अलग ही अंदाज है। कौन है, लड़का है लड़की है? भी देखो मैं बताती हूँ कि कूल वाइब सिर्फ लड़के नहीं देते हैं, लड़कियां भी बहुत देती है। और इस वक्त जो मेरे साथ बैठी है ना, उनको तो आई थिंक कौन नहीं जानता, पूरा इंडिया जानता है। कैसे जानता है ये अभी सीक्रेट है, जैसे ही नाम बताऊंगी ना आपको भी पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं नीरू पाल का, जो कि रैपर है और देहरादून से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच।
1: कैसे हो आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए।
2: मैं भी,
1: क्योंकि पॉडकास्ट में ना जब हम बात करने बैठते हैं तो बात बहुत जगह से निकलती हुई ऐसी ऐसी जगह निकलती है कि बहुत कुछ ऐसा पता चलता है लोगों के बारे में, हमारे साथ जो भी जुड़ता है उसके बारे में, कि बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज खासकर जो रैपर कम्युनिटी है, जो रैप करते हैं, जो हिप हॉप करते हैं, जो डांस करते हैं, जो आर्टिस्ट है, जो कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो आज बहुत कनेक्ट करने वाले हैं आपकी लाइफ से। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि नीरू पाल, जिसे दोस्तों हमने एमटीवी हसल फर्स्ट सीजन में देखा था, आपका जो धाकड़ रूप है ना वो हमने देखा था आपके रैप के थ्रू। एक्चुअली नीरू पाल पर्सनल लाइफ में एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास इंसान है, वो कैसी लाइफ है आपकी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
2: मेरा नाम नीरू पाल है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है मेरे बारे में, और थैंक यू सो मच आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो नीरू पाल बेसिकली मुझे बनने में बहुत टाइम लगा, और मैं सेल्फ मेड बंदी हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या फिर हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे खानदान से आते हैं। मैं एक बहुत छोटी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे जो भी मैंने किया है अपने दम पे किया है, और यही शायद मुझे नीरू पाल बनाता है। यही चीज की जो मेरा सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड हूँ मैं, और जो मेरा ये नेचर है, मेरा बिहेवियर है, यही मुझे नीरू पाल बनाता है, जो कि सबसे हटके है।
1: हटके तो आप हो, नो डाउट।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। आपने साइकोसोमेटिक वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। साइकोसोमेटिक दो शब्दों को मिलाकर बना है, साइको और सोमा। साइको शब्द माइंड को रिप्रेजेंट करता है और सोमा शब्द ग्रीक लैंग्वेज में बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि जो भी काम हम बॉडी पे करते हैं उसके रिजल्ट माइंड पे आ जाते हैं और जो काम हम माइंड पे करते हैं उसके रिजल्ट बॉडी पे आ जाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि अगर आप अपने मन में आंख बंद करके सिर्फ नींबू के बारे में ख्याल करें तो आप देखेंगे आपके मुंह पे पानी आ गया। Now it is very strange thing, physically वहाँ पर कुछ भी present नहीं है, लेकिन सिर्फ नींबू के बारे में सोचते ही आपकी body reaction कर रही है। ठीक ऐसे ही अगर body के साथ कुछ किया जाता है तो उसका reaction सीधे सीधे mind पे आ जाता है। इस तरह के कुछ experiments किए गए कि जब आप सो रहे होते हैं, एक इंसान बहुत गहरी नींद में है और आप अगर एक बर्फ का टुकड़ा धीरे से उसके तलवे पर अगर लगाएंगे तो वो ये सपना देखना शुरू कर देगा कि वो बर्फ के अंदर किसी बर्फ के पहाड़ पे नंगे पैर चढ़ा जा रहा है और उसको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप उसके पैर के तलवे के पास कोई माचिस की तिल्ली लगा देंगे, यानी थोड़ा सा फायर आप वहां पर तपिश देंगे उसको आग की, तो आप देखेंगे कि उसको लगेगा कि मेरे को कोई नरक की आग में जला रहा है। इट हैपेंस मेनी टाइम्स कि आपको बॉडी के साथ क्या हुआ काम सीधे आपके माइंड पे रिएक्ट करता है, जिस तरह से माइंड पे क्या हुआ काम आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी बॉडी को पीक पोजीशन में रखते हैं तो आपका माइंड भी पीक पोजीशन में काम करता है। शायद इसीलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन में हो तो उसको जिम जरूर जाना चाहिए, उसको फिजिकल एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए अगर वो कर सकता हो तो, नहीं तो वो सिर्फ मॉर्निंग में घूमने ही चला जाए, मॉर्निंग वॉक पे चला जाए या हल्की फुल्की योगा की एक्सरसाइजेस करे। लेकिन जो कुछ भी हम शरीर के साथ करते हैं उसका रिजल्ट हमारे माइंड पे आने ही वाला है। इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बहुत ही यूजफुल बना सकते हैं। मतलब आपके हाथ में एक ऐसा कंट्रोल आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मैं अपने माइंड को कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। आपने जब भी किसी डिप्रेस आदमी को देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसके कंधे झुके हुए होते हैं, वो धीमे धीमे चल रहा होता है, वो नीचे की तरफ देख रहा होता है और उसकी ब्रीदिंग उथली होती है, यानी ही इज हैविंग शैलो ब्रीदिंग। अगर आप इसको अपोजिट कर दें, यानी कि अगर आप इस बॉडी की जो लैंग्वेज इसको चेंज करने की कोशिश करें, यानी अगर आप अपने कंधे को खींच के रखें, आप बिल्कुल सीधे खड़े हों, यानी आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी जो ब्रीदिंग है वो चेस्ट में डीप जानी चाहिए, यानी आपको बहुत डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए और आपको ऊपर की तरफ देखना चाहिए, तो ये एक ऐसी फिजियोलॉजी आपकी हो जाएगी, इतनी रिसोर्सफुल हो जाएगी कि आपको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देगी। आप देखिए, अगर हम जब भी किसी ऐसे जवान को देखते हैं जो सेना में है तो अक्सर आप देखोगे कि वो लोग, उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और उनकी चेस्ट आगे को निकली हुई होती है। रीजन क्या है? आप उनके कंधे कभी भी झुके हुए नहीं पाएंगे क्योंकि उनके साथ इस चीज की इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो उनकी डेली लाइफ के अंदर हैबिट में आ जाता है। तो डेफिनेटली हम कभी भी ये चाह नहीं सकते, ये सोच भी नहीं सकते कि हमारी सेना के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे जाकर, वो कभी किसी डिप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें या उस तरह की माइंड की स्टेट के अंदर रहें। लेकिन हम लोग अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं या हमारे जानने वालों के साथ। अगर कोई भी आपको ऐसा इंसान दिखता है जो कि डिप्रेशन से जूझ रहा है तो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके वो अपने इंटरनल स्टेट्स को चेंज कर सकता है बहुत आसानी से। एक रिसर्च करी गई जिसके अंदर ये कहा गया कि आप अपनी गर्दन को झुका के रखें और कुछ निगेटिव इमेजिनेशंस करें। लोगों ने बहुत आसानी से कर ली। उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी चिन को अप रखें और ऊपर की तरफ देखें और उसके बाद कुछ निगेटिव सोच कर देखें। आपको जानकर हैरानी होगी कि 65% ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू डू इट, यानी वो कर ही नहीं पाए। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि आप अपने कंधों को ऊपर रखें, अपनी चिन को अप रखें और उसके बाद आप कुछ निगेटिव सोच कर देखें। आप नहीं सोच पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी बॉडी और माइंड में इतना गहरा कनेक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक बुक पढ़ रहा था, नॉर्मन कुजिन्स की किताब थी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। इस बुक में उन्होंने बताया है कि उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया कि ये आसानी से ठीक नहीं हो सकते। उनके ठीक होने के चांस मात्र 1 in 500 थे, तो बहुत मुश्किल था उनका बचना। लेकिन उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ में। उन्होंने ऐसी फिल्में देखनी शुरू कर दी, ऐसे किताबें पढ़नी शुरू कर दी, ऐसे लोगों के साथ रहने लगे, ऐसे प्रोग्राम्स देखते थे वो जिनसे उनको बहुत ज्यादा हंसी आती थी। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखिए, हंसने की वजह से धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज में सुधार आना शुरू हो गया और बॉडी लैंग्वेज में चेंज आने की वजह से उनके इंटरनल माइंड की स्टेट्स भी चेंज होनी शुरू हो गई। कुछ ही महीनों के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर्स भी उनको देखकर बुरी तरह से हैरान रह गए। नॉर्मन कुजिन्स बोलते हैं कि माइंड और बॉडी की जो रीजेनरेशन की पावर है उसको हमें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। इट कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको आज दी है, मैं चाहूंगा कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और किसी भी परेशानी से डरे नहीं। हर चीज का हल होता है और कई बार वो इतना आसान होता है कि हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता तो हम उसे देख नहीं पाते। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं वॉक टॉक रेडियो पर, ताकि हम आपको इस तरह की बातें बता सकें जो आपको डेली लाइफ में अपनी आंखों के सामने रहने के बाद भी दिखाई नहीं देती। बातें जारी रहेंगी, मैं आपको ऐसी ही बातें बताता रहूंगा जिससे आपके ज्ञान का वर्धन हो और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सके। मैं हूँ गिरेंद्र भारती, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: लगी तो नहीं? अरे
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

जिस खेल से उन्हें प्यार था उन्होंने शादी भी उसी से की, मतलब खेल से नहीं की, लेकिन जो उस खेल को पसंद करती थी, जो उस खेल को खेलती थी, शादी भी उन्हीं से की। फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवीवी लक्ष्मी, उन्होंने शादी की पीवीवी लक्ष्मी से, वही उनकी गर्लफ्रेंड थी, वही उनकी वाइफ बनी। हम बात कर रहे हैं पुलेला गोपीचंद की। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मैं हूं मुस्कान और ये है शो अनसंग चैंपियंस का। आखिर ऐसे बहुत सारे चैंपियन हैं जिन्होंने लाइफ में ना जाने क्या क्या हासिल किया है, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपको हर रोज कुछ नया सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और इसी के साथ आज हम बात कर रहे थे पुलेला गोपीचंद की। उनकी एक बेटी है, उनका एक बेटा है, बेटी गायत्री, जो भी खेलों में ही आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा जब हमने स्टूडेंट्स की बात की तब हमने आपको दो नाम तो बहुत अच्छे से बताए, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, लेकिन उनके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम पर बहुत जाने माने हैं, जैसे कि ज्वाला गुट्टा, पी कश्यप एंड श्रीकांत कदम्बी, तरुण कोना। ये ऐसे गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी के प्लेयर हैं जिन्होंने भारत में बहुत नाम रोशन किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। आखिर बैडमिंटन एक टाइम पर ऐसा खेल था जहां पर ना ग्लैमर था ना ही पैसा था। अगर सिर्फ एक प्लेयर थे तो वो थे प्रकाश पादुकोणे, जिन्होंने बैडमिंटन को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। और हम सबको एक टाइम पर ऐसा लगा बस भारत खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये सब संभव हुआ इन खिलाड़ियों की वजह से। अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आखिर पी लक्ष्मी कौन थी, पर आपको पता है जब वो बैडमिंटन खेलती थी उस एरा में देयर वाज नो सपोर्ट सिस्टम और बिग मनी, पैशन ही सब कुछ हुआ करता था एक खेल के लिए। पी लक्ष्मी गोपीचंद इज द फर्स्ट वुमेन ओलंपियन। उन्होंने 1996 में सिंगल्स बैडमिंटन खेला था फर्स्ट, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और आपको पता है उनके कोच कौन थे? उन्हीं के फादर कृष्ण राव वॉज अ कोच व्हेन शी वॉन द जूनियर नेशनल ट्रिपल क्राउन बिफोर मूविंग फ्रॉम विजयवाड़ा टू हैदराबाद इन 1993। और उन्होंने ज्वाइन किया द्रोणाचार्य SMRF एट फतेह मैदान इंदौर स्टेडियम। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बताया था कि आरिफ ही पुलेला गोपीचंद के फर्स्ट कोच थे। शायद ये दोनों यहीं पर मिले होंगे, है ना? यही सोच रहे ना? हाँ, हो सकता है। इनके बच्चों की बात करें तो गायत्री और विष्णु, दोनों के नाम कितने ब्यूटीफुल है ना, भगवान विष्णु और भगवान गायत्री पर रखे गए हैं। इस एकेडमी में ये दोनों बिल्कुल एक प्लेयर की तरह और एक ट्रेनी की तरह ही खेलते हैं। और जब पुलेला गोपीचंद से पूछा गया कि आखिर उनके बच्चों ने बैडमिंटन को कैसे चुना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया था, बस वो ये बचपन से हमेशा देखते आए हैं। अपनी मदर को, अपने फादर को उन्होंने हमेशा बैडमिंटन खेलते हुए ही देखा है और उन्होंने खुद से इस गेम को चुना। आपको पता है वो दोनों इसी एकेडमी में हैं, यानी कि पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में। उन्होंने बताया इस एकेडमी में टोटल 50 बच्चे हैं और उन्हें हर बच्चे में अपना एक ट्रेनी नजर आता है और हर ट्रेनी में अपना बच्चा नजर आता है। सीनियर टीम के नेशनल कोच होने के नाते मैं जूनियर टीम के साथ बहुत ज्यादा नहीं रहता हूं, पुलेला गोपीचंद ने ये कहा था। लेकिन गायत्री और विष्णु अभी जूनियर टीम में खेलते हैं और मैं हमेशा से ऐसे प्रे करता हूं कि वो दोनों इस लाइफ में इस गेम के साथ इंसाफ करें और दोनों बहुत आगे तक जाएं। और आई एम प्रीटी श्योर कि जिसके फादर ने इतनी मेहनत की हो, अपना सपना पूरा ना होने पर दूसरों में उस सपने को देखा हो, उनके बच्चे भी यही चीजें सीखकर आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। आप भी अपने बच्चों को यही सिखाइए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हर चीज के साथ इंसाफ करना बहुत जरूरी है। मैंने एक कहावत सुनी थी कि हर काम को ऐसे करना चाहिए कि वो काम भी कहे कि वाह किसने किया था इस काम को, जैसे अभी मैं कर रही हूं। आपको इस कहानी को सुनाने के लिए मैंने पहले बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी और मैंने सोचा जब मैंने इतनी मेहनत की ही है तो क्यों ना आप सबको इसके बारे में बताऊं। चैंपियंस की कहानी जानना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब मैं हर रोज आपको एक चैंपियन की कहानी सुनाने वाली हूं, सिर्फ यहीं पर रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मैं मुस्कान अनसंग चैंपियन में आपके लिए कुछ नया लेकर जल्द ही हाजिर यहीं पर रहूंगी, लेकिन अभी के लिए बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि हर बात, हर चीज, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं, बस कोशिश कीजिए उनसे सीखने की और उन सारी चीजों में से बस पॉजिटिव चीजें निकाल लीजिए और नेगेटिव को वहीं छोड़ दीजिए। अभी के लिए बाय बाय।

इंसान को पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी अप्रोच बनाती है। किसी भी चीज को किस तरीके से बोलेगा ये डिपेंड करता है ना इस पर। वही वाली बात की ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, मेरा नाम है समर ऑन वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसा शो जहां हम कोशिश करते हैं कि दुनिया जहां से थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी समेट के लाएं और आपके सामने रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा साथ निभाएं पॉजिटिव रहने में, स्माइल करने में, यही तो चाहिए हमें। अप्रोच, किस चीज को किस तरीके से लिया जाता है। जैसा कि एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया कि ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, ये अप्रोच पर डिपेंड करता है ना, ये अपना नजरिया होता है जिसको हम नजरिया बोलते हैं। इन दो नजरियों की बात हमने हमेशा की है बचपन से लेकर के आज तक, स्कूल, कॉलेज, न्यूज़पेपर, इनफैक्ट आजकल न्यूज आर्टिकल्स, तमाम जगहों पर इनका जिक्र होता है। कई एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। इस केस में या इस एग्जांपल में एक तीसरी अप्रोच भी तो हो सकती है जिसके बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की, और वो अप्रोच है ये कि फर्क क्या पड़ता है ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं उसे पीऊंगा ना। वही वाली बात, मैं क्यों गुठलियां गिनूं, मुझे आम खाने हैं। एक ये भी अप्रोच हो सकती है, काम से मतलब, मैं जिस रास्ते जा रहा हूं वहां की सड़क कितने फिट की है वो मुझे नहीं जानना, क्या मेरी गाड़ी जितनी चौड़ी है उस सड़क पर चल सकती है, इतनी जानकारी मेरे लिए काफी है। इसको कुछ लोग कैजुअल अप्रोच या कैजुअल एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, बट मेरे लिए ये सबसे अच्छा तरीका है काम से काम। इसका एक बेनिफिट होता है कि आप बहुत ज्यादा उलझनों में नहीं फंसते हो, आपका क्लियर है विजन, आपको क्या करना है। प्यास लगेगी आधा ग्लास पानी पी लूंगा, प्यास नहीं लगेगी आधा ग्लास पानी रखा हुआ है, आधा भरा है आधा खाली है इस बात पर लड़ाई लड़ने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, उतने में कुछ प्रोडक्टिव कर लेंगे हम। शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे यकीनन जो कि ज्यादा बहस नहीं करते हैं, उनको लगता है कि अब बहस शुरू होने वाली है तो वो तुरंत ही कट ऑफ कर लेते हैं, उससे साइड में निकल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। मेरे ऑफिस में ऐसा एक पर्सन है, राम उनका नाम है, नाम भी तो देखो कितना प्यारा है। आमतौर पर हर एक ऑफिस का यही रिवाज होता है कि आप जब बैठोगे बातें करोगे चाय पर सुट्टे पर, थोड़े बहुत डिस्कशन हो जाते हैं जमाने के इधर उधर के। किसी के कैबिन में जाकर के अगर आप बैठते हैं तो कुछ देर के लिए वो अपना काम छोड़ देगा और आपकी बातचीत होने लगेगी। राम के कैबिन में जब भी कोई जाता है तीन या चार लोग जाएंगे बैठेंगे, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक मिनट, घड़ी लगा के एक मिनट एंटरटेन करेगा और उसके बाद में अपने काम में लग जाएगा। आप बैठे हैं, बैठे रहिए, बात करते रहिए।

गोलियत नाम का एक राक्षस था। उस पूरे गांव में उसका खौफ ऐसा कि शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हर दिन वो उठा करके किसी न किसी को ले जा रहा है और उससे पूरा गांव परेशान है। कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही चला आ रहा है। लंबे टाइम तक यही सब चलता रहा क्योंकि उस राक्षस से बचने का तरीका था ही नहीं किसी के पास में। वो इतना शक्तिशाली था, इतना विशालकाय था, उसके आगे कोई टिकता ही नहीं था। वो जब भी आता तो लोग भागने लगते उससे बचने के लिए। और फिर एक दिन डेविड नाम का एक भेड़ चराने वाला लड़का उसी गांव में आया। गांव वालों ने कहा डेविड से कि बेटा एक टाइम के बाद ना घर से बाहर मत निकलना क्योंकि यहां पर सेफ नहीं है, वो राक्षस है, वो खा लेता है। तो डेविड ने पूछा कि आप लोग इतना डरते क्यों इस राक्षस से? लोगों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि आप कितनी ही कोशिश कर लो उसको मार नहीं सकते। आप विशाल काय है, मेरे शरीर के साइज का तो उसका सिर्फ और सिर्फ हाथ होगा। डेविड ने कहा सही कह रहे हो आप, वो राक्षस बहुत बड़ा है। लेकिन बात ऐसी नहीं है कि बड़ा होने की वजह से हम उसको मार नहीं सकते, बल्कि हकीकत तो यह है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया हुआ निशाना चूक ही नहीं सकता। आज अगर वो छोटा होता आप उस पर निशाना लगाते, चूकने का चांस था। आपको पता है डेविड ने उस राक्षस को किससे मारा? गुलेल से। राक्षस वही था, लोग भी वही थे, सिर्फ और सिर्फ डेविड की अप्रोच अलग थी, सोच अलग थी, नजरिया। कितनी बड़ी चीज होती है ये नजरिया जो है, ये इंसान की पर्सनैलिटी में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जिस तरह से जब हम काला चश्मा पहन लेते हैं तो हमें हर तरफ काला काला दिखता है, लाल रंग का चश्मा पहन लेते हैं लाल लाल दिखता है, ठीक वैसे ही हमारा जो नजरिया है ये हमारे दिमाग पर लगा हुआ चश्मा है। हमें कैसा दिखेगा ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। हम अगर जो नेगेटिव सोचेंगे तो हर तरफ निराशा, दुख, सेटिस्फेक्शन किसी के अंदर नहीं दिखाई देगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें आसपास लोग खुश दिखाई देंगे, सब सेटिस्फाइड है। कभी ऐसा नोटिस किया है आपने कि आपके साथ में ज्यादा बुरी चीजें तभी होती हैं जबकि आप थोड़ा सा मेंटली ऐसे सैड होते हो? आपने एक बार सोच लिया यार सब कुछ ठीक नहीं हो रहा यार, फिर ज्यादा बुरी चीजें होती हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा बुरी चीजें तब हो रही है, बस मुद्दा यह है कि तब छोटी सी ही गलत चीज को आप बहुत बड़े तरीके से ले लेते हो, आप बहुत बड़ा बना देते हो। तो अभी हम पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ में इस दुनिया को देखें या फिर नेगेटिव अप्रोच के साथ में। अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हर इंसान हमें अच्छा लगेगा। हालांकि हर एक इंसान अच्छा है नहीं इस दुनिया में, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई एक खूबी तो हम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन वहीं अगर जो नेगेटिव चश्मा पहना हुआ है तो हम बुराइयां ढूंढते रहेंगे लोगों में, इसका ये गंदा, इसका ये गलत, इसका वो गलत। तो अपने आप को बदलने से पहले अपने इस चश्मे को बदलते हैं हम। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, एक ऐसा पॉडकास्ट शो जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिल सके। और अगर जो थोड़ी सी भी होप मिली है ना तो बाकी का काम आपको करना है, इस होप को थोड़ा सा और बढ़ाना है, स्प्रेड करना है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, स्टे ट्यून्ड, अगले एपिसोड में मिलते हैं।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
1: Mm-hmm.

0: हाँ मुड़ जा गायब हो जा गायब हो जा।
1: You are listening to Startup Strategies with Ajit Nigam.
2: नमस्कार, रेडियो वॉक टॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अजीत निगम है और मैं यहाँ पे आपके साथ बिजनेस की बातें करने आया हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करने आया हूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि अपना बिजनेस कैसे करें, क्या करें, बहुत सी गलतियां होती हैं, ये गलतियां ना हो इसलिए हम क्या स्टेप्स लें। तो इस बात को मैंने 5-6 पार्ट्स में बांटा है और मैं आपसे अबाउट 7-8 पार्ट्स में बात करूंगा, एक एक पहलू को लेते हुए चलेंगे। पहला पहलू है हम अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को इंटरनली देखें। जब तक हम बिजनेस जरूर करना चाहते हैं लेकिन जब इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, बस हम कुछ भी कर लेते हैं। हम बात करते हैं एक अपॉर्चुनिटी की, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है? कि एक क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इसीलिए अपॉर्चुनिटी है। आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं अपने आप की तरफ को झांकना, अपना एक तरह से आप आत्मनिरीक्षण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हमें आसपास की अपनी दुनिया को देखना होता है किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो वो मेरे साथ मैप करती है कि नहीं करती है। जब तक हमने इस बात को नहीं देखा तब तक वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। और थर्ड एलिमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है हमारे में स्ट्रेंथ आ गई, हम एक आसपास एक एनवायरमेंट देख रहे हैं जहां पे हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एक्ट कर रहे हैं उसके लिए? तो तीन कॉम्पोनेंट्स हुए। एक पहला कॉम्पोनेंट हुआ एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं कि आसपास क्या है, ये दोनों चीजें देख लें फिर हम एक्ट करना शुरू करते हैं। तो जो हम इंटरनल पार्ट की हम बात करते हैं उसको बिजनेस के लैंग्वेज में हम उसको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं। फिर क्या हमारे में वो मोटिवेशन है जिसको हम एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन कहते हैं, और हमारा बिहेवियर क्या है। ये तीन एलिमेंट मिलके हमारी सिर्फ थिंकिंग का सेट बनाते हैं और उसके बाद और चीजें होती हैं, जैसे इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है, इंडस्ट्री की स्टेटस, की छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों का क्लस्टर है, क्या वहां पे गैप है, क्या आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस होते रहे तो उन मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन क्या है, बिना कॉम्पिटिशन के आप बिजनेस में जाओगे तो परेशानी तो होगी होगी, और बिना वैल्यू जाने, वैल्यू किसके लिए, वैल्यू उस कस्टमर के लिए। जब वो हम वैल्यू समझ लेंगे तो हम उस पर एक्ट कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को यानी अपने आप को देखे, इंडस्ट्री की कंडीशंस के देख के हम एक्ट करते हैं, तभी हम उसको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, सेम कंडीशंस दूसरे के लिए शायद ना हो, इसीलिए अपने आप के अंदर झांकना, उसके बाद आसपास के अपने एनवायरमेंट से मैप करना और फिर एक्शन लेना, उसको हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जब हम बात करते हैं अपने माइंडसेट की तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, जिसको हम मैनेजमेंट की भाषा में और स्टार्टअप्स की भाषा में हम अचीवमेंट कहते हैं। क्या आप उस अचीवमेंट के लिए आप हद से ज्यादा जाने के लिए तैयार हो, आपका दिमाग, आपका दिल उस अचीवमेंट के लिए कितने तरफ आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज स्पेशली बिजनेसमैन के लिए आती है कि इंडिविजुअलिज्म। वैसे तो कहा जाता है कि इंडिविजुअलिज्म गलत बात है, लेकिन हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि आप वो इंसान हैं, सारा डिसीशन, सारा दारमदार आपके ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते इस इंसान ने काम नहीं किया इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं, द बक स्टॉप्स एट यू एंड thereby यू नीड टू टेक दोस डिसीशंस। दैट इज व्हाई इंडिविजुअलिज्म बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन कलेक्टिविज्म। Collectivism essentially talks about a scenario in which we take the team together. Here, you're the leader, not the boss. There is a distinction between leadership and being a boss. अगर आप अपने टीम को साथ में आगे लेके बढ़ सकते हो और एक डायरेक्शन दे सकते हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग आपने देखा अपने आसपास, उनको कंट्रोल चाहिए होता है। ये कंट्रोल दो तरह से हो सकता है, कोई बाहर से आपको कंट्रोल करता है या कंट्रोल आपके अंदर होता है। तो जब एक एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं उस इंसान की जिसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत जरूरी है। जब तक अंदर नहीं देखे जाएंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको एक मेंटल लेवल पे अपनी गोल सेटिंग करनी होती है। कोई और आपके लिए गोल नहीं सेट करेगा, बिजनेस आपका है। आप एनवायरमेंट देख रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो। बहुत सारे रिकमेंडेशंस आपके पास आएंगे, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? कोई और नहीं, सिर्फ आप। इसलिए कई बार उल्टी दिशा में जाना, दुनिया आपको कुछ और कह रही है लेकिन अब आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप आगे सोच सकते हो। इसलिए एज एन एंटरप्रेन्योर, इंडिविजुअलिज्म एंड लोकस ऑफ कंट्रोल बिकम क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। वंस दीस आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, देयर आर थिंग्स थ्रू विच यू हैव टू डू लॉट ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग। ये हम बात कर रहे हैं इंटरनल चीजों की, जिसमें हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल रहे, इंडिविजुअल रहे। और क्या बिजनेस बिना ऑप्टिमिज्म के हो सकता है? बहुत परेशानी आएंगी मेरे दोस्त, चैलेंजेस आएंगे, हमें आगे बढ़ना है और हम आगे तभी बढ़ सकते हैं। तो यही सब चीजें हम बात करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन कैसे होता है, वो हम कुछ देर बाद में आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, अभी आपका मुझे इंतजार रहेगा ब्रेक के उस पार।
3: वॉक टॉक, सक्सेस का सीक्रेट क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Hi guys, welcome back on Bok Talk Radio Show. मैं हर्षित मलिक फिर आपके साथ अपने प्रोग्राम आउटलुक मैटर्स पे. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी दो नए टॉपिक्स के ऊपर. एक हमने बात करी आपका अपना एक्स फैक्टर जो आप सब में छुपा होता है, और दूसरा हमने बात करी थी इससे पहले वाले शो में कि किस तरीके से अगर हम लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो कैसे एक अच्छी कंपनी हमारी ग्रोथ को डिटरमाइन करती है. तो अब हम बात करते हैं अपने दुखों की. आप दुख क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग अपने प्रेजेंट में नहीं रहते. तो अब हम यहां से बात करेंगे कि कैसे प्रेजेंट में ना रहना हमारे दुखों का कारण बनता है, और प्रेजेंट में क्यों रहना चाहिए. हमारी सबकी जो जिंदगियां हो गई है ना, वो एक रेस बन गई है. सुबह उठने से लेकर मॉर्निंग वॉक से लेकर जॉब पे पहुंचने तक लेकर हर चीज एक रेस के तहत भागती है. अपने लिए समय नहीं दिखता, क्योंकि एक प्लान होता है जिस प्लान पे हम सब लोग भाग रहे होते हैं. प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्स होते हैं. चलो ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में. हमारी ना फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रेंज होते हैं. फ्यूचर में हम लोग वो हर चीज करना चाहते हैं जो हमारे को एक अलादीन का चिराग करके दे सकता था. पुराने जमाने में कहानियों में सुना था ना, अलादीन का चिराग, चिराग को घिसो, अलादीन का चिराग, अलादीन बाहर निकलेंगे और बुझेंगे, और मेरे शहंशाह मांगिए, आप क्या मांगते हैं मैं पूरा करूंगा. आज वो अलादीन का चिराग ना हम सबका दिमाग बन गया है, क्योंकि दिमाग है जो सब बनाता है, क्रिएट करता है और पूरा भी कर देता है, और हम उस पर ट्रेवल करके भी आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ना. चलिए पास्ट की भी बात कर लेते हैं. हम सब लोग पुराने में क्या हुआ है, पुराने में क्या बीता है, क्या लाइफ ने हमें दुख दिया है, झटका दिया है, हम लोगों की ना जिंदगी उसमें अटक के रह जाती है. लाइफ जीना मानती है, गिल्ट नहीं मानती, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं मानती, विजन मांगती है. जैसे कि किसी की लाइफ में कोई जॉब चली गई, या उसने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करी उसमें उसको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, या किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ किया बट उसकी शादी कहीं और हो गई. प्यार, मोहब्बत, इश्क, यस यस मैं मानता हूं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ हम उसके लिए सरेंडर कर देते हैं. कुछ लोग तो सुसाइड भी कर देते हैं, कुछ लोग हाथ काट देते हैं, देखा होगा ना मूवीज में, बट रियल लाइफ में भी भाई उतना ही होता है. मैं तो देखता रहता हूँ ना, सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्योंकि जिंदगियां अटक जाती हैं एक्सपेक्टेशन से. पास्ट की गलतियां या पास्ट में हुए नुकसान को, मेरे परिवार में कोई मर गया, उसके ऊपर घर डिपेंड था, वो हमारे लिए इतना कुछ करता था, मैं उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही, आ नहीं सकता, इन्होंने हमारे घर को संजो के रखा हुआ था, हो गया. आपके घर में तो क्या, हर किसी के घर में यही सब होता है, लाइफ चलती रहती है, बट उसको चिपक के बैठ नहीं जाती है, डिप्रेशन का माहौल नहीं बना देते. हमारे को इन सब चीजों से बाहर आना होता है. कड़ियां रोकती हैं पुराने फियर्स, पुराने फेलियर्स, यार पास्ट में ऐसा होता दोबारा ऐसा हो जाएगा ना. व्हाट हैपेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, माइंड जो है ना वो हमेशा खेल रहा होता है पास्ट में और फ्यूचर में. गौर करो आप सब लोग अभी भी मेरी बात सुनते हुए, क्योंकि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो आपका ध्यान है. जैसे इससे ध्यान हटेगा ना, तो जब आप अपने नॉर्मल पैटर्न में आओगे तो आपको या तो पास्ट का कुछ याद आएगा या फ्यूचर में क्या होने वाला है, बस ये एल्गोरिथम चलता रहता है दिमाग में. तो दिमाग एक मशीन बन जाता है क्रिएशन की. पहले वो पुराने की पकौड़िया बनाता है, फिर आगे के कबाब बनाता है. खा तो हम पाते नहीं, क्योंकि बनता ही रहता है सब कुछ चीजें. हम लोग खाएंगे कब, वो बन भी जाते हैं उड़ भी जाते हैं. प्रेजेंट का मतलब होता है आज का समय, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बट हम हमेशा आगे की फ्यूचर की चीजों को ही सोचते रहते हैं. फ्यूचर में ये गाड़ी ले लेंगे, ऐसा हो जाए, वो वहाँ पे वो करेगा तो मेरी ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी, वो बॉस ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो मेरा सब कुछ गलत हो जाएगा, वो भगवान करे मेरी लॉटरी लग जाएगी, या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, और पीछे ऐसा, बस इन्हीं सब में दुनिया अटकती है. यू हैव टू गो बियॉन्ड टू इट, टू लिव समथिंग, टू ड्रीम समथिंग. Now, when you start dreaming that in your day-to-day life, तो life में बहुत irregular हो जाती है, imbalance हो जाती है. Stay back. एक deep सांस लीजिए, खुद को रोकिए. उस deep सांस को लेते हुए आपको एहसास होगा कि आप exist करते हो. थोड़ी देर के लिए अगर आप फ्यूचर को और पास्ट को साइड में रख दो तो जो बचेगा वो आप होंगे, और उससे तो आपकी मुलाकात ही नहीं होती है, क्योंकि हम तो इल्यूजन बातें जो दिमाग में इमेजेस बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं, थॉट्स आते हैं, उन्हीं को सच मान लेते हैं और वो हमारा और पीछा करते हैं, या तो हम उनसे दूर भागते हैं, वो हमारा और पीछा करते हैं, ये हमें छोड़ते नहीं है, हमें एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एक बार ना सच का सामना कर लो, हाँ मैं मुसीबत में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, दिक्कत है, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है जब होगा तब की तब देख लेंगे, कर लेंगे, हर दिन मरने से अच्छा है एक बार मर लो। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लक्ष्मी अग्रवाल जी जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था हमारे देश में, बहुत ही घिनौना कार्य हुआ था, और ऐसी बहुत सारी लेडीज पे हुई ये अटैक हुआ था, तो लक्ष्मी अग्रवाल ने उस इंसिडेंट से अपने आप को रोका नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ को आगे खींचने को सोचा, उन्होंने एक मुद्दा लिया लाइफ में कि मैं इसके लिए फाइट करती हूँ, कोर्ट तक गई, उन्होंने एसिड की बिक्री को रखवाया, उन्होंने औरतों की इस दर्दनाक पीड़ा को दुनिया के सामने रखा, लोग समझे, लोग उस दर्द के लिए खड़े भी हुए, वहां से उन्होंने लोगों के लिए एक मार्गदर्शन रखा उनके जैसी परेशान लड़कियों से कि उनको काम मिल सकता है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने पास्ट को लेके बैठी नहीं रही। तो हमें अगर आगे बढ़ना है ना तो हमें अपने प्रेजेंट को सुधारना नहीं है, प्रेजेंट को जीना है। अरे जब मेरे कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार हम रोज परेशान आते हैं, तो मैंने कहा आज प्रेजेंट में जीना, मोबाइल बंद करके आना। तो जब वो अपने घर से ऑफिस तक आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने ना बहुत सारी चीजें देखी, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला, अरे हर्षद तुझे पता है आज हम जिस कैनाल से रोज निकलते थे वहां ना बहुत सुंदर सुंदर स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, चीजें लिखी हुई हैं, हमने कुछ लड़कियों को देखा जो उस मैदान में रोज खेलती हैं, मैं 25 साल से उस रूट से निकल रहा हूं पर मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अपनी टेंशन भूल गया उस टाइम, यार थैंक यू सो मच। मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बार बार बात करूंगा, मेरे कुछ वीडियोज भी इससे रिलेटेड यूट्यूब आउटलुक मैटर्स मेरे चैनल पे, आप लोग देखना उसे, आपको और बातें पता चलेंगी, बट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिव इन द प्रेजेंट, फील इट, लेट मी नो, विल डिस्कस मोर, सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो को, मेरे आउटलुक चैनल को, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली यानी कि आपका देवानंद जूनियर, आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूं गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक दिन जब बारिश हो रही थी तो एक 15 साल का लड़का जिसका नाम जॉन गोडार्ड था, वो अपने घर में अपनी किचन टेबल पे बैठा लॉस एंजलिस के अंदर, और उसने एक येलो कलर का पैड लिया जिसके टॉप पे उसने लिखा माय लाइफ लिस्ट, और उस लिस्ट के नीचे उसने 127 गोल्स लिखे। जी हाँ, 127 गोल्स उसने लिखे। हम कहेंगे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लोग ऐसे गोल्स लिखते ही रहते हैं, खास तौर पे बच्चों में तो ये बहुत शौक होता है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में उन 127 में से मोर देन 109 यानी 109 से भी ज्यादा गोल्स पूरे कर लिए। अब आप कहेंगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग गोल्स लिखते हैं उन्हें पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन आपको ये सुनके तब आश्चर्य होगा जब आपको पता चलेगा कि जो गोल्स उसने लिखे थे वो कोई सिंपल या इजी गोल्स नहीं थे। उनमें ऐसे ऐसे गोल्स थे जो कहते थे कि मेरे को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स पर चढ़ना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उनको सोर्स से लेकर उनके एंड तक एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े जो सबसे तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट हैं, हवाई जहाज हैं, उनको चलाना है, यानी ही वांट्स टू बिकम अ पायलट आल्सो, मेरे को 1 मील 5 मिनट से भी कम समय में भागना है, और मेरे को पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये जो इंसान था, ये जो लड़का था, इसका नाम था जॉन गोडार्ड, और बाद में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसको रियल लाइफ इंडियाना जोन्स का खिताब दिया। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनको ही हैज बिकम एक्चुअली ये जॉन गोडार्ड जो थे बाद में वर्ल्ड रिनोन्ड एडवेंचरर बने, एक्सप्लोरर बने, ऑथर बने, लेक्चरर बने। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत से लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, दो किताबें भी लिखी। 2013 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो हम सबको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम क्या कर सकते हैं अगर हम करने पर आए तो। मैं यहाँ पर आपको उनके गोल्स की लिस्ट नहीं बताने वाला क्योंकि वो बहुत लंबी है और मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, वो आप गूगल पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। आप जॉन गोडार्ड टाइप कीजिए, आपके सामने उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो 127 गोल्स उन्होंने लिखे थे। आप कहेंगे हम सब लोग अब गोल्स लिखते रहते हैं। देखिए, लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। आप गोल्स अपने मन में रखते हैं या उसे लिखते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग अमेरिका एक शो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी सबकी आदत होती है कि नया साल आते ही हम लोग नए नए गोल्स बनाते हैं, रिजोल्यूशन, हमने उसको नाम दिया है अपना कि इस साल मैं ये चीज अचीव करूंगा, इस साल मैं हर रोज जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, या खाना ठीक से खाऊंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, वॉट एवर इट इज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 15 फरवरी के आसपास यानी हार्डली आफ्टर 45 डेज उन्होंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने रिजोल्यूशन बनाए थे। तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ अपने मन में सोचकर रिजोल्यूशन बनाए हुए थे कि हमने ऐसा करना है इस साल, उसमें से सिर्फ 4% पीपल यानी 4% लोग ही ऐसे थे जो कंटिन्यू कर रहे थे, बाकी 96% लोग छोड़ चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स नोट डाउन किए हुए थे यानी जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने इस साल ऐसा ऐसा करना है, यानी ठीक वही काम जो जॉन गोडार्ड ने किया था 15 साल की उम्र में जब उसने 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी, तो जिन लोगों ने भी लिख रखे थे अपने गोल्स को उसमें से मोर देन 46% वर स्टिल कंटिन्यूइंग। जी हाँ, 46% लोग उस समय भी कंटिन्यू कर रहे थे जो गोल्स उन्होंने लिखे हुए थे। तो रिसर्चर्स शॉक्ड रह गए जानकर कि आपके सिर्फ किसी गोल को लिख लेने से उसके पूरे होने की संभावना 1100% तक बढ़ जाती है। इट इज वेरी पावरफुल थिंग। तो एक बहुत सरल टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप अपने गोल्स लिखें, पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में लिखें, और उनको लिखने के बाद उसकी एक कॉपी आप अपनी पॉकेट में जरूर रखें और दिन में कम से कम 3 बार उसको जरूर पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि एक फोकस्ड लाइफ को जीने का क्या मतलब होता है। एक्चुअली अगर आपने गोल्स लिख भी दिए और आप दोबारा उसको खोलकर नहीं देखते कई महीनों तक, तो उसके लिखे या ना लिखे होने का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं जाता। हम अगर किसी गोल को लिखते हैं तो हमें उसको दिन में कम से कम 3 बार उसे खोलकर देखना है और उसे पढ़ना है। उससे होगा क्या कि आप तीर की तरह से फोकस रहोगे उस गोल की तरफ जिधर आपको जाना है, और बाकी वो सारी अनवांटेड चीजें जो आपको खींचती रहती हैं और आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को खाती रहती हैं, उनसे आप बचते रहेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जॉन गॉडर्ड की लाइफ से हम लोग इस इंस्पिरेशन को लें, हम ये देखें कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग गूगल पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एक दो पेज में ही आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई इंसान इतने टफ गोल्स को अचीव कर सकता है अपनी एक ही जीवन काल में, तो हमारे तो जो गोल्स हैं वो इतने टफ भी नहीं है, बहुत आसान गोल्स हैं हमारे। उसको देखकर आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी और आप पूरी ताकत से अपने गोल्स पे लग जाएंगे। आपको बहुत आशा मिलेगी, बहुत होप मिलेगी कि अगर वो ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और होप इज एक्चुअली प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स द अचीविंग ऑफ गोल्स। बातें जारी रहेंगी, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं बोल रहा हूँ गिरेंद्र भारती, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर

खुशियाँ कैसे आती हैं जिंदगी में? हमारी चॉइसेस से। आप यकीन मानिए, एक सही लाइफ पार्टनर चुनना, एक सही करियर चुनना, एक सही शहर चुनना, एक सही जॉब, एक प्रोफेशन, एक सही सब्जेक्ट बचपन में, सही दोस्त, कितनी सारी चुननी की चीजें होती हैं जो चुननी होती हैं हमें जिंदगी में। फिर बाद में म्यूचुअल फंड्स चुनना, शेयर्स चुनना, स्कीम्स चुनना, टर्म प्लान्स, ओह माय गॉड। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी स्किल जो हम में है वो होना चाहिए चुनने का स्किल, टू चूज द बेस्ट। वो कैसे होता है वो अगली कहानी बताएगी। मैं हूं कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। यहाँ पर कहानियां सुनाते हैं, मतलब मैं कहानियां सुनाता हूँ और कई लोग ऐसी चीजें बताते हैं जो आपकी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना दे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है द ओल्ड कारपेंटर। अ कारपेंटर जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, अब बूढ़ा हो चला था, वो रिटायर होना चाहता था। काफी वक्त तक उसने कई खूबसूरत घर बनाए, लकड़ी के घर जिनके अंदर कमाल की कारीगरी होती थी। लोग उसके काम के फैन थे। एक एक बारीक से बारीक डिटेलिंग जो वो घर के लिए करते थे, जो वो घर में रखते थे, वो देखकर उस घर के जो मालिक थे वो खुश हो जाते थे। उन्होंने कई लोगों के घर बनाए और हर घर में लोग सुकून से रह रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं कि भाई आपकी वजह से ये घर इतना खूबसूरत है। उस कारपेंटर का जो बिल्डर था, जिन कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ वो काम करते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत खुश था कि यार जब तक ये है तब तक बढ़िया बढ़िया घर बनेंगे। लेकिन फाइनली उस कारपेंटर ने डिसाइड कर लिया कि वो अब नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो रिटायर होना चाहते हैं, चैन की जिंदगी चाहते हैं। अब बस और काम नहीं यार, बुजुर्ग हो गया हूँ, अब अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, उनको टाइम दूंगा, तो मुझे जरा इस काम से अब विदा कर दो। ये बात उन्होंने अपने मालिक को, उस कॉन्ट्रैक्टर को बताई। ये बात तो साफ थी कि कॉन्ट्रैक्टर को ये बात पसंद नहीं आनी थी। तो उसने कहा कि यार एक काम करो, एक घर और बना, फिर तुम्हें इजाजत, छुट्टी, तुम जहां जाना चाहो जाना। ये बात कारपेंटर को पसंद नहीं आई। उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हारे यहाँ काम किया, हर चीज तुम्हारे हिसाब से की, जितना पैसा दिया खुशी खुशी ले लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ, उसमें भी एक घर और बना दो। ये तो वैसा ही हुआ ना जब आप अपने ऑफिस के टाइमिंग पर निकलने को तैयार हो और बॉस आके कहते बस 5 मिनट और। गुस्सा आता, नाराजगी होती, वैसी ही उस कारपेंटर को थी। नाराज तो थे लेकिन काम तो करना था, मजबूरी थी। इतने साल जिसको बॉस कहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कैसे यूं बीच मझधार में छोड़ दे, एक घर बनाना है बना दे। तो उन्होंने वक्त लगा के वो घर बनाया। लेकिन कमाल की बात थी कि इस बार कारपेंटर ने दिल लगा कर नहीं बनाया, वो वाकई गुस्सा थे इस बात से। और जब आप नाराज हो जाते हो तो फिर वो वर्कमैनशिप चेंज हो जाती है, आप इंफीरियर मटेरियल यूज करते हो या आप इंफीरियर टाइप की काम करने लगते हो, क्वालिटी गिरा देते हो। वैसा ही कुछ उस कारपेंटर ने किया। वो अपने करियर का आखिरी घर बना रहा था, वो भी इतना खूबसूरत नहीं बनता। एंड दैट वाज रियली एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज करियर। कारपेंटर ने कंप्लीट कर लिया घर और अपने एम्प्लॉयर उस कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि मैंने कर लिया है, आकर देख लिया। वो आया, उसने घर को देखा, जाने वाला था, जब उस घर से निकलने वाला था तब उसने कहा कि ये लो, ये दरवाजे की चाबी, यानी कि घर की चाबी, ये तुम्हारा घर है, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है कि तुमने इतनी जिंदगी भर जो मेरी इस काम को संभाला है, जो मेरी रेपुटेशन बनाई है, उसके लिए एक घर तो क्या है, ये तुम्हारा हुआ। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उस कारपेंटर के लिए, लेकिन उतना ही बड़ा शौक भी, समझे ना क्यों। सरप्राइज इसलिए क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इस कॉन्ट्रैक्टर को उसकी इतनी वैल्यू है कि वो उसे एक घर गिफ्ट करेगा, और शौक इसलिए क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि ये घर उसे ही मिलने वाला है और उसने इसी की क्वालिटी गिरा दी। बहुत ही बुरा हुआ। अब उसे पूरी जिंदगी उस घर में रहना पड़ेगा जिस घर की कमियां उसे मालूम है, और वो जानता है कि ये घर क्यों खराब है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि उसने खुद ही बनाया था। कारपेंटर की तरह ना हम भी अपनी जिंदगी को बड़े डिस्ट्रैक्टिव वे में बनाते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, वी रिएक्ट रादर देन टेक एक्टिंग, वी रिएक्ट। हम अपना बेस्ट देना नहीं चाहते, कम देना चाहते हैं। ये बहुत लोगों में आदत होती है, उन्हें लगता है अरे बस इतना ही ठीक है ना यार, इतनी तनख्वाह मिलती है अपन को, क्यों ज्यादा करेंगे, है ना। होते हैं ना, कलीग की तरफ मत देखो, अगर होते हैं तो मन ही मन मुस्कुरा लो बस। गिव योर बेस्ट, ये मैं कहना चाहूंगा। आपका एटीट्यूड और आपकी चॉइसेस जो आप आज करते हैं, वही आपका कल आने वाली जिंदगी बनाती है। योर एटीट्यूड एंड चॉइसेस यू मेक टुडे विल बी योर लाइफ टुमारो। बिल्ड इट वाइजली, सोच समझ के वो चीजें चुनना जो चुनने वाले। और अभी

0: हाय दिस इज शाहिद माल्या, सुनते रहिए इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो।
1: सारा जग छोड़ के बस तेनू ही है चुनिया।

0: This is Bookipedia, only on Walk Talk Radio.
1: Hello everyone, आप सुन रहे हैं Walk Talk Radio और मैं हूँ गिरेंद्र भारती. इस शो के अंदर हम कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे, ऐसी किताबों के बारे में बात करेंगे जिसमें दी हुई शिक्षाओं पे अमल करके या उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं. बुकीपीडिया में जो बुक आज मैं ले रहा हूँ उसका नाम है What to say when you talk to yourself, यानी क्या बोलें जब आप खुद से बात करें. इसके राइटर हैं डॉक्टर शेड हेल्मस्टेटर PhD. इन्होंने 20 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में, या आप उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं. और इनकी किताबें 70 से ज्यादा देशों में पब्लिश हुई हैं. ये 1200 से ज्यादा रेडियो शोज और टीवी शोज के अंदर आ चुके हैं और ओपरा विनफ्रे जैसे प्रतिष्ठित शो के अंदर ये 2 बार प्रेजेंट हो चुके हैं. तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के बारे में जो आपको जिंदगी के एक नए सच के बारे में बताएगी, जिसका नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ. ये किताब लेने का मेरा एक खास रीजन था क्योंकि ये वो किताब है जब भी मेरे से कोई काउंसलिंग के दौरान पूछता है या अपनी किसी समस्या के बारे में बताता है और मैं सीधे सीधे अगर उसकी हेल्प नहीं कर सकता तो मैं उनको बोलता हूं कि आप इस किताब को पढ़ लीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी. जी हाँ, ये बुक कुछ है ही ऐसी. जिस समय डॉक्टर शेड काम कर रहे थे ह्यूमन माइंड की गुत्थियों को सुलझाने में, तो उन्होंने पाया कि जितनी भी थ्योरी रिसर्च और सारी चीजें उन्होंने देखी, एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट था जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया था. और वो फैक्ट ये था कि आप जो हर समय सोचते हैं आप वही बन जाते हैं. यानी जो आपकी थॉट्स हैं, जो आप लगातार आपके माइंड में जो रिकॉर्डिंग चलती है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर होता है. इनका कहना है कि जब हम जन्म लेते हैं उसी पल से हम लोग जो भी सुनते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं, हमारे भाई बहन हमसे जो कहते हैं, हमारे माँ बाप हमसे जो भी कहते हैं, हमारे टीचर्स हमसे जो दोहराते हैं, हम टीवी में जो देखते हैं, हम जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, ये सारे के सारे संदेश जिस तरह से किसी कंप्यूटर के CD रोम में हम लोग भर देते हैं या रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक उसी तरह से ये हमारे ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं. ये उसको एक पर्टिकुलर शब्द देते हैं जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग या प्रोग्रामिंग. तो डॉक्टर शेड हेल्मस्टेटर का कहना है कि हम लोग बचपन से ही प्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं. इनमें से कुछ प्रोग्राम्स अच्छे होते हैं और कुछ प्रोग्राम्स खराब होते हैं. अगर वो प्रोग्राम्स अच्छे हैं, यानी वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, यानी वो ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपको अपनी जिंदगी में उस तरफ लेके जाती हैं जो आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड टू हैव देम, उनको रखिए आप संभाल के. लेकिन अगर वो ऐसे प्रोग्राम नहीं है तो डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है. वो ये यहां तक बताते हैं कि लगभग 77% ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स वी हैव जब तक हम बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ये 77% ऑफ प्रोग्राम्स निगेटिव होते हैं या काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं या हमको कहीं से भी हेल्प नहीं करते, बल्कि हमको हमारे गोल्स से, उन जगहों से जहां हम जाना चाहते हैं, उनसे दूर कर देते हैं. तो इस अवस्था में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. मैं एक और किताब में ये चीज देख रहा था, उसमें उन्होंने एक रिसर्च दी थी कि जब तक आप 21 ईयर्स के होते हैं, 21 साल की उम्र के होने तक, आप 1,50,000 बार ये सुनते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली, नो यू कैन डू, नहीं तुम नहीं कर सकते. और सिर्फ 5,000 बार आप ये सुनते हो यस यू कैन डू इट. तो आप सोच सकते हैं कि जो आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कि नो यू कैन डू, वो कितना बड़ा डिफरेंस है आपकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से जो कह रही है यस यू कैन डू ओनली 5,000 टाइम्स टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स. जब मैंने ये पढ़ा तो आई वॉज रियली शॉक्ड. और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी इम्पोर्टेंस है इस बात की कि हम जो भी सुनते हैं, हम जो भी करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी हम किताबें पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ हम टाइम बिताते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है जानना कि क्या वो हमको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हैं या वो हमको निगेटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हैं. क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है लगातार, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है, उसको इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं होता कि जो आप सुन रहे हैं वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है, पॉजिटिव है या निगेटिव है. उसका सिर्फ इतना काम है कि जो भी वो इनपुट लेता है वो उसको रिकॉर्ड करता है और आगे के यूज के लिए आपको सौंप देता है. और अगर ये चीज बाई चांस रिपीट होती चली जाए तो ये आपका एक परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाती है और आप इसी के थ्रू बिहेवियर करना शुरू कर देते हो. तो दोस्तों बातें जारी रहेंगी क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा इस किताब में डॉक्टर शैड हेल्मस्टेटर हमें क्या क्या बताते हैं, किस तरह से हम अपने इस निगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में बदल सकते हैं और कैसे हम इस प्रोग्रामिंग को चेंज करके अपनी लाइफ में जो भी हमारे गोल्स हैं हम उनको पा सकते हैं। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं गिरेंद्र भारती, ट्यूनिंग फॉर अ बेटर लाइफ।
0: कुछ किताबें जिंदगी बदल देती हैं, ऐसी ही किताबों के बारे में सुनिए बुकीपीडिया में, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। वॉक टॉक।

हाय, मैं हूं अंशुल भट्ट, फाउंडर एंड सीईओ फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पे। जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बेसिकली स्टार्टअप, जब हम कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है किसी भी काम को करने में, और कुछ इनोवेशंस की वजह से किसी एंटरप्रेन्योर की कुछ काम करने के तरीके से अगर सोसाइटी की वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो बेसिकली एक स्टार्टअप होता है। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट में, किसी भी चीज में, तो ऑब्वियसली वो वहां से अर्न भी करता है, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हमने देखा है क्या, इतने टाइम में इंडिया में ही काफी स्टार्टअप सब आ रहे हैं, 2014-13 के बाद से लेके कंटिन्यूस स्टार्टअप्स ग्रो कर ही रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, और खास तौर पे सर्विस सेक्टर में तो स्टार्टअप की एक तरीके से अब बाढ़ आ रही है। लोग अलग अलग तरीके की सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अपने जो उनके आइडियाज हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है कि हम इस सेक्टर में ऐसे करके काम करेंगे, तो उसको ग्रो करवा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो हर किसी का कभी ना कभी सपना रहता है कि वो कुछ बड़ा करे, वो कुछ स्टार्ट करे जिसके वजह से लोग उसको याद रखें, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, और इसी मोटिवेशन के साथ हर कोई कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करता है। लेकिन काम स्टार्ट करना एक अलग है, और उस काम को एक बड़े लेवल पे ले जाना ये एक पूरा ही अलग, मतलब अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक शॉप स्टार्ट कर दी, कुछ भी ऐसा कि जिससे आपको अर्निंग हो रही, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप को आप उस लेवल पे लेके जाओ जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल का, नहीं लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल का फायदा हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, बहुत सारे लोग जो आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे फायदा ले पा रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ, ये इसने ये स्टार्ट किया और इसका ये आइडिया था और ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। तो इस पूरे जो जर्नी में बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज तो अगर मैं, क्योंकि मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने 2019 में स्टार्ट किया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में, क्योंकि मैं पहाड़ों से ही बिलोंग करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन में पास आउट होने के बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को दिखा और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिखी, वो उत्तराखंड में ट्रैवल एंड टूरिज्म था, और मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाके कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा कि जिस फील्ड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोई काम नहीं कर रहे हैं या स्टार्टअप्स नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ट्रैवल या टूरिज्म में, उत्तराखंड का कोई अपना ब्रांड हो, ऐसा ब्रांड हो क्या, अगर कोई भी उत्तराखंड जा रहा है तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ चले, तो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी भी थी राज्य के लिए, अपने ही होम टाउन के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने 2019 में जनवरी में स्टार्ट किया कंपनी जिसका नाम था फॉरेस्टिको रिजॉर्ट ग्रुप, और जो इसकी थीम थी वो ये थी कि हम सिर्फ एक अकोमोडेशन चेन नहीं होंगे, बट हम एक यूनिक अकोमोडेशन चेन होंगे। हम सिर्फ लोगों को कमरा नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ लोगों को पैकेज नहीं बेचेंगे, बल्कि हम हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा वो एक्सपीरियंस देना रहेगा किसी भी ट्रैवलर को। तो इस थीम के साथ हमने स्टार्ट किया, और 2019 से 21 तक अभी हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ उत्तराखंड में ऑपरेशनल है, 2 अभी विद इन अ मंथ शायद हम लोग कर लेंगे, ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये वो था कि हमने मतलब कैसे करके स्टार्ट किया, इस बीच बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। तो आई होप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको हल्का सा आइडिया आया होगा कि क्या ये पूरी जर्नी होती है, कैसे करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

हाय, मेरा नाम है अंशुल भट्ट और मैं फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ हूं। और आज आप मेरे को सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने बात की थी वो थी क्या स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और कैसे ये पूरी जर्नी रहती है। आज आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा क्या कैसे करके मैंने जो फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप है उसको स्टार्ट किया है और कैसे करके हमारे जो स्टार्टअप ने एक तरीके से रेस पकड़ी है, कैसे करके हमने अपनी ही ग्रोथ देखी है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। 2019 में हमने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट इको रिजॉर्ट ग्रुप। हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि हम उत्तराखंड में जितने ट्रैवलर आ रहे हैं उनको एक एक्सपीरियंस दें, क्योंकि हम जितने भी सारे ब्रांड यहाँ पे इंडिया में हैं जो हॉस्पिटैलिटी में टॉप के ब्रांड हैं वो अलग अलग तरीके से रूम सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। तो हमारा ये था कि हम एक तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कहीं ना कहीं से एक यूनिक अकोमोडेशन होगा, कि वो नॉर्मल कोई लॉज नहीं होगा या नॉर्मल कोई कमरा हम सेल नहीं करेंगे, हम एक एक्सपीरियंस सेल करेंगे। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 2019 में हमने चोपता तुंगनाथ जो एक लोकेशन है वहाँ पे हमने अपनी एक यूनिट खोली और धीरे धीरे करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, नैनीताल, अलग अलग जगह पे हमने यूनिट्स स्टार्ट करी हैं और अभी दो यूनिट हमारी उत्तराखंड के चमोली और टिहरी में हो जाएंगी। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर रहे हैं। बस ये चीज़ को हम मेन वो लेके चल रहे हैं जो हमारा यूएसपी है, कि हम एक्सपीरियंसेस ही सेल करें। जो भी आ रहा है वो सिर्फ, क्योंकि जितना भी ट्रैवलर उत्तराखंड में आता है वो कहीं ना कहीं अपने पूरी साल भर की कुछ छुट्टियां बचा के आता है, बहुत जगह से पैसे अरेंज करके आता है, अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ देख के आता है, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, उसके पैसे बहुत ज़्यादा कीमती है। और हमारा जो मेन मोटिव है क्या एज अ सिटीजन ऑफ हिल्स उत्तराखंड, क्या हम उसके जो पैसे का उसका पूरा वैल्यू उसको दें। तो बात करते हैं क्या हमारे स्टार्टअप ने कैसे रेस पकड़ी। तो स्टार्टअप में सबसे जो जरूरी है वो आपके लिए लोग हैं, लोग भी वो लोग जो आपके टीम में हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपके टीम में अलग अलग माइंडसेट के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टार्टअप स्पीड अप करेगा ग्रोथ को लेके। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे साथ कॉर्पोरेट से हमारे साथ अलग अलग फील्ड के कुछ लोग हमारी टीम में आना स्टार्ट किया। और इससे ये हुआ कि हमें जो फंडिंग चाहिए थी स्टार्टअप के लिए वो फंडिंग हमें इजिली मिलने लगी, क्योंकि टीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। और जब कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ आपका आइडिया देख के इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडिया बहुत सारे हैं। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं इस कमरे में भी मतलब हवा में ही इतने सारे आइडिया होंगे, लेकिन किसी भी आइडिया के ऊपर कोई भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करता है। कोई भी इन्वेस्टर है वो आपकी टीम देखता है, आपका मिशन देखता है, आपका विजन देखता है, आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करवा रहे हो उससे और उसको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। तो हमारे साथ भी जब हमारी लोगों ने टीम देखी और ये देखा कि ये फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं, तो लोगों ने धीरे धीरे धीरे धीरे करके हम पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। और जैसे जैसे हमारे पास फंडिंग्स आई तो हमें ऑब्वियसली हमने आईटी में इम्प्रूवमेंट करे, हमने अपने टेक्नोलॉजी से लेके ऑपरेशन तक हमने हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे। हमने जो फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लेके आना शुरू किया टीम में और यहाँ से हमारे पूरे स्टार्टअप को एक पेस मिला, जो अभी हम अपने आप को कहते हैं वो हम कहते हैं कि हम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिक अकोमोडेशन चेन है। और जो हमारा मिशन है वो है कि हम इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन बने, क्योंकि लार्जेस्ट अकोमोडेशन चेन बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने आप को जो अपनी हमारी यूएसपी है वो है कि हम लार्जेस्ट यूनिक अकोमोडेशन चेन हों, क्योंकि हम सिर्फ रूम या सिर्फ होटल सेल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवलर को एक एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी स्टार्टअप की ये जर्नी रही है और जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: सुनो सुनो भाई सुनो सुनो।
1: अरे क्या बोल रही थी मैं?
0: यही कि आरजे गौतम आ रहे हैं गपशप जंक्शन पर ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. आई एम बाय प्रोफेशन अ वेडिंग एंड इवेंट प्लानर एंड मेरी कंपनी का नाम प्लान योर मेमोरीज है. हम लोगों की मेमोरीज प्लान करते हैं, चाहे उनकी वेडिंग्स हो गए, बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गए, जितने भी हैप्पी ओकेजन्स होते हैं एक पर्सन की लाइफ में, हम ट्राई करते हैं कि उनकी उन मेमोरीज को अच्छे से प्लान कर पाए. व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय एजुकेशन, सिंस दैट टाइम आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स. देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट अप एज अ you know part time job. I was studying and sat as an earning source. I was working with different companies and as a freelancer. Part of that I used to travel to Mumbai, Jaipur, Udaipur and different parts of India, and I used to plan events with them. That is where I connected the dots ki you know I should get into this industry. And I have the skills because I was always a multitasker, and you know I was always confused ki I can do a lot of things nicely. What am I meant for? I had friends jo ek cheez acche se kar sakte the, to wo us profession ko choose kar rahe hote the. Main Anukriti har cheez ko acche se kar sakti thi. Aap mujhe koi bhi cheez de do, main research karke use acche se kar sakti thi. So when I started doing events, I connected the dots. कि इवेंट इंडस्ट्री में तुम्हें हर चीज की नॉलेज चाहिए होती है. यू शुड बी अ मल्टीटास्कर. एक साथ आपको हजार टीम्स को मैनेज करना होता है, एंड दैट इज वेयर माय स्किल्स फेल इनटू प्लेस एंड दैट यूरेका मोमेंट केम अप एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद माय कंपनी. हाउ डिड आई स्टार्ट ऑफ विद माय कंपनी हियर इन देहरादून? वन डे माय फादर रैंडमली टोल्ड मी दैट लेट्स स्टार्ट एन इवेंट कंपनी, एंड यू नो उधर से मैंने वो चीज पिक करी. एंड देन सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय पार्टनर आल्सो पुश्ड मी टू स्टार्ट द कंपनी बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू एम्पावरिंग वुमेन. आई वाज मायसेल्फ फ्रॉम अ वुमेन्स कॉलेज, सो आई वाज वेरी वोकल अबाउट ऑल द इश्यूज दैट वुमेन हैड टू गो थ्रू. वुमेन हाउ डिड दे वर्क, यू नो हाउ वर दे एक्टिव in different industries, how are they on top of the different industries. So us cheez se inspire hoke fir maine socha that why not, let's start off with the company. And aap manoge nahi, humne bahut chote chote decorations, home decorations, room decorations se start kiya, and aaj hum Dubai level ki weddings kar rahe hain. Aaj hamara office Dubai mein bhi hai, एंड हम लोग इंडिया एंड दुबई दोनों में, देहरादून एंड दुबई टू बी प्रिसाइज, दोनों जगहों पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स मैनेज करते हैं. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स हु मोटिवेटेड एंड पुश्ड मी टू एक्सेल एंड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू गो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. वॉक टॉक रेडियो.

doesn't me. You know, something is missing. I have stopped talking. I have stopped going out. Why? Then I understood that. And उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई. And then you know, I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें इंडिया में travel करी. You know, to sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that you know जो भी outside circumstances थी जो which were you know pulling me down, they could no longer affect me after that one year. And then I started, you know, getting back on the track, meeting people, doing some things जो मुझे अच्छी लगती थी, doing events, going out to different places and working with different people. And उनसे सीखा मैंने बहुत कुछ. मैंने 12th तक साइंस पढ़ी, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद मैंने इवेंट्स किया. ठीक है, तो आई थिंक आई हैड इनफ बैकअप्स को शन अवे करना. एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू आई एम मेंट टू सी द ऑपरेशंस ऑफ थिंग्स. सो अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, आई टेक्निकली डोंट हैव अ बैकअप प्लान, बट इफ आई हैव टू डू समथिंग आई नो आई कैन डू ऑपरेशंस वेरी वेल. ऑपरेशंस ऑफ एनी कंपनी, ऑफ एनी जॉब, आई कैन डू दैट वेरी वेल बिकॉज मैंने एक मास्टर ऑपरेशंस वाली फील्ड में काम किया हुआ है, जो इवेंट्स है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस देखने होते हैं. तो इफ आई कैन डू दिस आई कैन सी द ऑपरेशंस ऑफ एनी प्लेस एंड एनी बिजनेस. Walk Talk Radio.

अपने घर परिवार दोस्तों से दूर, कभी रेगिस्तान में तो कभी -50 के तापमान वाले बर्फीले हिमालय में अनगिनत मुश्किलों से जूझते हैं जो अपने देश की आन बान शान के आगे अपना शीश कलंक करते हैं जो ऐसे वीर योद्धाओं की वीर कहानियाँ सुनिए प्रोग्राम कॉल फॉर ड्यूटी में सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर।

मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना ना बहुत आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन हाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए सुनते रहें वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ।

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: Hi, मेरा नाम है जाननी और आप मुझे सुन रहे हैं Walk Talk Radio पर. And I am a teacher. I am teaching from last 8 years. I am from Dehradun. More than one year से cycling कर रही हूँ. और cycling हमें जरूर करनी चाहिए बिकॉज इट कीप्स यू फिट हेल्दी. साइकिलिंग इज अ काइंड ऑफ थेरेपी. इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट और इफ यू आर ओवर एग्जर्टेड नो देन इफ यू गो फॉर अ साइकिलिंग ओनली फॉर वन आवर यू फील वेरी फ्रेश. वॉट आई बिलीव एंड वॉट इज माई एक्सपीरियंस. साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज बिकॉज एज यू आर सींग की देर आर सो मेनी हेल्थ इश्यूज. इफ यू डू साइकिलिंग नो वॉट आई ऑब्जर्व एंड वॉट आई फील इट कीप्स यू फ्रेश होल डे.
2: Walk Talk Radio. Walk Talk. Walk Talk Radio. जिम्मेदारी अपने रास्ते खोजती है लेकिन गैर जिम्मेदारी बहाने बनाती है. अब आपको सोचना है कि आपको जिम्मेदार बनना है या गैर जिम्मेदार.
3: Tune in for a better life.

बाल खोले लेके आए हो मेरा ताजा तरीन हर बीट मारे साथ बेहतरीन मेरे बदन से ज्यादा मेरे सुर हसीन नाम तो तू जानता है नेहा भसीन जैसे

अनकही सी बातों में, मीठी सी वो मुलाकातों में मैं रहा। बहुत सा मेरे सारे जख्मों को दिए तूने बहुत दवा, लोग साले अपनों को देते रहते बहुत थका, बहुत खफा इन सपनों से बहुत खफा। तू भूल जाती चुपकों में

तुझे क्या तू तो मेरी हो गई हो, मैं किस वफा की उम्मीद रखूं, तेरे ताने सुन लेता तो गाना ये आज मेरे साथ ना रहता, काश बहाने ना देता तो तू शायद आज मेरे साथ ही रहता, काश ये काश का जिक्र ना रहता, सियाही भी पन्नों से बस कफा रहता, और आज भी खुद को मैं कहता ही रहता, तू साथ में होती तो ये सब ना सहता।

0: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, एके धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें जो उस समय की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में आपको पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो सक्सेस मिल जाए, और ये भी नहीं है कि हमेशा स्मार्ट दिमाग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ के शॉर्टकट में जा रहे हो तो वो आप सक्सेस हो जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वही है कि आप जिस परिस्थिति में हो, आप देखो, चीज़ों को एनालाइज करो और वही करो जो बस जितनी की ज़रूरत है वहाँ पे।
1: आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सपने देखना कभी मत छोड़ना, और बड़े देखना, बहुत बड़े। क्योंकि अगर मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले में बैठ के वीडियो बना के पूरे इंडिया में वायरल हो सकता हूँ, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस सपने देखते रहना, और आपकी लाइफ में आपके संघर्ष आएंगे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ होंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे अपने हिसाब से। तो जीवन में लड़ाइयाँ लड़ते रहो और संघर्ष जारी रखो, और सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।
2: जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। Mock Talk Radio, tune in for a better life.

0: रेडियो।
1: वो वक्त कितना भी मुश्किल हो, दिल में हिम्मत रखकर आगे बढ़ते रहिए। वो वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है।
0: वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत, AKA धाकड़ रिपोर्टर, और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सोसाइटी जो है, हम आप जैसे लोगों से मिलकर ही बना है, इसको ऐसे ग्रुप में देख लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है तो एक रियलिटी होती है सबकी अलग अलग, और उसमें एक रियलिटी होती है कि जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैसी रियलिटी का पार्ट बनना चाहिए। आप हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, और वो इन सोसाइटी के मापदंडों पर ही चले जो कि बने हुए हैं, और उन्हीं में चल के अपना जीवन काट दे तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। आपको अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उससे बड़े गोल्स आपके होने चाहिए। और ये सोसाइटी ऐसा है कि आप कुछ नहीं रहोगे तो आपका मजाक उड़ाएगी। जो भी लोग होंगे आपके आसपास वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बड़े सपनों का भी मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर लोगे ना तो यही सोसाइटी आपको ऐसे एग्जांपल देखेगी, क्योंकि आपने जो किया है उनकी जो रियलिटी है, जो एवरेज रियलिटी है उससे अलग अलग आपने किया है, तो आपको ऐसे एग्जांपल देखेंगे। तो यही है यार कि किसी की सुनो नहीं, किसी की वो ये नहीं कि कोई बोल दिया तो उसको फॉलो ही करना है। अपने गोल्स रखो, अपनी रियलिटी बनाओ और अपने सपने को खुद ही पूरा करो। जब टाइम सही नहीं चल रहा होता है तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, मुफ्त का ज्ञान, और उसमें उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि आपने इतना बड़ा सपना देखा है और आप उसे पूरा कर लोगे। उन्हें लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा, तो अपने हिसाब से वो ज्ञान देते हैं। तो जब वीडियो नहीं चल रही थी तो वायरल होने के बाद भी 8-9 महीने 10 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी। तो इस बीच कई लोग आए और जॉब ऑफर मिलते थे कि यहाँ जाओ जॉब कर लो, यहाँ वैकेंसी निकली है, ये क्या कर रहे हो, यूट्यूब नहीं होगा। बट मेरा जो वो था, गोल था, वो क्लियर था कि मुझे यूट्यूब ही करना है, और एक ना एक दिन लोगों तक ये चीज़ें जाएंगी और वो पसंद करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हो और उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो।
0: Walk Talk Radio.

अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। बट ये सफलता कब आएगी, किस दिन आएगी, किसी को नहीं पता। हम अगर दूसरों को कंपेयर करेंगे कि उसकी सफलता हो चुकी है, मेरे साथ के लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो वो उनका भाग्य और उनकी मेहनत है, उन्होंने उसके लिए क्या किया। कभी कभार उनके बताने में मत आइए मेरे साथ ऐसा चल रहा है। हर आदमी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, सफल दिखाना चाहता है। कंसंट्रेट करिए खुद पे। आपकी सफलता का दिन कोई निश्चित नहीं है, बट अगर आपकी मेहनत में कमी नहीं है और आपका प्रोडक्ट या आपका काम आपसे मिलता हुआ है, तो आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और जिस दिन ये सफलता मिलेगी, उस दिन आप समझेंगे कि ये सारा वक्त, ये सारा समय, ये रोड मुझे चलनी ही थी वहां तक पहुंचने के लिए। यही लाइफ की जर्नी है। वॉक टॉक रेडियो।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज मेरे दोस्त भी आए हैं आप सभी के साथ मिलने के लिए। जी हाँ, क्योंकि जब गेस्ट होते हैं तो वो दोस्तों जैसा रिश्ता तो हो ही जाता है। तो पॉडकास्ट की सीरीज में वॉक टॉक पर आज के हमारे मेहमान है हौसला फाउंडेशन से मनीष पयाल और शंकर। जी हाँ, कौन है ये, क्या करते हैं, हौसला फाउंडेशन क्या है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं मनीष और शंकर का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का वॉक टॉक रेडियो पे।
1: थैंक यू सो मच किरण फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वॉक टॉक रेडियो।
0: सो कैसा लग रहा है आज वॉक टॉक में आके?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है आज तो।
0: और सबसे पहले मनीष जी आपसे कि हौसला फाउंडेशन क्या है? हौसला, जैसे कि हम सभी को पता है शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन हौसला फाउंडेशन के लिए इस शब्द के क्या मायने हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इस नाम को क्यों रखा गया?
2: मैम, हौसला फाउंडेशन के लिए जो शब्द है हौसला, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम बात करें जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसको उनको हम एक तरह से एजुकेशन दे के उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, ताकि वो बड़े होके कुछ बने, है ना, स्कूल जाए, बड़े होके कुछ बने, मतलब उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्हीं का नहीं, वहाँ जितनी भी स्लम एरिया है देहरादून में, हमारा पर्पस यही है कि सबका हम हौसला बढ़ाएं, सबकी मदद करें हौसला के थ्रू, और एजुकेशन को एक अच्छी तरह से अच्छे मुकाम पे ले जाएं।
0: ओके, असल काम क्या है, क्या करता है हौसला फाउंडेशन लोगों के लिए, और आगे अभी तक जितनी भी जर्नी आप लोगों की रही है, ये कहाँ से शुरू हुई?
1: Okay, Kiran, so let's get back to history a little bit. I actually come from a background where I'm the only educated person in my entire family.
0: Okay.
1: So I understand the value of education a lot. तो कहते हैं ना कि एक खानदान में अगर एक बच्चा पढ़ ले तो उसके सामने वाली सात पुश्ते अच्छे, मतलब well educated होते हैं. So I understand the value of education and I come from that background. जो background से हमारे बच्चे हैं हौसला के, I come from the same background. But then you will actually see a difference while you and I've always taught our kids ki agar aap padhai karoge na paisa to koi bhi kama leta hai dekho but aapko society mein izzat milegi log aapko puchhenge and you see me sitting over here I'm one of those kids if you go back 25 years so our mission is very simple with hosla what we are trying to do is we are trying to bring a change by providing awareness We're only trying to bring a change and we're making sure कि जितने तक हम पहुंच पाए, जितनों को हम पढ़ा पाए, हम करेंगे. And our mission is actually to provide basic education to the kids and we will support them financially with all basic needs and we'll make sure that they step into mainstream education.

उजाले जिनके मुंह पे तो ये सूरज भी जले। मांगी मन्नते भी काफी, जन्नत है जहाँ की तू अमर रहे सदा ही। बातें बाकी सफर में काटे काफी, गम को हम बांटे तो ये दिल क्यों मांगे माफी।

औरों की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उतनी दिक्कत भी नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर से जो है पेरेंट मेरे काफी सपोर्टिव भी रहते इस मामले में, काफी मतलब फ्रैंक माइंड का हमारा जो फैमिली है पूरा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की कॉलेज जो मैंने किया था अपना, उन्होंने बी ए एम ए जो मेरा म्यूजिक में होता मेरा हल्द्वानी से हुआ था। तो मतलब कि मेरे पापा ने मुझे कभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोला कि जैसा होता ना पहाड़ में नॉर्मली कि मतलब लड़का जवान होता 18 साल का कि चलो आर्मी की लाइन पे लग जाओ, है ना। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था नॉर्मली। बाकी मैं एक एथलीट भी रहा हूँ अच्छा, बट फिर भी उसके बावजूद भी मुझे कभी ऐसा फोर्स नहीं किया गया था कि आर्मी में जाओ या फिर कुछ और करो। तो मुझे अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ खास दिक्कत वहाँ पे नहीं आई थी। हाँ, जब इस फील्ड में आया था उसके बाद में तब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो कि अब मैं आपको आगे बताऊंगा इस मामले में।

0: Walk Talk Radio. Tune in for a better life.
1: वो कहते हैं ना कि if your plan doesn't work, don't worry. God has some other plan for you. तो यार अगर किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो चीज आपको नहीं मिल पा रही हो, तो परेशान मत हो दोस्त। ये सोचो कि भगवान ने इससे भी अच्छा आपके लिए कुछ सोचा है। भगवद गीता में भी ये लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो वही करना है, अपनी मेहनत पे और भगवान पे यकीन रखना है।
0: वॉक टॉक रेडियो।

तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रास्तों पर अकेले ही निकल पड़ते हैं, और जब हम अपने दोस्तों से साथ की आशा करते हैं तो वो अधिकतर इनकार कर देते हैं। तो इस समय पर आप इस बात को समझ लें कि आपका साथ ऊपर वाला दे रहा है, और जो लोग आपका साथ देने से मना कर रहे हैं उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो आपके साथ खड़े हो सके। और ऐसी और भी इंस्पायरिंग बातों के लिए सुनते रहे वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है मनीष नेगी। मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ और मैं आ आया हूँ वॉक टॉक रेडियो में। नॉर्मली जैसे हमने सीखा पहले, कोई भी बंदा म्यूजिक में कभी भी जो है परफेक्ट नहीं होता है। जिसको अगर ये पता चल गया कि बस मेरा हो गया, मैं तो परफेक्ट हूँ, अब उसका फिर वहाँ से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरा मानना है। उसके बाद में फिर हमने सीखा, लेकिन जब हम सीख रहे थे तब कुछ आर्टिस्ट भी आए थे जिन्होंने मतलब कि सीखा बिखा नहीं ताल, बट ये था कि उनके गाने अच्छे वो कर गए, क्लिक कर गए। तो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये दुख की बात है कि अच्छे आर्टिस्ट को उतना जल्दी लेते नहीं हैं, और अगर जिनके गाने अगर क्लिक कर जाएं, चाहे उनके लिरिक्स का मीनिंग समझ में आए ना आए, कोई अगर अच्छा गाना भी देता हो तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं करके आपका आपकी वॉइस अच्छी है, आपके गाने अच्छे हैं, पर आपके गाने में डांस नहीं है। ये डांस जो शब्द है ये उत्तराखंड के लिए एक दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आज हर गानों में डांस ढूंढते लोग। आज वो सुकून उत्तराखंड का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुकून जो है मरने वाला, थोड़ा लर्निंग इज अर्निंग होती है यहाँ पे। और ये शब्द तो मतलब म्यूजिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने इसका रखता है लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं तब तक आप यहाँ पे कमाओगे भी नहीं। पर ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात भी है कि यहाँ सीखने के बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे। और जहाँ पे मैं अगर सीखने की बात करूँ, अगर आपको म्यूजिक के फील्ड में, अगर किसी भी जो नए आर्टिस्ट जो मुझे अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक के फील्ड में आना है तो आप जो है किसी और को देख के मत आइए कि बस उनके गाने फेमस है, हम स्टूडियो में जाएंगे गाना रिकॉर्ड करेंगे वीडियो बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अगर जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपका वो गाना सिर्फ एक बार फेमस होगा, दो बार फेमस होगा। जब आप सीखेंगे तो आप जिंदगी भर के लिए एक आर्टिस्ट बन जाएंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप स्टूडियो आर्टिस्ट तक ही सीमित रहेंगे।

0: Radio. Tune in for a better life. Walk Talk Radio.
1: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। मैं हूं आप सभी के साथ किरण, और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में आई है, मेरे सामने बैठी हुई है, और इतनी कूल वाली वाइब आ रही है ना मुझे सच्ची में उनसे, मतलब अलग ही अंदाज है। कौन है, लड़का है लड़की है? भी देखो मैं बताती हूँ कि कूल वाइब सिर्फ लड़के नहीं देते हैं, लड़कियां भी बहुत देती है। और इस वक्त जो मेरे साथ बैठी है ना, उनको तो आई थिंक कौन नहीं जानता, पूरा इंडिया जानता है। कैसे जानता है ये भी सीक्रेट है, जैसे ही नाम बताऊंगी ना आपको भी पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं नीरू पाल का, जो कि रैपर है और देहरादून से है। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच।
1: कैसे हो आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए।
2: मैं भी,
1: क्योंकि पॉडकास्ट में ना जब हम बात करने बैठते हैं तो बात बहुत जगह से निकलती हुई, ऐसी ऐसी जगह निकलती है कि बहुत कुछ ऐसा पता चलता है लोगों के बारे में, हमारे साथ जो भी जुड़ता है उसके बारे में, कि बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज खासकर जो रैपर कम्युनिटी है, जो रैप करते हैं, जो हिप हॉप करते हैं, जो डांस करते हैं, जो आर्टिस्ट है, जो कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो आज बहुत कनेक्ट करने वाले हैं आपकी लाइफ से। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि नीरू पाल, जिसे दोस्तों हमने MTV हसल फर्स्ट सीजन में देखा था, आपका जो धाकड़ रूप है ना वो हमने देखा था आपके रैप के थ्रू। एक्चुअली नीरू पाल पर्सनल लाइफ में एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास इंसान है, वो कैसी लाइफ है आपकी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
2: मेरा नाम नीरू पाल है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है मेरे बारे में, और थैंक यू सो मच आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो नीरू पाल बेसिकली मुझे बनने में बहुत टाइम लगा, और मैं सेल्फ मेड बंदी हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या फिर हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे खानदान से आते हैं। मैं एक बहुत छोटी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे जो भी मैंने किया है अपने दम पे किया है, और यही शायद मुझे नीरू पाल बनाता है। यही चीज की जो मेरा सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड हूँ मैं, और जो मेरा ये नेचर है, मेरा बिहेवियर है, यही मुझे नीरू पाल बनाता है, जो कि सबसे हटके है।
1: हटके तो आप हो, नो डाउट।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। आपने साइकोसोमेटिक वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। साइकोसोमेटिक दो शब्दों को मिलाकर बना है, साइको और सोमा। साइको शब्द माइंड को रिप्रेजेंट करता है और सोमा शब्द ग्रीक लैंग्वेज में बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि जो भी काम हम बॉडी पे करते हैं उसके रिजल्ट माइंड पे आ जाते हैं और जो काम हम माइंड पे करते हैं उसके रिजल्ट बॉडी पे आ जाते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि अगर आप अपने मन में आंख बंद करके सिर्फ नींबू के बारे में ख्याल करें तो आप देखेंगे आपके मुंह पे पानी आ गया। नाउ इट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग, फिजिकली वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है लेकिन सिर्फ नींबू के बारे में सोचते ही आपकी बॉडी रिएक्शन कर रही है। ठीक ऐसे ही अगर बॉडी के साथ कुछ किया जाता है तो उसका रिएक्शन सीधे सीधे माइंड पे आ जाता है। इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जब आप सो रहे होते हैं, एक इंसान बहुत गहरी नींद में है और आप अगर एक बर्फ का टुकड़ा धीरे से उसके तलवे पर अगर लगाएंगे तो वो ये सपना देखना शुरू कर देगा कि वो बर्फ के अंदर किसी बर्फ के पहाड़ पे नंगे पैर चढ़ा जा रहा है और उसको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप उसके पैर के तलवे के पास कोई माचिस की तिल्ली लगा देंगे, यानी थोड़ा सा फायर आप वहां पर तपिश देंगे उसको आग की, तो आप देखेंगे कि उसको लगेगा कि मेरे को कोई नरक की आग में जला रहा है। इट हैपेंस मेनी टाइम्स कि आपको बॉडी के साथ क्या हुआ काम सीधे आपके माइंड पे रिएक्ट करता है, जिस तरह से माइंड पे क्या हुआ काम आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी बॉडी को पीक पोजीशन में रखते हैं तो आपका माइंड भी पीक पोजीशन में काम करता है। शायद इसीलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन में हो तो उसको जिम जरूर जाना चाहिए, उसको फिजिकल एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए अगर वो कर सकता हो तो, नहीं तो वो सिर्फ मॉर्निंग में घूमने ही चला जाए, मॉर्निंग वॉक पे चला जाए या हल्की फुल्की योगा की एक्सरसाइजेस करे। लेकिन जो कुछ भी हम शरीर के साथ करते हैं उसका रिजल्ट हमारे माइंड पे आने ही वाला है। इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बहुत ही यूजफुल बना सकते हैं। मतलब आपके हाथ में एक ऐसा कंट्रोल आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार मैं अपने माइंड को कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। आपने जब भी किसी डिप्रेस आदमी को देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसके कंधे झुके हुए होते हैं, वो धीमे धीमे चल रहा होता है, वो नीचे की तरफ देख रहा होता है और उसकी ब्रीदिंग उथली होती है, यानी ही इज हैविंग शैलो ब्रीदिंग। अगर आप इसको अपोजिट कर दें, यानी कि अगर आप इस बॉडी की जो लैंग्वेज है इसको चेंज करने की कोशिश करें, यानी अगर आप अपने कंधे को खींच के रखें, आप बिल्कुल सीधे खड़े हों, यानी आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी जो ब्रीदिंग है वो चेस्ट में डीप जानी चाहिए, यानी आपको बहुत डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए और आपको ऊपर की तरफ देखना चाहिए, तो ये एक ऐसी फिजियोलॉजी आपकी हो जाएगी, इतनी रिसोर्सफुल हो जाएगी कि आपको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देगी। आप देखिए, अगर हम जब भी किसी ऐसे जवान को देखते हैं जो सेना में है तो अक्सर आप देखोगे कि वो लोग, उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और उनकी चेस्ट आगे को निकली हुई होती है। रीजन क्या है? आप उनके कंधे कभी भी झुके हुए नहीं पाएंगे क्योंकि उनके साथ इस चीज की इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो उनकी डेली लाइफ के अंदर हैबिट में आ जाता है। तो डेफिनेटली हम कभी भी ये चाह नहीं सकते, ये सोच भी नहीं सकते कि हमारी सेना के जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे जाकर, वो कभी किसी डिप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें या उस तरह की माइंड की स्टेट के अंदर रहें। लेकिन हम लोग अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं या हमारे जानने वालों के साथ, अगर कोई भी आपको ऐसा इंसान दिखता है जो कि डिप्रेशन से जूझ रहा है तो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके वो अपने इंटरनल स्टेट्स को चेंज कर सकता है बहुत आसानी से। एक रिसर्च करी गई जिसके अंदर ये कहा गया कि आप अपनी गर्दन को झुका के रखें और कुछ निगेटिव इमेजिनेशंस करें। लोगों ने बहुत आसानी से कर ली। उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी चिन को अप रखें और ऊपर की तरफ देखें और उसके बाद कुछ निगेटिव सोच कर देखें। आपको जानकर हैरानी होगी कि 65% ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू डू इट, यानी वो कर ही नहीं पाए। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि आप अपने कंधों को ऊपर रखें, अपनी चिन को अप रखें और उसके बाद आप कुछ निगेटिव सोच कर देखें। आप नहीं सोच पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी बॉडी और माइंड में इतना गहरा कनेक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक बुक पढ़ रहा था, नॉर्मन कुजिन्स की किताब थी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। इस बुक में उन्होंने बताया है कि उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया कि ये आसानी से ठीक नहीं हो सकते। उनके ठीक होने के चांस मात्र 1 in 500 थे, तो बहुत मुश्किल था उनका बचना। लेकिन उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ में। उन्होंने ऐसी फिल्में देखनी शुरू कर दी, ऐसे किताबें पढ़नी शुरू कर दी, ऐसे लोगों के साथ रहने लगे, ऐसे प्रोग्राम्स देखते थे वो जिनसे उनको बहुत ज्यादा हंसी आती थी। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखिए, हंसने की वजह से धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज में सुधार आना शुरू हो गया और बॉडी लैंग्वेज में चेंज आने की वजह से उनके इंटरनल माइंड की स्टेट्स भी चेंज होनी शुरू हो गई। कुछ ही महीनों के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर्स भी उनको देखकर बुरी तरह से हैरान रह गए। नॉर्मन कुजिन्स बोलते हैं कि माइंड और बॉडी की जो रीजेनरेशन की पावर है उसको हमें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। इट कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको आज दी है, मैं चाहूंगा कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और किसी भी परेशानी से डरे नहीं। हर चीज का हल होता है और कई बार वो इतना आसान होता है कि हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता तो हम उसे देख नहीं पाते। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं वॉक टॉक रेडियो पर, ताकि हम आपको इस तरह की बातें बता सकें जो आपको डेली लाइफ में अपनी आंखों के सामने रहने के बाद भी दिखाई नहीं देती। बातें जारी रहेंगी, मैं आपको ऐसी ही बातें बताता रहूंगा जिससे आपके ज्ञान का वर्धन हो और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। मैं हूँ गिरेंद्र भारती, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: लगी तो नहीं? अरे
1: आई एम गुड, आई एम गुड।
0: चलो मैं सिखाती हूँ।

जिस खेल से उन्हें प्यार था उन्होंने शादी भी उसी से की, मतलब खेल से नहीं की, लेकिन जो उस खेल को पसंद करती थी, जो उस खेल को खेलती थी, शादी भी उन्हीं से की। फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवीवी लक्ष्मी, उन्होंने शादी की पीवीवी लक्ष्मी से, वही उनकी गर्लफ्रेंड थी, वही उनकी वाइफ बनी। हम बात कर रहे हैं पुलेलाल गोपीचंद की। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मैं हूं मुस्कान और ये है शो अनसंग चैंपियंस का। आखिर ऐसे बहुत सारे चैंपियन हैं जिन्होंने लाइफ में ना जाने क्या क्या हासिल किया है, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपको हर रोज कुछ नया सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और इसी के साथ आज हम बात कर रहे थे पुलेला गोपीचंद की। उनकी एक बेटी है, उनका एक बेटा है, बेटी गायत्री, जो भी खेलों में ही आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा जब हमने स्टूडेंट्स की बात की तब हमने आपको दो नाम तो बहुत अच्छे से बताए, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, लेकिन उनके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम पर बहुत जाने माने हैं, जैसे कि ज्वाला गुट्टा, पी कश्यप एंड श्रीकांत कदम्बी, तरुण कोना। ये ऐसे गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी के प्लेयर हैं जिन्होंने भारत में बहुत नाम रोशन किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। आखिर बैडमिंटन एक टाइम पर ऐसा खेल था जहां पर ना ग्लैमर था ना ही पैसा था। अगर सिर्फ एक प्लेयर थे तो वो थे प्रकाश पादुकोणे, जिन्होंने बैडमिंटन को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। और हम सबको एक टाइम पर ऐसा लगा बस भारत खेलों में बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये सब संभव हुआ इन खिलाड़ियों की वजह से। अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आखिर पी लक्ष्मी कौन थी, पर आपको पता है जब वो बैडमिंटन खेलती थी उस एरा में देयर वाज नो सपोर्ट सिस्टम और बिग मनी, पैशन ही सब कुछ हुआ करता था एक खेल के लिए। पी लक्ष्मी गोपीचंद इज द फर्स्ट वुमेन ओलंपियन। उन्होंने 1996 में सिंगल्स बैडमिंटन खेला था फर्स्ट, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और आपको पता है उनके कोच कौन थे? उन्हीं के फादर कृष्ण राव वॉज अ कोच व्हेन शी वॉन द जूनियर नेशनल ट्रिपल क्राउन बिफोर मूविंग फ्रॉम विजयवाड़ा टू हैदराबाद इन 1993। और उन्होंने ज्वाइन किया द्रोणाचार्य SMRF एट फतेह मैदान इंदौर स्टेडियम। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बताया था कि आरिफ ही पुलेला गोपीचंद के फर्स्ट कोच थे, शायद ये दोनों यहीं पर मिले होंगे, है ना? यही सोच रहे ना? हाँ, हो सकता है। इनके बच्चों की बात करें तो गायत्री और विष्णु, दोनों के नाम कितने ब्यूटीफुल है ना, भगवान विष्णु और भगवान गायत्री पर रखे गए हैं। इस एकेडमी में ये दोनों बिल्कुल एक प्लेयर की तरह और एक ट्रेनिंग की तरह ही खेलते हैं। और जब पुलेला गोपीचंद से पूछा गया कि आखिर उनके बच्चों ने बैडमिंटन को कैसे चुना, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया था, बस वो ये बचपन से हमेशा देखते आए हैं, अपनी मदर को, अपने फादर को उन्होंने हमेशा बैडमिंटन खेलते हुए देखा है और उन्होंने खुद से इस गेम को चुना। आपको पता है वो दोनों इसी एकेडमी में हैं, यानी कि पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में। उन्होंने बताया इस एकेडमी में टोटल 50 बच्चे हैं और उन्हें हर बच्चे में अपना एक ट्रेनी नजर आता है और हर ट्रेनी में अपना बच्चा नजर आता है। सीनियर टीम के नेशनल कोच होने के नाते मैं जूनियर टीम के साथ बहुत ज्यादा नहीं रहता हूं, पुलेला गोपीचंद ने ये कहा था। लेकिन गायत्री और विष्णु अभी जूनियर टीम में खेलते हैं और मैं हमेशा से ऐसे प्रे करता हूं कि वो दोनों इस लाइफ में इस गेम के साथ इंसाफ करें और दोनों बहुत आगे तक जाएं। और आई एम प्रीटी श्योर कि जिसके फादर ने इतनी मेहनत की हो, अपना सपना पूरा ना होने पर दूसरों में उस सपने को देखा हो, उनके बच्चे भी यही चीजें सीखकर आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। आप भी अपने बच्चों को यही सिखाइए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हर चीज के साथ इंसाफ करना बहुत जरूरी है। मैंने एक कहावत सुनी थी कि हर काम को ऐसे करना चाहिए कि वो काम भी कहे कि वाह किसने किया था इस काम को, जैसे अभी मैं कर रही हूं। आपको इस कहानी को सुनाने के लिए मैंने पहले बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी और मैंने सोचा जब मैंने इतनी मेहनत की ही है तो क्यों ना आप सबको इसके बारे में बताऊं। चैंपियंस की कहानी जानना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब मैं हर रोज आपको एक चैंपियन की कहानी सुनाने वाली हूं, सिर्फ यहीं पर रेडियो वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर बेटर लाइफ। मैं मुस्कान अनसंग चैंपियन में आपके लिए कुछ नया लेकर जल्द ही हाजिर यहीं पर रहूंगी, लेकिन अभी के लिए बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि हर बात, हर चीज, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं, बस कोशिश कीजिए उनसे सीखने की और उन सारी चीजों में से बस पॉजिटिव चीजें निकाल लीजिए और नेगेटिव को वहीं छोड़ दीजिए। अभी के लिए बाय बाय।

इंसान को पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी अप्रोच बनाती है। किसी भी चीज को किस तरीके से वो लेगा, ये डिपेंड करता है ना इस पर। वही वाली बात की ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, मेरा नाम है समर ऑन वॉक टॉक रेडियो, एक ऐसा शो जहां हम कोशिश करते हैं कि दुनिया जहां से थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी समेट के लाएं और आपके सामने रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा साथ निभाएं पॉजिटिव रहने में, स्माइल करने में, यही तो चाहिए हमें। अप्रोच, किस चीज को किस तरीके से लिया जाता है। जैसा कि एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया कि ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, ये अप्रोच पर डिपेंड करता है ना। ये अपना नजरिया होता है जिसको हम नजरिया बोलते हैं। इन दो नजरियों की बात हमने हमेशा की है बचपन से लेकर के आज तक, स्कूल, कॉलेज, न्यूज़पेपर, इनफैक्ट आजकल न्यूज आर्टिकल्स, तमाम जगहों पर इनका जिक्र होता है। कई एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। इस केस में या इस एग्जांपल में एक तीसरी अप्रोच भी तो हो सकती है जिसके बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की, और वो अप्रोच है ये कि फर्क क्या पड़ता है ग्लास आधा भरा है आधा खाली है। अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं उसे पीऊंगा ना, वही वाली बात, मैं क्यों गुठलियां गिनूं, मुझे आम खाने हैं। एक ये भी अप्रोच हो सकती है, काम से मतलब, मैं जिस रास्ते जा रहा हूं वहां की सड़क कितने फिट की है वो मुझे नहीं जानना। क्या मेरी गाड़ी जितनी चौड़ी है उस सड़क पर चल सकती है, इतनी जानकारी मेरे लिए काफी है। इसको कुछ लोग कैजुअल अप्रोच या कैजुअल एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, बट मेरे लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। काम से काम, इसका एक बेनिफिट होता है कि आप बहुत ज्यादा उलझनों में नहीं फंसते हो। आपका क्लियर है विजन, आपको क्या करना है। प्यास लगेगी आधा ग्लास पानी पी लूंगा, प्यास नहीं लगेगी आधा ग्लास पानी रखा हुआ है। आधा भरा है आधा खाली है, इस बात पर लड़ाई लड़ने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, उतने में कुछ प्रोडक्टिव कर लेंगे हम। शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे यकीनन, जो कि ज्यादा बहस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अब बहस शुरू होने वाली है तो वो तुरंत ही कट ऑफ कर लेते हैं, उससे साइड में निकल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। मेरे ऑफिस में ऐसा एक पर्सन है, राम उनका नाम है, नाम भी तो देखो कितना प्यारा है। आमतौर पर हर एक ऑफिस का यही रिवाज होता है कि आप जब बैठोगे, बातें करोगे, चाय पर, सुट्टे पर, थोड़े बहुत डिस्कशन हो जाते हैं जमाने के, इधर उधर के। किसी के कैबिन में जाकर के अगर आप बैठते हैं तो कुछ देर के लिए वो अपना काम छोड़ देगा और आपकी बातचीत होने लगेगी। राम के कैबिन में जब भी कोई जाता है, तीन या चार लोग जाएंगे, बैठेंगे, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक मिनट, घड़ी लगा के एक मिनट एंटरटेन करेगा और उसके बाद में अपने काम में लग जाएगा। आप बैठे हैं, बैठे रहिए, बात करते रहिए, आपकी बात का जवाब दे देगा जरूरी है तो, नहीं तो वो अपने काम से काम, एंड दैट्स इट। मुझे इस इंसान का एटीट्यूड इतना पसंद है यार, कि उसको पता है कि उसके पास में 500 काम है करने को, वो बैठ करके ये लेजर टाइम के नाम पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फर्क होता है लेजर टाइम और प्रोडक्टिविटी को कम करने में, जरूरी वो भी है लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। हर चीज की मात्रा का ध्यान रखें, वो जो मात्रा है वो हमको नहीं पता चलती कई एक बार। अप्रोच की बात हो रही थी, अप्रोच से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। बाइबल की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। एक गांव में गोलियत नाम का एक राक्षस था। उस पूरे गांव में उसका खौफ ऐसा कि शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हर दिन वो उठा करके किसी ना किसी को ले जा रहा है और उससे पूरा गांव परेशान है। कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही चला आ रहा है। लंबे टाइम तक यही सब चलता रहा क्योंकि उस राक्षस से बचने का तरीका था ही नहीं किसी के पास में। वो इतना शक्तिशाली था, इतना विशालकाय था, उसके आगे कोई टिकता ही नहीं था। वो जब भी आता तो लोग भागने लगते उससे बचने के लिए। और फिर एक दिन डेविड नाम का एक भेड़ चराने वाला लड़का उसी गांव में आया। गांव वालों ने कहा डेविड से कि बेटा एक टाइम के बाद ना घर से बाहर मत निकलना क्योंकि यहां पर सेफ नहीं है, वो राक्षस है, वो खा लेता है। तो डेविड ने पूछा कि आप लोग इतना डरते क्यों इस राक्षस से। लोगों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि आप कितनी ही कोशिश कर लो उसको मार नहीं सकते, आप विशाल काय है, मेरे शरीर के साइज का तो उसका सिर्फ और सिर्फ हाथ होगा। डेविड ने कहा सही कह रहे हो आप, वो राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है कि बड़ा होने की वजह से हम उसको मार नहीं सकते, बल्कि हकीकत तो यह है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया हुआ निशाना चूक ही नहीं सकता। आज अगर वो छोटा होता आप उस पर निशाना लगाते, चूकने का चांस था। आपको पता है डेविड ने उस राक्षस को किससे मारा? गुलेल से। राक्षस वही था, लोग भी वही थे, सिर्फ और सिर्फ डेविड की अप्रोच अलग थी, सोच अलग थी, नजरिया। कितनी बड़ी चीज होती है ये नजरिया जो है, ये इंसान की पर्सनैलिटी में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
जिस तरह से जब हम काला चश्मा पहन लेते हैं तो हमें हर तरफ काला काला दिखता है, लाल रंग का चश्मा पहन लेते हैं लाल लाल दिखता है, ठीक वैसे ही हमारा जो नजरिया है ये हमारे दिमाग पर लगा हुआ चश्मा है। हमें कैसा दिखेगा ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। हम अगर जो नेगेटिव सोचेंगे तो हर तरफ निराशा, दुख, सेटिस्फेक्शन किसी के अंदर नहीं दिखाई देगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें आसपास लोग खुश दिखाई देंगे, सब सेटिस्फाइड हैं। कभी ऐसा नोटिस किया है आपने कि आपके साथ में ज्यादा बुरी चीजें तभी होती हैं जबकि आप थोड़ा सा मेंटली ऐसे सैड होते हो। आपने एक बार सोच लिया यार सब कुछ ठीक नहीं हो रहा यार, फिर ज्यादा बुरी चीजें होती हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा बुरी चीजें तब हो रही है, बस मुद्दा यह है कि तब छोटी सी ही गलत चीज को आप बहुत बड़े तरीके से ले लेते हो, आप बहुत बड़ा बना देते हो। तो अभी हम पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ में इस दुनिया को देखें या फिर नेगेटिव अप्रोच के साथ में। अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हर इंसान हमें अच्छा लगेगा। हालांकि हर एक इंसान अच्छा है नहीं इस दुनिया में, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई एक खूबी तो हम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन वहीं अगर जो नेगेटिव चश्मा पहना हुआ है तो हम बुराइयां ढूंढते रहेंगे लोगों में, इसका ये गंदा, इसका ये गलत, इसका वो गलत। तो अपने आप को बदलने से पहले अपने इस चश्मे को बदलते हैं हम। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, एक ऐसा पॉडकास्ट शो जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिल सके। और अगर जो थोड़ी सी भी होप मिली है ना तो बाकी का काम आपको करना है, इस होप को थोड़ा सा और बढ़ाना है, स्प्रेड करना है। आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, स्टे ट्यून्ड, अगले एपिसोड में मिलते हैं।

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक रेडियो, वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। वॉक टॉक रेडियो।
1: Mm-hmm.

0: हाँ मुड़ जा, गायब हो जा, गायब हो जा।
1: You are listening to Startup Strategies with Ajit Nigam.
2: नमस्कार, रेडियो वॉक टॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अजीत निगम है और मैं यहाँ पे आपके साथ बिजनेस की बातें करने आया हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करने आया हूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि अपना बिजनेस कैसे करें, क्या करें, बहुत सी गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ ना हो इसलिए हम क्या स्टेप्स लें। तो इस बात को मैंने 5-6 पार्ट्स में बांटा है और मैं आपसे अबाउट 7-8 पार्ट्स में बात करूंगा, एक एक पहलू को लेते हुए चलेंगे। पहला पहलू है, हम अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को इंटरनली देखें। जब तक हम बिजनेस जरूर करना चाहते हैं लेकिन जब इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, बस हम कुछ भी कर लेते हैं। हम बात करते हैं एक अपॉर्चुनिटी की, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है? कि एक, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इसीलिए अपॉर्चुनिटी है। आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं अपने आप की तरफ को झांकना, अपना

पड़ता है कि आसपास क्या है, ये दोनों चीजें देख लें, फिर हम एक्ट करना शुरू करते हैं। तो जो हम इंटरनल पार्ट की हम बात करते हैं, उसको बिजनेस के लैंग्वेज में हम उसको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं। फिर क्या हमारे में वो मोटिवेशन है जिसको हम एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन कहते हैं, और हमारा बिहेवियर क्या है। ये तीन एलिमेंट मिलके हमारी सिर्फ थिंकिंग का सेट बनाते हैं, और उसके बाद और चीजें होती हैं, जैसे इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है, इंडस्ट्री की स्टेटस, कि छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों का क्लस्टर है, क्या वहां पे गैप है, क्या आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस होते रहे हैं, तो उन मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन क्या है, बिना कॉम्पिटिशन के आप बिजनेस में जाओगे तो परेशानी तो होगी होगी, और बिना वैल्यू जानेंगे, वैल्यू किसके लिए, वैल्यू उस कस्टमर के लिए। जब वो हम वैल्यू समझ लेंगे तो हम उस पर एक्ट कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को, यानी अपने आप को देख के, इंडस्ट्री की कंडीशंस के देख के हम एक्ट करते हैं, तभी हम उसको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, सेम कंडीशंस दूसरे के लिए शायद ना हो, इसीलिए अपने आप के अंदर झांकना, उसके बाद आसपास के अपने एनवायरनमेंट से मैप करना और फिर एक्शन लेना, उसको हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जब हम बात करते हैं अपने माइंडसेट की, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, जिसको हम मैनेजमेंट की भाषा में और स्टार्टअप्स की भाषा में हम अचीवमेंट कहते हैं। क्या आप उस अचीवमेंट के लिए आप हद से ज्यादा जाने के लिए तैयार हो, आपका दिमाग, आपका दिल उस अचीवमेंट के लिए की तरफ आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज स्पेशली बिजनेसमैन के लिए आती है कि इंडिविजुअलिज्म। वैसे तो कहा जाता है कि इंडिविजुअलिज्म गलत बात है, लेकिन हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि आप वो इंसान हैं, सारा डिसीशन, सारा दारमदार आपके ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते इस इंसान ने काम नहीं किया इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं, द बक स्टॉप्स एट यू एंड thereby यू नीड टू टेक दोस डिसीशंस। दैट इज व्हाई इंडिविजुअलिज्म बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म एसेंशियली टॉक्स अबाउट अ सिनेरियो इन व्हिच वी टेक द टीम टुगेदर। Here, you are the leader, not the boss. There is a distinction between leadership and being a boss. अगर आप अपने टीम को साथ में आगे लेके बढ़ सकते हो और एक डायरेक्शन दे सकते हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग आपने देखा अपने आसपास, उनको कंट्रोल चाहिए होता है। ये कंट्रोल दो तरह से हो सकता है, कोई बाहर से आपको कंट्रोल करता है या कंट्रोल आपके अंदर होता है। तो जब एक एंटरप्रेन्योर की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं उस इंसान की जिसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत जरूरी है, जब तक अंदर नहीं देखे जाएंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको एक मेंटल लेवल पे अपनी गोल सेटिंग करनी होती है, कोई और आपके लिए गोल नहीं सेट करेगा। बिजनेस आपका है, आप एनवायरनमेंट देख रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो। बहुत सारे रिकमेंडेशंस आपके पास आएंगे, लेकिन डिसीजन कौन लेगा, कोई और नहीं, सिर्फ आप। इसलिए कई बार उल्टी दिशा में जाना, दुनिया आपको कुछ और कह रही है, लेकिन अब आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप आगे सोच सकते हो। इसलिए एज एन एंटरप्रेन्योर, individualism and locus of control become critically important. Once these are critically important, there are things through which you have to do lot of self-monitoring. ये हम बात कर रहे हैं internal चीजों की, जिसमें हमारा locus of control रहे, individual रहे। और क्या business बिना optimism के हो सकता है? बहुत परेशानी आएंगी मेरे दोस्त, challenges आएंगे, हमें आगे बढ़ना है, और हम आगे तभी बढ़ सकते हैं।
तो यही सब चीजें हम बात करेंगे।

0: और इसके बाद हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन कैसे होता है, वो हम कुछ देर बाद में आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच, अभी आपका मुझे इंतजार रहेगा ब्रेक के उस पार।
1: वॉक टॉक, सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन बॉट टॉक रेडियो शो। मैं हर्षित मलिक फिर आपके साथ अपने प्रोग्राम आउटलुक मैटर्स पे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी दो नए टॉपिक्स के ऊपर। एक हमने बात करी आपका अपना एक्स फैक्टर जो आप सब में छुपा होता है, और दूसरा हमने बात करी थी उससे पहले वाले शो में कि किस तरीके से अगर हम लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो किस कैसे एक अच्छी कंपनी हमारी ग्रोथ को डिटरमाइन करती है। तो अब हम बात करते हैं अपने दुखों की। आप दुख क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग अपने प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो अब हम यहां से बात करेंगे कि कैसे प्रेजेंट में ना रहना हमारे दुखों का कारण बनता है और प्रेजेंट में क्यों रहना चाहिए। हमारी सबकी जो जिंदगियां हो गई है ना, वो एक रेस बन गई है। सुबह उठने से लेकर मॉर्निंग वॉक से लेकर जॉब पे पहुंचने तक लेकर हर चीज एक रेस के तहत भागती है। अपने लिए समय नहीं दिखता, क्योंकि एक प्लान होता है जिस प्लान पे हम सब लोग भाग रहे होते हैं, प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्स होते हैं। चलो ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। हमारी ना फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रेंज होते हैं। फ्यूचर में हम लोग वो हर चीज करना चाहते हैं जो हमारे को एक अलादीन का चिराग करके दे सकता था। पुराने जमाने में कहानी में सुना था ना, अलादीन का चिराग, चिराग को घिसो, अलादीन का चिराग, अलादीन बाहर निकलेंगे बुझेंगे, और मेरे शहंशाह मांगिए, आप क्या मांगते हैं मैं पूरा करूंगा। आज वो अलादीन का चिराग ना हम सबका दिमाग बन गया है, क्योंकि दिमाग है जो सब बनाता है, क्रिएट करता है और पूरा भी कर देता है, और हम उस पर ट्रेवल करके भी आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ना। चलिए पास्ट की भी बात कर लेते हैं। हम सब लोग पुराने में क्या हुआ है, पुराने में क्या बीता है, क्या लाइफ ने हमें दुख दिया है, झटका दिया है, हम लोगों की ना जिंदगी उसमें अटक के रह जाती है। लाइफ जीना मांगती है, गिल्ट नहीं मांगती, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं मांगती, विजन मांगती है। जैसे कि किसी की लाइफ में पास्ट में कोई जॉब चली गई, या उसने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करी उसमें उसको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, या किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ किया बट उसकी शादी कहीं और हो गई। प्यार, मोहब्बत, इश्क, यस यस मैं मानता हूं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ हम उसके लिए सरेंडर कर देते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड भी कर देते हैं, कुछ लोग हाथ काट देते हैं, देखा होगा ना मूवीज में, बट रियल लाइफ में भी भाई उतना ही होता है। मैं तो देखता रहता हूँ ना, सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्योंकि जिंदगियां अटक जाती हैं एक्सपेक्टेशन से। पास्ट की गलतियां या पास्ट में हुए नुकसान को, मेरे परिवार में कोई मर गया, उसके ऊपर घर डिपेंड था, वो हमारे लिए इतना कुछ करता था, मैं उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही, आ नहीं सकता, इन्होंने हमारे घर को संजो के रखा हुआ था, हो गया। आपके घर में तो क्या, हर किसी के घर में यही सब होता है, लाइफ चलती रहती है, बट उसको चिपक के बैठ नहीं जाती है, डिप्रेशन का माहौल नहीं बना देते, हमारे को इन सब चीजों से बाहर आना होता है। कड़ियां रोकती हैं पुराने फियर्स, पुराने फेलियर्स, यार पास्ट में ऐसा होता दोबारा ऐसा हो जाएगा ना। व्हाट हैपेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, माइंड जो है ना वो हमेशा खेल रहा होता है पास्ट में और फ्यूचर में। गौर करो आप सब लोग अभी भी मेरी बात सुनते हुए, क्योंकि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो आपका ध्यान है, जैसे इससे ध्यान हटेगा ना, तो जब आप अपने नॉर्मल पैटर्न में आओगे तो आपको या तो पास्ट का कुछ याद आएगा या फ्यूचर में क्या होने वाला है, बस ये एल्गोरिथम चलता रहता है दिमाग में। तो दिमाग एक मशीन बन जाता है क्रिएशन की, पहले वो पुराने की पकौड़िया बनाता है, फिर आगे के कबाब बनाता है, खा तो हम पाते नहीं क्योंकि बनता ही रहता सब कुछ चीजें। हम लोग खाएंगे कब, वो बन भी जाते हैं उड़ भी जाते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है आज का समय, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बट हम हमेशा आगे की फ्यूचर की चीजों को ही सोचते रहते हैं। फ्यूचर में ये गाड़ी ले लेंगे, ऐसा हो जाए, वो वहां पे वो करेगा तो मेरी ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी, वो बॉस ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो मेरा सब कुछ गलत हो जाएगा, वो भगवान करे मेरी लॉटरी लग जाएगी या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, और पीछे ऐसा, बस इन्हीं सब में दुनिया अटकती है। यू हैव टू गो बियॉन्ड टू इट, टू लिव समथिंग, टू ड्रीम समथिंग। Now, when you start dreaming that in your day-to-day life, तो life ना बहुत irregular हो जाती है, imbalance हो जाती है। Stay back, एक deep सांस लीजिए, खुद को रोकिए। उस deep सांस को लेते हो आपको एहसास होगा कि आप exist करते हो। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप फ्यूचर को और पास्ट को साइड में रख दो, तो जो बचेगा वो आप होंगे, और उससे तो आपकी मुलाकात ही नहीं होती है, क्योंकि हम तो इल्यूजन बातें जो दिमाग में इमेजेस बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं, थॉट्स आते हैं, उन्हीं को सच मान लेते हैं और वो हमारा और पीछा करते हैं, या तो हम उनसे दूर भागते हैं, वो हमारा और पीछा करते हैं, ये हमें छोड़ते नहीं, हमें एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एक बार ना सच का सामना कर लो, हाँ मैं मुसीबत में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, दिक्कत है, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है जब होगा तब की तब देख लेंगे, कर लेंगे, हर दिन मरने से अच्छा है एक बार मर लो। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लक्ष्मी अग्रवाल जी, जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था हमारे देश में, बहुत ही घिनौना कार्य हुआ था, और ऐसी बहुत सारी लेडीज पे हुई ये अटैक हुआ था, तो लक्ष्मी अग्रवाल ने उस इंसिडेंट से अपने आप को रोका नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ को आगे खींचने का सोचा, उन्होंने एक मुद्दा लिया लाइफ में कि मैं इसके लिए फाइट करती हूँ, कोर्ट तक गई, उन्होंने एसिड की बिक्री को रुकवाया, उन्होंने औरतों की इस दर्दनाक पीड़ा को दुनिया के सामने रखा, लोग समझे, लोग उस दर्द के लिए खड़े भी हुए, वहां से उन्होंने लोगों के लिए एक मार्गदर्शन रखा, उनके जैसी परेशान लड़कियों से कि उनको काम मिल सकता है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने पास को लेके बैठी नहीं रही। तो हमें अगर आगे बढ़ना है ना, तो हमें अपने प्रेजेंट को सुधारना नहीं है, प्रेजेंट को जीना है। अरे जब मेरे कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार हम रोज परेशान आते हैं, तो मैंने कहा आज प्रेजेंट में जीना, मोबाइल बंद करके आना। तो जब वो अपने घर से ऑफिस तक आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने ना बहुत सारी चीजें देखी, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला, अरे हर्षद तुझे पता है आज हम जिस कैनाल से रोज निकलते थे, वहां ना बहुत सुंदर सुंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, चीजें लिखी हुई है, हमने कुछ लड़कियों को देखा जो उस मैदान में रोज खेलती है, मैं 25 साल से उस रूट से निकल रहा हूँ, पर मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अपनी टेंशन भूल गया उस टाइम, थैंक यू सो मच। मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बार बार बात करूंगा, मेरे कुछ वीडियोस भी इससे रिलेटेड YouTube आउटलुक मैटर्स मेरे चैनल पे आप लोग देखना, उसे आपको और बातें पता चलेंगी, बट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिव इन द प्रेजेंट, फील इट, लेट मी नो, विल डिस्कस मोर। सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो को, मेरे आउटलुक चैनल को, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली, यानी कि आपका देवानंद जूनियर, आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला इंस्पिरेशनल ऐप वॉक टॉक रेडियो। जल्दी से जाओ और गूगल पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक दिन जब बारिश हो रही थी तो एक 15 साल का लड़का जिसका नाम जॉन गॉडार्ड था, वो अपने घर में अपनी किचन टेबल पे बैठा लॉस एंजलिस के अंदर, और उसने एक येलो कलर का पैड लिया जिसके टॉप पे उसने लिखा माई लाइफ लिस्ट, और उस लिस्ट के नीचे उसने 127 गोल्स लिखे। जी हाँ, 127 गोल्स उसने लिखे। हम कहेंगे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लोग ऐसे गोल्स लिखते ही रहते हैं, खास तौर पे बच्चों में तो ये बहुत शौक होता है, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में उन 127 में से मोर देन 109 यानी 109 से भी ज्यादा गोल्स पूरे कर लिए। अब आप कहेंगे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग गोल्स लिखते हैं उन्हें पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ये सुन के तब आश्चर्य होगा जब आपको पता चलेगा कि जो गोल्स उसने लिखे थे वो कोई सिंपल या इजी गोल्स नहीं थे। उनमें ऐसे ऐसे गोल्स थे जो कहते थे कि मेरे को दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स पर चढ़ना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उनको सोर्स से लेकर उनके एंड तक एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया के जो बड़े से बड़े जो सबसे तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट्स हैं, हवाई जहाज हैं, उनको चलाना है, यानी ही वांट्स टू बिकम अ पायलट आल्सो, मेरे को 1 मील 5 मिनट से भी कम समय में भागना है, और मेरे को पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये जो इंसान था, ये जो लड़का था, इसका नाम था जॉन गॉडार्ड, और बाद में लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसको रियल लाइफ इंडियाना जोन्स का खिताब दिया। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इनको ही हैज बिकम एक्चुअली ये जॉन गॉडार्ड जो थे बाद में वर्ल्ड रिनोन्ड एडवेंचरर बने, एक्सप्लोरर बने, ऑथर बने, लेक्चरर बने। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर बहुत से लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, 2 किताबें भी लिखी। 2013 में इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल छोड़ गए जो हम सबको हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम क्या कर सकते हैं अगर हम करने पर आए तो। मैं यहाँ पर आपको उनके गोल्स की लिस्ट नहीं बताने वाला क्योंकि वो बहुत लंबी है और मेरा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, वो आप गूगल पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। आप जॉन गॉडार्ड टाइप कीजिए, आपके सामने उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो 127 गोल्स उन्होंने लिखे थे। आप कहेंगे हम सब लोग अब गोल्स लिखते रहते हैं, देखिए लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। आप गोल्स अपने मन में रखते हैं या उसे लिखते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग अमेरिका एक शो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी सबकी आदत होती है कि नया साल आते ही हम लोग नए नए गोल्स बनाते हैं, रिजोल्यूशन, हमने उसको नाम दिया है अपना कि इस साल मैं ये चीज अचीव करूंगा, इस साल मैं हर रोज जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, या खाना ठीक से खाऊंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, वॉट एवर इट इज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 15 फरवरी के आसपास यानी हार्डली आफ्टर 45 डेज उन्होंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने अपने रिजोल्यूशन बनाए थे, तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिर्फ अपने मन में सोचकर रिजोल्यूशन बनाए हुए थे कि हमने ऐसा करना है इस साल, उसमें से सिर्फ 4% पीपल यानी 4% लोग ही ऐसे थे जो कंटिन्यू कर रहे थे, बाकी 96% लोग छोड़ चुके थे। लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स नोट डाउन किए हुए थे यानी जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने इस साल ऐसा ऐसा करना है, यानी ठीक वही काम जो जॉन गॉडार्ड ने किया था 15 साल की उम्र में जब उसने 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी, तो जिन लोगों ने भी लिख रखे थे अपने गोल्स को उसमें से मोर देन 46% वर स्टिल कंटिन्यूइंग। जी हाँ, 46% लोग उस समय भी कंटिन्यू कर रहे थे जो गोल्स उन्होंने लिखे हुए थे। तो रिसर्चर्स शॉक्ड रह गए जानकर कि आपके सिर्फ किसी गोल को लिख लेने से उसके पूरे होने की संभावना 1100% तक बढ़ जाती है। इट इज वेरी पावरफुल थिंग। तो एक बहुत सरल टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप अपने गोल्स लिखें, पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में लिखें, और उनको लिखने के बाद उसकी एक कॉपी आप अपनी पॉकेट में जरूर रखें और दिन में कम से कम 3 बार उसको जरूर पढ़ें। तब आपको पता चलेगा कि एक फोकस्ड लाइफ को जीने का क्या मतलब होता है। एक्चुअली अगर आपने गोल्स लिख भी दिए और आप दोबारा उसको खोलकर नहीं देखते कई महीनों तक, तो उसके लिखे या ना लिखे होने का कोई बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं जाता। हम अगर किसी गोल को लिखते हैं तो हमें उसको दिन में कम से कम 3 बार उसे खोलकर देखना है और उसे पढ़ना है। उससे होगा क्या कि आप तीर की तरह से फोकस रहोगे उस गोल की तरफ जिधर आपको जाना है, और बाकी वो सारी अनवांटेड चीजें जो आपको खींचती रहती हैं और आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को खाती रहती हैं, उनसे आप बचते रहेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जॉन गॉडर्ड की लाइफ से हम लोग इस इंस्पिरेशन को लें, हम ये देखें कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकता है। मैं चाहूंगा आप लोग गूगल पे जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एक दो पेज में ही आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई इंसान इतने टफ गोल्स को अचीव कर सकता है अपनी एक ही जीवन काल में, तो हमारे तो जो गोल्स हैं वो इतने टफ भी नहीं है, बहुत आसान गोल्स हैं हमारे। उसको देखकर आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी और आप पूरी ताकत से अपने गोल्स पे लग जाएंगे। आपको बहुत आशा मिलेगी, बहुत होप मिलेगी कि अगर वो ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और होप इज एक्चुअली प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स द अचीविंग ऑफ गोल्स। बातें जारी रहेंगी, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं बोल रहा हूँ गिरेंद्र भारती, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार मैं हूं शान और आप सुन रहे हैं मेरे गाने ओनली ऑन वॉक टॉक रेडियो एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ बेटर फ्यूचर

0: खुशियाँ कैसे आती हैं जिंदगी में? हमारी चॉइसेस से। आप यकीन मानिए, एक सही लाइफ पार्टनर चुनना, एक सही करियर चुनना, एक सही शहर चुनना, एक सही जॉब, एक प्रोफेशन, एक सही सब्जेक्ट बचपन में, सही दोस्त, कितनी सारी चुननी की चीजें होती हैं जो चुननी होती हैं हमें जिंदगी में। फिर बाद में म्यूचुअल फंड्स चुनना, शेयर्स चुनना, स्कीम्स चुनना, टर्म प्लान्स, ओ माय गॉड। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी स्किल जो हमें है वो होता होना चाहिए चुनने का स्किल, टू चूज द बेस्ट। वो कैसे होता है वो अगली कहानी बताएगी। मैं हूं कहानी वाला रजत और आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो। यहाँ पर कहानियां सुनाते हैं, मतलब मैं कहानियां सुनाता हूँ और कई लोग ऐसी चीजें बताते हैं जो आपकी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना दे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है द ओल्ड कारपेंटर। अ कारपेंटर जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, अब बूढ़ा हो चला था, वो रिटायर होना चाहता था। काफी वक्त तक उसने कई खूबसूरत घर बनाए, लकड़ी के घर जिनके अंदर कमाल की कारीगरी होती थी। लोग उसके काम के फैन थे। एक एक बारीक से बारीक डिटेलिंग जो वो घर के लिए करते थे, जो वो घर में रखते थे, वो देखकर उस घर के जो मालिक थे वो खुश हो जाते थे। उन्होंने कई लोगों के घर बनाए और हर घर में लोग सुकून से रह रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं कि भाई आपकी वजह से ये घर इतना खूबसूरत है। उस कारपेंटर का जो बिल्डर था, जिन कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ वो काम करते थे, वो कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत खुश था कि यार जब तक ये है तब तक बढ़िया बढ़िया घर बनेंगे। लेकिन फाइनली उस कारपेंटर ने डिसाइड कर लिया कि वो अब नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो रिटायर होना चाहते हैं, चैन की जिंदगी चाहते हैं। अब बस और काम नहीं यार, बुजुर्ग हो गया हूँ, अब अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, उनको टाइम दूंगा, तो मुझे जरा इस काम से अब विदा कर दो। ये बात उन्होंने अपने मालिक को, उस कॉन्ट्रैक्टर को बताई। ये बात तो साफ थी कि कॉन्ट्रैक्टर को ये बात पसंद नहीं आनी थी। तो उसने कहा कि यार एक काम करो, एक घर और बना दो, फिर तुम्हें इजाजत, छुट्टी, तुम जहां जाना चाहो जाना। ये बात कारपेंटर को पसंद नहीं आई। उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हारे यहाँ काम किया, हर चीज तुम्हारे हिसाब से की, जितना पैसा दिया खुशी खुशी ले लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ उसमें भी एक घर और बना दो। ये तो वैसा ही हुआ ना जब आप अपने ऑफिस के टाइमिंग पर निकलने को तैयार हो और बॉस आके कहते बस 5 मिनट और। गुस्सा आता, नाराजगी होती, वैसी ही उस कारपेंटर को थी। नाराज तो थे लेकिन काम तो करना था, मजबूरी थी। इतने साल जिसको बॉस कहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कैसे यूं बीच मझधार में छोड़ दे, एक घर बनाना है बना दे। तो उन्होंने वक्त लगा के वो घर बनाया। लेकिन कमाल की बात थी कि इस बार कारपेंटर ने ना दिल लगा कर नहीं बनाया, वो वाकई गुस्सा थे इस बात से। और जब आप नाराज हो जाते हो तो फिर वो वर्कमैनशिप चेंज हो जाती है, आप इन्फीरियर मटेरियल यूज करते हो या आप इन्फीरियर टाइप की काम करने लगते हो, क्वालिटी गिरा देते हो। वैसा ही कुछ उस कारपेंटर ने किया। वो अपने करियर का आखिरी घर बना रहा था, वो भी इतना खूबसूरत नहीं बनता। एंड दैट वॉज रियली एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज करियर। कारपेंटर ने कम्प्लीट कर लिया घर और अपने एम्प्लॉयर उस कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि मैंने कर लिया है, आकर देख लो। वो आया, उसने घर को देखा, जाने वाला था जब उस घर से, निकलने वाला था, तब उसने कहा कि ये लो, ये दरवाजे की चाबी, यानी कि घर की चाबी, ये तुम्हारा घर है, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है कि तुमने इतनी जिंदगी भर जो मेरी इस काम को संभाला है, जो मेरी रेपुटेशन बनाई है, उसके लिए एक घर तो क्या है, ये तुम्हारा हुआ। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था उस कारपेंटर के लिए, लेकिन उतना ही बड़ा शौक भी, समझे ना क्यों। सरप्राइज इसलिए क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इस कॉन्ट्रैक्टर को उसकी इतनी वैल्यू है कि वो उसे घर गिफ्ट करेगा, और शौक इसलिए क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि ये घर उसे ही मिलने वाला है और उसने इसी की क्वालिटी गिरा दी। बहुत ही बुरा हुआ। अब उसे पूरी जिंदगी उस घर में रहना पड़ेगा जिस घर की कमियां उसे मालूम है और वो जानता है कि ये घर क्यों खराब है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि उसने खुद ही बनाया था। कारपेंटर की तरह ना हम भी अपनी जिंदगी को बड़े डिस्ट्रैक्टिव वे में बनाते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, वी रिएक्ट रादर देन टेक एक्टिंग, वी रिएक्ट। हम अपना बेस्ट देना नहीं चाहते, कम देना चाहते हैं। ये बहुत लोगों में आदत होती है, उन्हें लगता है अरे बस इतना ही ठीक है ना यार, इतनी तनख्वाह मिलती है अपन को, क्यों ज्यादा करेंगे, है ना। होते हैं ना, कलीग की तरफ मत देखो, अगर होते हैं तो मन ही मन मुस्कुरा लो बस। गिव योर बेस्ट, ये मैं कहना चाहूंगा। आपका एटीट्यूड और आपकी चॉइसेस जो आप आज करते हैं, वही आपका कल आने वाली जिंदगी बनाती है। योर एटीट्यूड एंड चॉइसेस यू मेक टुडे विल बी योर लाइफ टुमारो। बिल्ड इट वाइजली, सोच समझ के वो चीजें चुनना जो चुनने वाले। और अभी क्या सुनने वाले हो? वॉक टॉक रेडियो। लौटूंगा मैं यहाँ पर एक और कहानी लेकर। आप सुन रहे हैं कहानी वाला, कहानी वाले रजत के साथ कहानियां सुनाता हूँ। सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।
1: Now that we're not together, dancing don't feel the same.

0: रेडियो।
1: क्यों इतना डरते हो जिंदगी से? क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा आगे तजुर्बा ही होगा, और तजुर्बा ही इंसान को जीना सिखलाता है।

0: वॉक टॉक रेडियो। सक्सेस का सीक्रेट क्या है, क्या है मोटिवेशन का मंत्र, जानने के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
2: ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: आपके पहले जोश भरे कदम से पता चलता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी।
4: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।

0: रेडियो।
1: जैसे को तैसा, ये कहावत हम सब ने सुनी होगी, लेकिन जरा खुद सोचो, अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसा ही करें तो हम में और उस इंसान में जिसने हमारे साथ गलत किया है क्या फर्क रह जाएगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, माफ करना सीखो। एक इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी है माफ करना, और वो भी तब जब वो खुद सही और सामने वाला गलत हो। तो जैसे के साथ तैसा नहीं, बल्कि उसे माफ करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो।
0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.

दोस्तों, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ के सक्सेस का इंतजार करने लगते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखिए, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप भी सपनों का खिताब जीतना चाहते हो तो मेहनत के मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। Persistence over perfection is very important. अगर मैं आज persistent हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, rather than being perfect, I think results आएंगे after some time. मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent. और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है, but then रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग

क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloths जो कि jute है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex, हमने banana leaves use किए, हमने jute use किया instead of flex. तो इस तरीके से हमने उनकी wedding को justice करने का try किया. This is one example of how we take inputs from the couple's personality and try to curate something out of it. Walk Talk Radio.

मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा। Walk Talk Radio.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तब मेरी मदर मेरे को खाना बनाना कहती थी कि सीखो एंड यू शुड नो हाउ टू कुक। मैं उन पे बहुत गुस्सा हुआ करती थी कि यू नो मम्मी आप भाई को क्यों नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते हो कि खाना बनाना सीखो। उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हुआ करती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम माय हाउस आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड फॉर योरसेल्फ। जितना यू नो तुम बाहर पैसा वेस्ट करते हो खाने पे, वो कितना बचता है इफ यू कुक योरसेल्फ। तुम कहीं पहाड़ों में कहीं अनकन्वेंशनल जगह पे चले जाओ, इफ यू हैव द बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट्स तुम अपना पेट भर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होना एंड अपनी लाइफ को सस्टेन करना, खुद कमाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद के लिए खाना बनाना है। क्योंकि यू नो इतने सारे हम इंसिडेंट सुनते हैं जिसमें यू नो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड यू नो फीमेल्स को अपने गांव से बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि अगर मैं एक भी फीमेल की लाइफ

0: वॉक टॉक
1: जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और सोचे कि बहुत दूर है और वहाँ के लिए आप निकल ही ना पाओ तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम ही सही अपने एम की तरफ बढ़ाते हो तो धीरे धीरे करके रास्ता पार हो ही जाएगा।